शुभ प्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तृतीया तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 और 15 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित

0: स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हुर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हुर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, आज की एक और पावन सुबह में आइए भक्ति में डूब जाते हैं और शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, भगवान श्री गणेश के चरणों में।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए प्रिय श्रोताओं, अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन की उन कुंज गलियों में, जहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की तान पर पूरी सृष्टि मुग्ध हो जाती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हाई, तेरी बंसी ने सुधबुद बिसराई। सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

आइए अब सुनते हैं समूह स्वर में शब्द। संसार में कितने ही रिश्ते नाते हों, लेकिन जो सुकून, जो ओट उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में मिलते हैं, वो कहीं और नहीं।

भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रखे हैं। आइए अब सुनते हैं साबरी ब्रदर्स के स्वर में ये नात। श्रोताओं, भक्ति का कोई एक रास्ता नहीं होता। दिल से निकली दुआ सीधे उस खुदा के दरबार में पहुंचती है। हर जर्रे में नूर है उनका, हर जर्रे में नूर है उनका, हर दिल में मकाम है मोहम्मद के दर से ही चलती दुनिया की हर सुबह और शाम है।

भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आइए कार्यक्रम के अंत में हम भक्ति की इस पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हुए पहुंच जाते हैं अंतिम पड़ाव पर पूजा में। तो आप जानते ही हैं तब तक पूजा अधूरी रहती है जब तक उसमें मंदिर के शंख और घंटियों की गूंज न हो। तो हम आरती करते हैं हरिओम शरण साथियों के साथ प्रभु श्री कृष्ण की। हे कृष्ण आप सब पर कृपा करें।

प्रभु श्री कृष्ण की सारथी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है श्रीकांत पारगामकर और अनुराधा पौडवाल का। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

0: श्री रामचरितमानस गाना आपने सुना, संगीत था सतीश भाटिया का और स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर और अनुराधा पौडवाल के। ये आकाशवाणी का नचिबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:40 हो रखे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: अहिंसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनंद का अजरस स्रोत है, उत्तम गति है, शाश्वत श्री है और है मानव मात्र के लिए परम धर्म। शतपथ ब्राह्मण के वचन तथा अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य परिग्रह, मानस का उद्घोष, परम धर्म श्रुति, विदित अहिंसा, योग दर्शन की उक्ति, सर्वत्र सर्वदा सर्वभूतानां नाभिद्रोह, अहिंसा, पुराणों का सार, पापाय पर शीर्णनम, वैदिक युग की अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के महत्व को व्यक्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों और महर्षियों के उद्घोष, सर्व कल्याणेषु भूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु कल्याणेषु वसुधैव कुटुंबकम, तमसो मां ज्योतिर्गम, सभी अहिंसा के प्रेरक हैं। अहिंसा क्या है? तीर्थकर महावीर ने कहा है कि जब आत्मा रागी, द्वेषी या मूढ़ हो जाती है तो हिंसा करती है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भाव की तृष्णा के पीछे चलने वाला अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के कारण विभिन्न प्रकार के नश्वर तथा स्थावर जीवों को हिंसा करता है। उन्होंने कहा है क्योंकि हिंसा पाप है और दया का संबंध धर्म से है, अतः देव या गुरु के निमित्त हिंसा करना उचित नहीं है। महावीर ने 18 धर्म स्थानों में प्रथम स्थान अहिंसा को प्रदत्त किया है। इसका उन्होंने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उनके मतानुसार सब जीवों के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। शत्रु अथवा मित्र, सभी प्राणियों में समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है। अहिंसा त्रस अथवा स्थावर सभी प्राणियों को कुशल क्षेम मंगल करने वाली है। आत्मा ही हिंसा है और आत्मा ही अहिंसा है। महावीर ने बताया कि हिंसा की जड़ विचारों की उत्पत्ति है। वैचारिक असमन्वय से मानसिक उत्तेजना बढ़ती है और वो फिर वाचिक और कायिक हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। शरीर जड़ है, वाणी भी जड़ है। जड़ में हिंसा अहिंसा के भाव नहीं होते हैं। इनकी उद्भव भूमि मानसिक चेतना होती है। दूसरों के प्रति ही नहीं किंतु उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करो। अपने को समझने के साथ साथ दूसरों को भी समझने की चेष्टा करो। इसे महावीर ने बौद्धिक अहिंसा बताया है। अहिंसा के विषय में संत ज्ञानेश्वर ने विस्तृत सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, संसार को सुखी करने के एकमात्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी गया प्रतीक शारीरिक वाचिक मानसिक कार्य ही अहिंसा कहलाता है।
0: ये था आज का चिंतन। श्रोताओं, जीवन में अहिंसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मन की शांति, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और समाज में आपसी विश्वास का आधार है। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति के विचारों, वाणी और कर्मों में शुद्धता आती है, जिससे किसी भी प्रकार के तनाव और संघर्ष को कम किया जा सकता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 होने को है। प्रस्तुत है काव्यधारा। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं पूर्णिमा संघी के स्वर में ये काव्य पाठ।
2: गर्मी की छुट्टियों के लिए मैं एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। कहाँ छिप गए वो बीते दिन जब नानी घर जाते थे, कहाँ छिप गए वो बीते दिन जब नानी घर जाते थे, गर्मी की छुट्टी के सब दिन रहकर वहीं बिताते थे। याद बहुत आते वो रस्ते शांत शहर से दूर कहीं, मिट्टी से वो सजे खरंजे ऊंची पुलिया डूबने, रोज कबूतर की गुट्टरगु भरी दोपहरी सुनते थे, खेल नया क्या खेला जाए सब तरकीबे बुनते थे, टेढ़े मेढ़े वो गलियारे बीच चौक में एक कुआ, सांझ भोर में बहती खुशबू चूल्हों से जब उठे धुआं, वो झींगुर की आवाजें जैसे ही शाम का पहरा हो, जगमग उड़ते जुगनू और अंधेरा गहरा हो, आसमान की छाया में सब दूर तलक सो जाते थे, खुली चांदनी में चंदा की स्वप्न अनोखे आते थे, भोर को दस्तक दे सूरज और चिड़िया चींची करती थी, आते जाते बैलों की घंटी से आंखें खुलती थी। बड़ी हवेली नानी का घर बाहर निकले छज्जे थे, भारी भरकम सीसम के दर राजमहल से अच्छे थे, झूले याद हैं आते जो नानी दहलीज में डलवाती, खूब झूलते दिन भर उनमें जब नानी थक सो जाती। सुमन किरण और सोनू सरिता सभी मित्र थे प्रिय बड़े, जब नानी के घर जाते ये करे प्रतीक्षा बाहर खड़े, कितने खट्टे मीठे पल संग में इनके व्यतीत किए, आज मुझी से व्यस्त है सब दुनियादारी की रीत लिए। नानी का भोला चेहरा वे कर्मठ नाना की यादें, नहीं भूल सकती मैं प्यारे मामा मामी की बातें, चलचित्र के जैसे वो सब पल जब आंखों में चल जाते हैं, गर्मी की छुट्टी के वो दिन याद बहुत फिर आते हैं। और अब बदलते हुए समाज के लिए जो परिवर्तन हुआ है हमारे समाज में, उस पर एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। ये एक नया समाज है जो संस्कृति से दूर है, नूतन ये कैसे लोग हैं हो के मद में चूर हैं, वो वृक्ष भी उखड़ गए पौधों को देते छांव थे, छाल थी कठोर जिनकी नर्म जिनके भाव थे, है खो गई कहां न जाने नीति मूल्यों की कथा, दूषित विचार हैं कहीं वे कर्म हो गए वृथा, धुंधली सी रश्मियां दिखे वे चांदनी अश्वेत सी, है खार मन में जो बसी सागर में घुलती रेत सी, कोमल हृदय वो घट गए दया का देते दान थे, वो मंच भी सिमट गए निशुल्क देते ज्ञान थे, है छिप गई कहां वो जुगनुओं की जगमगा हटे, वो बुझते जलते दीप जो देते निशा की आहटे, मिथ्या जगत की धूप ये जो सत्यता से दूर है, ये एक नया समाज है किस्मत में जाने चूर है, ये एक नया समाज है किस्मत में जाने चूर है। और अगली जो रचना प्रस्तुत कर रही हूँ वो मानव को अपनी प्रतिभा को अपनी निज प्रकृति की पहचान कैसे करनी चाहिए वही संदेश देती है। क्या आसमान बादल को दे सकता है देश निकाला, क्या सूरज के भीतर जल सकती है द्वेष की ज्वाला, क्या कभी चांद को शीतलता के लिए मचलता देखा, क्या तीव्र भंवर से डर लहरों को मार्ग बदलता देखा, क्या कभी सुरीली कोयल को संगीत सिखाना पड़ता, क्या दीप जला जगमग जुगनू को मार्ग दिखाना पड़ता, क्या उगते दिन ढलती शामों को समय बताना पड़ता, क्या किसी जीव और है बहना कौन बताता बोलो, वायु को किस ओर है बहना कौन बताता बोलो, जो तेरे गुण अवगुण मानव आत्म तुला में तोलो, जो ज्ञान दीप भीतर तेरे एक दिन बाहर आएगा, अधिक समय उगते सूरज को ग्रहण न ढक पाएगा, रहे दीप प्रकाशित और प्रचंड तो तेल पिलाना पड़ता, हर आंधी और तीव्र पवन से उसे बचाना पड़ता, तेरे अंदर है सिंह छिपा ये ना कोई बोलेगा, तू शेर है बिल्ली बन बैठा ये राज नहीं खोलेगा, क्या वन के किसी जीव को सोता सिंह जगाता देखा, या किसी सिंह को डर गीदड़ से प्राण बचाता देखा, शेर दहाड़े पिंजरे में भी शोर दूर तक जाए, सुन विभत्स ध्वनि प्राणी पिंजरा भी छू ना पाए, बस यही प्यास अपने भीतर हर रोज जगानी होगी, खुद को खुद में खोज नई पहचान बनानी होगी। और जो अगली रचना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो हमारा अस्तित्व का जो हमारा समय के साथ में मानव एक कहीं खो गया है उसी को प्रदर्शित करती है। अस्तित्व की इस दौड़ में, छोटे बड़े की होड़ में, सच झूठ के इस जोड़ में, ये कहां मैं खो गया हूं। मैं तेरा मन ढूंढता तुझको ही तुझमें, मैं तेरा मन ढूंढता तुझको ही तुझमें, तीव्रता से आगे बढ़ते तीव्र युग में, खोजता पीछे छुटा कुछ खुद ही खुद में, कौन सी इस नींद में मैं सो गया हूं, ये कहां मैं खो गया हूं। ये जहां विश्वास अविश्वास पर है, ये जहां विश्वास अविश्वास।

0: पर है, ये जहां दिन बीतता एक आस पर है, कल छुएंगे आसमां एक प्यास भर है। ये किस सुनहरे स्वप्न में मैं खो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ। धूप ही बस धूप है, छाया नहीं है, इस दौर में संग खुद का भी साया नहीं है, पीछे किसी के चलना भी भाया नहीं है। जल तप के अब तो कोयला सा हो गया हूँ, कभी रुकता नहीं हूँ, हूँ सही या फिर गलत झुकता नहीं हूँ, हूँ तो इसी दौर का भले पुख्ता नहीं हूँ। ये कौन सी लहरों में खुद को धो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ। चाहता हर चीज को मैं वश में करना, चाहता हर चीज को मैं वश में करना, चाहे पर्वत हो या नदिया और झरना, बस पूरी धरा पर अपना ही अधिकार करना। ये कैसी निष्ठुर नीति में शामिल हो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ। सोचता हूँ खुद को इनसे दूर करना, सोचता हूँ खुद को इनसे दूर करना, छोड़ दूँ अब खुद से डरना और लड़ना, जूझता हूँ सोच कर ये ही मैं वरना, सड़कों पे उड़ती धूल सा मैं हो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ। बस एक उपाय अब तो मुझको सूझता है, बस एक उपाय अब तो मुझको सूझता है, कैसे पाऊं खुद को कुछ कुछ बूझता है, मुक्ति पाने के लिए पन जूझता है, बस इसी धुन में मैं अब तो हो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ। जाऊं प्रकृति की गोद में मैं सोचता हूँ, अपनों के साये में मैं खुद को खोजता हूँ, भटकू नहीं इस भीड़ में तो खुद को रोकता हूँ, पर भौतिक जगत के शोर में गुम हो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ, ये कहाँ मैं खो गया हूँ। और अगली जो पंक्तियाँ मैं सुनाने जा रही हूँ वो माँ के लिए है, माँ और हमारी भारत माँ दोनों के लिए वो रचना है। क्या लिखूँ मैं माँ के बारे में, क्या लिखूँ मैं माँ के बारे में, मेरे कोश में इतने शब्द नहीं, गर गिनो धरा के उपकारों को तो रहोगे क्या स्तब्ध नहीं। अपने गर्भ में बीज लिए वो प्रतिपल उसको ढोती है, भले बोझ ये कितना भी दुख दे पर कभी नहीं वो रोती है, वो माँ धरणी मुस्कुराती है, वो माँ धरणी मुस्कुराती है, आंचल अपना लहराती है, फूटे अंकुर फिर पौध बने फिर वृक्ष विशाल सहलाती है, इतनी सचेत गतिमान है वो, इतनी सचेत गतिमान है वो, नहीं निद्रा उसे सुलाती है, वो भले पुष्प झड़े या कंट लगे हर वृक्ष को वो अपनाती है, अपने पथ पर संबल चलती, अपने पथ पर संबल चलती, ना उसको कोई रोक सके, भले उल्का कितने टकराए किंचित ना उसको चोट लगे, हर घाव को मिट्टी से ढककर, हर घाव को मिट्टी से ढककर वो दुख के गर्त छिपाती है, पर दर्द हिलोरे लेता जब चुपके से नीर बहाती है, वो नीर गर्त में भरता है, वो नीर गर्त में भरता है, मिट्टी को तट फिर करता है, बनकर धारा फिर सरिता की हर पथ हरियाली भरता है, फिर नव बीजारोपण होता, फिर नव बीजारोपण होता, प्रस्फुटन अंकुरों का होता, फिर अंक में माँ के पल बढ़कर बन वृक्ष विशाल खड़ा होता, फिर खेत बने खलियान बने माँ धरती की संतान बने, माँ ने जब आंचल लहराया पुत्रों को प्रेम से सहलाया, वात्सल्य नीर से नहलाया जो वर्षा का जल कहलाया, सब शब्द भी माता गौण पड़े, सब शब्द भी माता गौण पड़े, व्याख्यान हो कैसे मौन खड़े, हे प्राण दायनी नमन तुम्हें, हे प्राण दायनी नमन तुम्हें, क्या गिने तेरे उपकार बड़े, जो चले चुकाने ऋण तेरा माता अब वो सब मौन खड़े, जो चले चुकाने ऋण तेरा माता वो सब अब मौन खड़े। धन्यवाद।
1: पूर्णिमा संघी के स्वर में आपने काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत ये काव्य पाठ सुना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें के अंतर्गत पशुओं में पांचपन की समस्या व समाधान विषय पर जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित करेंगे, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदैः वरिष्ठ सुरक्षाधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षित समावेशीय विश्वे च योगदानं दातुं प्रयतते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीरस्य शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यस्य दूरभाषं प्राप्तवान्। कतरस्य रास लफान औद्योगिक नगरे दुर्घटनायां भारतीय नागरिकाणां निधन विषये कतरस्य अमीरः शोकं प्रकटितवान् तथा च घातितानां शीघ्रं स्वस्थतायाः आशां प्रकटितवान्। श्रीमोदी प्रभावित परिवारेभ्यः सहानुभूति वचनानां कृते कतर अमीराय धन्यवादं दत्तवान्। व्रणितानां कृते शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदानाय च प्रशंसितवान्। द्वौ नेतारौ स्वनागरिकाणां कल्याणं सुरक्षाञ्च सुनिश्चेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। भारतस्य खनिज मन्त्रालयेन 650 महत्वपूर्णानां सामरिक खनिज खण्डानां अथ 11 अन्वेषण अनुज्ञापत्र खण्डानां च सफल सघोष विक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभ खनिज कार्यक्रमस्य महती गति प्राप्ता अस्ति। मन्त्रालयेन सघोष विक्रयणस्य 7 खण्डस्य अन्तर्गतं 10 महत्वपूर्ण सामरिक खनिज खण्डाः सफलतया सघोष विक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तानाक्रमित जम्मू कश्मीरस्य स्थिति विषये कृत टिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोरालोचना कृता। विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् एताः टिप्पण्यः प्रतिवेशिदेशस्य स्वस्य असफलताम् अवच्छादनाय स्वस्य मानव अधिकारस्य उल्लङ्घनात् ध्यानं दूरीकर्तुं क्रियमाणाः निराशजनकाः प्रयासाः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारतम् एतान् कल्पित आरोपान् स्पष्टतया तिरस्कुर्वति। सः आशां प्रकटितवान् यत् अन्ताराष्ट्रिय समुदायः पाकिस्तानस्य दुष्कृतानां दुरुपयोगानाञ्च उत्तरदायी भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन कतरदेशे विस्फोटेन 12 भारतीय नागरिकाणां मृत्योः पुनः पुष्टीकृता अस्ति। जयसवालः अवदत् यत् अस्यां घटनायाम् आहत्य 66 जनाः घातिताः सन्ति, ये सम्प्रति चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। कतरदेशे अग्निदुःखद घटनायां प्रभावितानां जनानां साहाय्यार्थं तमिलनाडु सर्वकारेण सहायता घोषिता। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अस्यां घटनायां ये प्राणान् त्यक्तवन्तः तेषां परिवारेभ्यः 10 लक्ष रूप्यकाणाम् अनुग्रह राशिं घोषितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गतसायं राष्ट्रपतिभवने नागरिक सम्मान समारोहे पद्म पुरस्कार प्रदानं कृतवती। पत्रकारः पी नारायणन्, टेनिस क्रीडकः विजय अमृतराज, अभिनेतारौ मम्मुट्टी तथा आर माधवन्, गायिका अलका याज्ञिकः च प्राप्त पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 31 पद्म पुरस्काराः घोषिताः आसन्। एतेषु 5 पद्मविभूषणं, 13 पद्मभूषणं, 13.1 पद्मश्री पुरस्काराः च सन्ति। कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् यल्निनो कारणात् उत्पद्यमानस्य दुर्बल मानसूनस्य सम्भाव्य प्रभावस्य निवारणे भारत सर्वकारः कृषकाणां सहायतायै पूर्वसिद्धतां कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है।

0: तत्परता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।
3: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं, बच्चों के लिए घातक है पेट में पेट के कीड़े, इस विषय पर।
4: आमाशय और अंतड़ियों में बहुत से विकार पाए जाते हैं, उनमें से कृमि रोग भी बच्चे को परेशान करता है। ये कृमि लगभग 20 प्रकार के होते हैं जो अंतड़ियों में घाव पैदा कर देते हैं और रोगी बेचैन हो जाता है। ये पेट में वायु को बढ़ा देते हैं जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कृमि रोग में रोगी को उबकाई आती रहती है, कई बार भोजन के प्रति अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और प्यास अधिक लगती है। ये रोग गंदगी के कारण होता है, मक्खियों द्वारा गंदा भोजन, जल, दूध

0: आदि के सेवन से इसका प्रसार तेजी से होता है। रोगी की आंतों से कृमि के अंडे मल के साथ निकलकर बाहर आ जाते हैं और धरती पर फैल जाते हैं। फिर ये लार्वा रेंगते रेंगते बड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति सड़क, घास आदि पर चलता है तो ये उसके पैरों में चिपट जाते हैं और त्वचा भेद कर शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। बच्चों द्वारा मिट्टी खाने, दूषित भोजन ग्रहण करने, गंदे कपड़े पहनने, शरीर की उचित सफाई न करने, मांस, मछली, गुड़, दही, सिरका आदि अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। बच्चों को बदहजमी, पेट में दर्द, बुखार आदि की शिकायत हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, दस्त लग जाते हैं और भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। इनसे बचने के लिए कुछ देसी नुस्खे इस प्रकार हैं। 1 चम्मच करेले का रस, 1 चम्मच नीम की पत्तियों का रस, 1 चम्मच पालक का रस और जरा सा सेंधा नमक, सबको मिलाकर 2 खुराक बनाएं। सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन करें। इन रसों से कीड़े मरकर मल के साथ बाहर निकल जाएंगे। छाछ में काला नमक और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। गर्म पानी में 1/2 चम्मच हल्दी डालकर 1 सप्ताह तक रोज इसका सेवन करने से भी आराम होता है। 1 चम्मच नीम की पत्तियों के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह शाम सेवन करने से भी आराम होता है। अनार के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी आराम होता है। ग्राम बाई बिड़ंग का चूर्ण और 8-10 पत्ते तुलसी दोनों की चटनी बनाकर सुबह शाम खाएं। नारंगी के छिलके 10 ग्राम, बाई बिड़ंग 10 ग्राम दोनों को पीसकर चूर्ण बना लें। 3-3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम खाकर ऊपर से गर्म पानी पी लें। थोड़े से अनार के छिलके सूखा पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से 3 ग्राम चूर्ण छाछ के साथ सेवन करें। 3 ग्राम अजवाइन, 3 ग्राम बाई बिड़ंग तथा 1 ग्राम कपूर, इन सबको पीसकर उसमें जरा सा गुड़ मिलाएं। 3 ग्राम दवा भोजन के बाद लें। करेले के रस में 1 चुटकी हींग डालकर पीने से पेट के कृमि मल के साथ निकल जाते हैं। आम की गुठली की पुतली या गिरी निकालकर चूर्ण बना लें। फिर 5 ग्राम चूर्ण में जरा सा नमक डालकर सेवन करें। कच्चे केले की सब्जी लगातार 4 दिनों तक खाने से कृमि मर जाते हैं। गाजर का रस रोज 1 कप की मात्रा में 1 सप्ताह तक रोज पीने से कृमि रोग नष्ट हो जाता है। प्याज के रस में जरा सा नमक मिलाएं और बच्चों को पीने के लिए दें तो इससे कीड़े बाहर निकल जाते हैं। शहतूत का शरबत पेट के कीड़े मारने के लिए बहुत उपयोगी पाया गया है। 5 ग्राम बथुए के बीज पीसकर शहद मिलाकर सेवन करने से भी आराम होता है और पपीते के बीजों को सुखाकर उनका चूर्ण बना लें और 1 चुटकी चूर्ण दिन में 3 बार शहद के साथ लें। अजवाइन का चूर्ण 1 चुटकी की मात्रा में दिन में 2 बार गुड़ के साथ देने से भी आराम होता है। 1 चम्मच बथुए का रस सुबह बिना कुछ खिलाए पिला दें। केसर तथा कपूर दोनों 1-1 रत्ती की मात्रा में पीसकर दूध के साथ 4-5 दिन लेने से आराम होता है और कीड़े मल के साथ निकल जाते हैं। पत्थर धोड़ी का चूर्ण 2 रत्ती की मात्रा में शहद से चटाएं। 1/4 चम्मच बाई बिड़ंग का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से भी आराम होता है। 1 चम्मच तुलसी का रस गर्म करके बच्चे को पिलाएं। बच्चे को सुबह शाम 1-1 रत्ती की मात्रा में हींग भून कर दे सकते हैं। शहद में 1/2 चम्मच पारिजात के पत्तों का रस मिलाकर पिलाएं।
1: बच्चों के लिए घातक है पेट के कीड़े, इस विषय पर आपने स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी सुनी। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है पशुओं में पांचपन की समस्या व समाधान।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। किसान भाइयों आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका विषय है पशुओं में बांझपन की समस्या और समाधान। देखिए किसान भाइयों, पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि पशु समय पर गर्भधारण करे। लेकिन जब पशु बार बार गर्भधारण नहीं कर पाते या लंबे समय तक प्रजनन में असफल रहते हैं तो इन्हें बांझपन या प्रजनन अक्षमता की समस्या कहा जाता है। पशुओं में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है पोषण की कमी। यदि पशु को संतुलित आहार

0: नहीं मिलता तो उसके शरीर में आवश्यक खनिज तत्वों और विटामिन की कमी हो जाती है, विशेष रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की कमी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है गर्मी या हीट के लक्षणों की सही पहचान ना कर पाना। कई बार हमारे पशुपालक भाई पशु को हीट में आने के समय वो पहचान नहीं पाते, जिससे कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक प्रजनन उचित समय पर नहीं हो पाता। परिणाम होता है पशु गर्भधारण नहीं कर पाता। तीसरा कारण है प्रजनन अंगों में संक्रमण। यदि पशु के गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है या समय पर उपचार ना मिले तो पशु में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा ब्रुसेलोसिस, आईबीआर और अन्य संक्रामक रोग भी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं समस्या के समाधान की। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण और मिनरल मिक्सचर, ये नियमित रूप से हमें अपने पशुओं को खिलाने चाहिए। पशुओं को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी उपलब्ध होता रहना चाहिए। संतुलित पोषण से पशु का शारीरिक विकास बेहतर होता है और उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। दूसरा है, पशुपालकों को हीट के लक्षणों की पहचान की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब पशु बार बार रंभाता है, बेचैन रहता है, दूसरे पशुओं पर चढ़ने का प्रयास करता है, तो ये सब लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रकट करते हैं कि पशु हीट में आ रहा है। ऐसे समय में पशु का गर्भाधान सही समय पर करवाना चाहिए। सामान्यतः हीट दिखाई देने के 12 से 18 घंटे के भीतर कृत्रिम गर्भाधान करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, पशुओं की नियमित स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। यदि कोई पशु लगातार 2 या 3 बार गर्भाधान के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रहा है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर जांच और उपचार से अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। प्रसव के बाद पशुओं की विशेष देखभाल करनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय की सफाई, संतुलित पोषण और संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है। यदि पशु में कोई असामान्य स्राव दिखाई दे या बुखार जैसी समस्या हो तो तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। इसके अतिरिक्त पशुओं को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना भी बहुत जरूरी होता है। अत्यधिक गर्मी, गंदगी, भीड़ भाड़ और अपर्याप्त पानी जैसी परिस्थितियां प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। पशुशाला को साफ सुथरा और हवादार रखना भी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार और पशुपालन विभाग के द्वारा भी समय समय पर पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। पशुपालकों को इन योजनाओं का लाभ जरूर उठाना चाहिए और कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविरों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रखिए, पशुओं में बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है। उचित पोषण, सही प्रबंधन, समय पर गर्भाधान, नियमित स्वास्थ्य जांच और पशु चिकित्सक की सलाह से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यदि हम इस प्रकार से अपने पशुओं की देखभाल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो हम पशुओं से अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: खेती की बातें के अंतर्गत आपने पशुओं में बांझपन की समस्या व समाधान विषय पर जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हो चुके हैं। आइए अब आपको देते हैं संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे, जिसमें आज आप सुनेंगे सीतापुर और श्रावस्ती जिले की हलचल। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में प्रातः 9:25 पर शालिनी जौहरी के स्वर में सुनेगा रुहेलखंडी लोकगीत। साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा प्रसारित होगा दिन में 1:45 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे हीरा सिंह।

मीणा किशोर में कुमाऊनी लोकगीत। शाम 7:32 पर कानून की बात हम अपने लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रखेगा दिन में 11:30, दिन में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा आप सुन सकेंगे। बहनी सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार दिन में 1:15 पर, जिसमें आज का आकर्षण रहेगा मारा घर आंगन भोर से सांझ तक। साथ ही शिवानी से तनप्रीत कौर की पूर्व प्रसारित बातचीत भी आप सुन सकेंगे। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में शाम 5:00 भारत सरकार की रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS परियोजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP पर आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:15 पर, जिसमें आज का आकर्षण रहेंगे कुछ खास है आज बूझो तो जाने, यूथ कनेक्ट और लव स्टोरीज। किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत में आज आप सुनेंगे शाम 6:05 पर भेंट वार्ता, फसलों में संरक्षण, कृषि तकनीकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सटीक प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव विषय पर डॉक्टर रोहित दिलीप नलावड़े, वैज्ञानिक भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।

गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल

0: ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
1: हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
0: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर बस्ती मेरठ प्रयागराज जौनपुर अमरोहा अम्बेडकर नगर फरुखाबाद आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एसआईटी का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
5: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तीन सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
6: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश, कहा आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 और 45 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है सूचना ज्ञान मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

नमस्कार, सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए, कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जुड़े हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। बस यही बात हमें आपसे सुननी पसंद है और हमें कहना भी बहुत पसंद है कि आप हमारे साथ हैं। साथियों, आज के इस बेहद खास सफर की शुरुआत कूटनीति के मंच पर महिलाओं के हौसले और उनकी ताकत को सलाम करते इन चंद पंक्तियों से कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। हवाओं का रुख मोड़ने का हुनर रखती हैं, हवाओं का रुख मोड़ने का हुनर रखती हैं, वो सरहदों के पार भी अपनी नजर रखती हैं। सिर्फ आंसुओं से नहीं सींचा उन्होंने जमी को, वो कूटनीति के मंच पर भी दुनिया बदलने का जिक्र रखती हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपको पता ही है आज है 24 जून और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषय पर, क्योंकि आज हम इस दिवस को मना रहे हैं। साथियों, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर राजनयिक और शांति निर्माण भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी को मान्यता देना, सम्मान देना और सम्मान के प्रति उनके प्रतिनिधित्व को और बढ़ावा देना, आने वाली चुनौतियों को उनके सामने जो भी आती है उनको उजागर करना है। साथियों, ऐतिहासिक रूप से कूटनीति में पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता है ना? यह दिन रूढ़ियों और संरचनात्मक बाधाओं को तोड़ने का आह्वान करता है। मतलब ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब महिलाओं भी राजनयिक, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के पदों पर पहुंच रही हैं। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रोत्साहित करना भी इस दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये भी कहता है कि विश्व स्तर पर केवल कुछ देशों के शीर्ष पदों पर महिलाएं हैं और विदेशी मामलों जैसे रक्षा जैसे कूटनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी काफ़ी कम है, ऐसा देखने पर पता चलता है। लेकिन हमारे देश में तो भाई मातृशक्ति की वंदना हम करते ही हैं, क्योंकि हम कहते भी हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देविता। स्त्री नारी के रूप में हम देखते हैं, कभी माँ है, पत्नी है, बहन है और कभी हमारी जीवन संगनी है, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकती है?

0: जी हाँ श्रोताओं, नारी कोमल है पर कमजोर नहीं, सृष्टि की निर्माता है, वो भी पुरुष के साथ मिलकर कदम दर कदम आगे बढ़ती है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि दोनों ही पक्षों का एक साथ मिलकर रहना ज़रूरी है, क्योंकि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। और अब हम आपसे बात करते हैं 24 जून की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। 24 जून 2004 में जॉन नेग्रोपोटे इराक में अमेरिका के पहले राजदूत बने थे। अगर इसका इतिहास जानें तो 2005 की तिथि 24 जून में कहती है कि अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को मान्यता मिली थी। इसी तिथि में सन 2006 में फिलीपींस में मौत की सजा समाप्त की गई और 24 जून 2007 को इराकी हाई ट्रिब्यूनल ने सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई अली हसन अल माजिद उर्फ केमिकल अली सहित 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था 24 जून को ही। 24 जून की तिथि हमें ये भी बताती है कि ऐसे कौन महान शख्सियत थे जिन्होंने इस तिथि में जन्म लिया और अपने व्यक्तित्व को पहचान दी। तो 24 जून को 1937 में अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात लेखिका अनिता देसाई जी का जन्म हुआ। 24 जून को 1897 में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकार नाथ ठाकुर का भी जन्म हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिक तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह का जन्म हुआ 24 जून 1885 को। और 1869 को 24 जून को दामोदर हरी चापेकर जी का जन्म हुआ। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से वो एक थे। प्रसिद्ध भारतीय लेखक इतिहासकार श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान के रूप में विख्यात विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का जन्म भी 1863 में 24 जून को हुआ। पर हर तिथि कभी हमसे किसी को छीन भी लेती है, तो देखते हैं 24 जून को निधन हुआ भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का 1564 में आज की तिथि में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन चंद भारतीय सैनिकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस जीत मिला था, जिनको वो थे दरबान सिंह नेगी जी। 1950 को 24 जून में आपका निधन हुआ। हम आपको नमन करते हैं और ओम जय जगदीश की जो आरती सब जगह गूंजती है, पंडित श्रद्धानाथ शर्मा जी ने लिखी थी। और आपका जन्म 24 जून 1881 को हुआ। तो ये थी कुछ 24 जून की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमने आपसे साझा की।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। आप सुन रहे हैं अपनी सखी निधि भारद्वाज के साथ इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और अब चलते हैं अखबारों की सुर्खियों की ओर।
5: अखबारों
0: श्रोताओं, प्रातःकाल जब हमारी नज़र पड़ती है अखबारों पर तो हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ घटा हमारे आसपास। तो हिंदुस्तान की खबर, अमर उजाला की खबर और दैनिक जागरण की खबरें एक साथ कुछ बातें भी कहती हैं। और वो खबर है, जहां कल तक सजते थे सपने वहां खामोश यादें, अलीगंज एनिमेशन सेंटर की काली पड़ी दीवारें बयां कर रही हादसे की कहानी, चारों तरफ पसरे सन्नाटे में मौत का मंजर दिखाई दे रहा। ये लिखता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में ही आगे लिखा है, अवैध कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए चलेगा विशेष अभियान। एक और खबर है हिंदुस्तान की, योगी यूपी में निवेश बढ़ाने को बंगलुरु रोड शो में हिस्सा लेंगे। साथ ही लिखते हैं कि अब नौकरी के साथ होगी इंटर की पढ़ाई। ये खबर भी है हिंदुस्तान की, हाई स्कूल के बाद आईटीआई कर नौकरी करने वाले युवा अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के बीच प्रस्तावित समझौते के तहत ऐसे युवाओं को नौकरी के साथ 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। और एक और अच्छी खबर है कि एक ही यूपीआई ऐप पर सभी ऑटो पे दिखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे ऐप पर ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जल्द शुरू करेगा नई सुविधा। ये खबर भी हमने ली है हिंदुस्तान से। और एक और खबर है, खाद्य पदार्थों के पैकेट की माप भी तय होगी, कंपनियां नहीं कर पाएंगी चालबाजी, सही दाम पर मिलेगी सही मात्रा, खाद्य तेल के पैकिंग मानक पहले से ही तय।

अमर उजाला की खबर कहती है कि चढ़ावा चोरी और कमीशनखोरी के सबूत एफआईआर की सिफारिश एसआईटी ने सौंपी, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गणना प्रक्रिया में मिला हेरफेर। खबर है अमर उजाला की ही, लखनऊ अग्निकांड, अवैध बिल्डिंग के मददगार 18 अफसर दोषी, बिना मानक वाली इमारतें होंगी सील। साथ ही लिखा है अमर उजाला में रोहित शर्मा, अलका याग्निक एवं विजय अमृतराज समेत 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति मुर्मू ने दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में किया सम्मानित, सम्मान पाने वाली हस्तियों में 4 विदेशी नागरिक भी, 2 अमेरिकी नागरिक भी सम्मानित। अमर उजाला से ही कुछ खेल की खबरें हैं। भारत की पाकिस्तान पर लगातार चौथी जीत, हॉकी प्रो लीग लंदन चरण के पहले मैच में 4-3 से हराया। एक और खबर है, खेल जगत से चोटिल, नीतीश की जगह सूर्यांश भारतीय T20 टीम में शामिल, और श्री चरणी पहली बार बने विश्व नंबर 1 गेंदबाज। और अब नजर डालते हैं दैनिक जागरण पर, लिखता है राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर की सिफारिश, एसआईटी ने सौंपी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट, 16 दिनों में सीयूटी यूजी का परिणाम जारी कर एनटीए ने चौंकाया।

0: पिछले साल परिणाम आने में 30 दिनों का लगा था समय। और खबर है, एक्सप्रेस वे पर पंचर लगवाने पर गाड़ी मरम्मत की सुविधा, ये खबर भी है हमारे दैनिक जागरण की। लिखते हैं, वे साइड एनिमिटी में शामिल होगी सेवा, NHI ने दिया क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश। और साथ ही एक और खबर है जो हम सबको चौंकाती है, फ्रांस में भीषण गर्मी से राहत पाने की कोशिश में 40 लोगों की डूबने से मौत, अधिकांश युवा। यूरोप में जारी भीषण हीटवेव के बीच फ्रांस में गर्मी से राहत पाने की कोशिश में कई लोगों ने जान अपनी खो दी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने मंगलवार को बताया, 18 जून से अब तक देश के 40 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। तो हम सब भी इसे चेत जाते हैं, गर्मियों में अपनी सुरक्षा हम सब करते हैं, कहीं भी ऐसे स्थान पर पानी में डुबकी ना लगाएं जो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। और दैनिक जागरण की एक और खबर है, प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती के लिए मिला अधियाचन, प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एडेड उच्च एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियों के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को ई अध्याचन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण मिलना शुरू हो गया है। तो ये थी कुछ अखबारों की सुर्खियां, आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: और आकाशवाणी नजीबाबाद के संग आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का। अभी आपसे हम जानकारी और भी साझा करेंगे, लेकिन आइए अभी रुकते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके सखी कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और आइए अब चलते चलते सुनते हैं एक और गीत। लेकिन उससे पहले ये जानकारी हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहते हैं कि आज है हम 24 जून, लेकिन हम मना रहे हैं 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा या नशा मुक्त भारत सप्ताह भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले एक राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान है जो 12 से 26 जून तक चलता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको सप्ताह भर चलाने का उद्देश्य, श्रोताओं आप जानते ही हैं, जागरूकता अभियान चलाना है, लोगों को नशे से मुक्त होने के लिए प्रेरित करना है, युवाओं को शिक्षित करना है और ऐसे समुदाय में शामिल करना है जो नशे से दूर है और जो नशे में ग्रस्त हो चुके हैं उनको साधारण जिंदगी के लिए प्रेरित करना है, प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना है। और इसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्थानीय पुलिस, शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन भी कार्यक्रम करते हैं, पद यात्रा की जा रही है, साइकिल रैली से, नुक्कड़ नाटक से यानी स्ट्रीट प्ले से या चित्रकला की प्रदर्शनियों से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आप और हमें एक सामूहिक प्रतिज्ञा ले ही लेनी चाहिए और ये प्रतिज्ञा लीजिएगा हमारे साथ मिलकर कि मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आप विरोध जताना शुरू करेंगे। रुकिएगा अपने भाई को, बंधु को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, क्योंकि ये नशा हम सबको एक गलत रास्ते पर ले जाता है। और सरकार है, स्वयंसेवक हैं, वो तो अपनी नज़र रखते ही हैं, लेकिन जो शैक्षिक हमारे संस्थान हैं या लघु फिल्में हम जो बनाते हैं उनको भी दिखाना है ऐसे व्यक्तियों को जो नशा करने की ओर लगे हुए हैं या जिसके मन में जिज्ञासा होती है कि कैसे हम इस नशे को अपना कर आराम से जी सकते हैं क्या। बिल्कुल ना कहना है, तुरंत प्यार से आपको समझाना है कि भाई नशा हमें कभी नहीं करना है। नशा मुक्त भारत अगर बनाना है तो फिर वही बात हम जो हमेशा कहते हैं, सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा और करते करते एक दिन हम इसमें सफलता पा भी लेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हम दूसरों को कहते ही रहते हैं तुम ऐसा ना करो, सबसे पहले स्वयं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो समझ गए ना सुधीर श्रोताओं हमारी बात कि नशा मुक्त पखवाड़ा जो है हमारा ये भारत सरकार के नहीं हमारी ज़रूरत है, हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो हम याद रखें 12 जून से 26 जून तक ही नहीं बल्कि हमेशा इस अभियान को हमें चलाना होगा।

तभी तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, प्यार से, मोहब्बत से, और स्वस्थ होकर. स्वस्थ होंगे तभी तो कोई काम कर सकेंगे. और देखिए, हमें पता है आपका दिल अब क्या कह रहा है. आपने कहा कि मैंने कहा था आपसे एक गीत सुनाएंगे, पर चलते चलते भाई ये बात भी तो आपसे करनी बहुत जरूरी थी.

0: श्रोताओं, इस प्यारे सी गीत के साथ ही कार्यक्रम सूरज के साथ साथ करने की संपन्न अपनी सखी निधि भारद्वाज को अनुमति दीजिएगा इन पंक्तियों के साथ। अलविदा कहना तो महज रस्म है जमाने की, अलविदा कहना तो महज रस्म है जवानी की, असल बात तो है कल फिर से महफिल सजाने की। धड़कनों में आज के तराने बसाए रखिए, हम फिर लौटेंगे, तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार।
1: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के

0: रक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देश

0: राष्ट्रों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल

0: फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
2: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamam bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying, "These remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses." Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve."
4: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
2: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with the UAE in recent several years has seen a major upswing.
5: Our relationship with United Arab Emirates several years has actually seen a major upswing. In that upswing, the defense partnership also plays an important role. And that also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with the UAE.
2: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. She added that India continues to be among the world's fastest-growing major economies, with GDP growth projected to remain robust at around 7% over the medium term. The summit was chaired by French President Emmanuel Macron. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, Dr. Lahiri said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world.
6: It was a short-term problem. I hope the war is going to end, peace will prevail, and the impact was in terms of energy prices and transportation cost. Freight rates went up. There was disruption. You'll find even in these figures somewhere, prices went up, but quantities were not available, so there was a problem. I think it was a temporary supply shock.
2: India's critical mineral mission has gained significant momentum with the successful auction of 56 critical and strategic mineral blocks and 11 exploration license blocks by the Ministry of Mines. The Ministry has successfully auctioned 10 critical and strategic mineral blocks under the 7th tranche of auctions, taking the total number of such blocks auctioned to 56 out of 88 blocks offered so far, with a success rate of over 63%. The Ministry informed that for the first time, critical mineral blocks in Gujarat, Uttarakhand and Telangana were auctioned by the centre. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India and the United States opened high-level trade talks in New Delhi to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. More from our correspondent.
7: Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th July when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. On February 20, the U.S. Supreme Court struck down sweeping tariffs. This led the U.S. administration to impose a temporary 10% tariff under Section 122 of the Trade Act on all countries for 150 days starting February 24, which is due to expire on July 24. Following a de-escalation in bilateral trade tensions, the U.S. reduced the reciprocal tariff on most Indian goods to 18% and removed a previous 25% penalty tariff. India had proposed reducing or eliminating tariffs on a range of U.S. industrial and agricultural goods, including dried distillers' grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fruits, soybean, oil, wine and spirits, among others. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
2: U.S. President Donald Trump claimed that Iran has agreed never to acquire a nuclear weapon as part of what he described as a historic peace agreement that ended tensions in the Strait of Hormuz. Speaking at a Mack Trucks manufacturing facility in Pennsylvania, Trump said, preventing Iran from obtaining a nuclear weapon remained the central objective of his administration's policy towards the Islamic Republic.
8: As you know, we just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been any, you've never seen anything like this. We are ensuring one thing very importantly. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that.
2: The International Maritime Organization, IMO, announced an evacuation plan for more than 11,000 seafarers still stranded in the Strait of Hormuz. IMO Secretary General Arsenio Dominguez said in a statement that the IMO has secured the necessary safety guarantees and verified safe navigation conditions to support the evacuation operation. The operation follows the signing of a Memorandum of Understanding between Iran and the United States and will be carried out in close cooperation with Iran, Oman, other countries in the region and the maritime industry. Back home, Tamil Nadu government has approved the Vetri Tamidagam Vision document. A key initiative of the document is Maternal Uncle's Gold Ring Scheme. Under the scheme, a 1 gram gold ring will be presented to newborns of families permanently residing in Tamil Nadu, provided the delivery takes place in government hospitals. The state government has allocated an annual budget of 755 crore rupees for its rollout. Chief Minister C. Joseph Vijay has directed that tenders for the scheme will be invited immediately. On to sports. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in the United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. The Group L match between England and Ghana at Boston Stadium in Foxborough has concluded in a goalless draw. Following the draw, both teams moved to 4 points from 2 matches, remaining tied at the top of Group L. In another Group L fixture, Croatia defeated Panama 1-0 at Toronto Stadium. The IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
9: Thank you, Anuja. Center tightening norms for foreign contributions has been widely covered by all the dailies today. Hindustan Times writes, government issues new rules for Foreign Contribution Regulation Act to boost the fundraising ability of religious bodies registered as NGOs and to bar religious conversion. BRICS national security advisors and heads call for joint action against terrorism, cyber threats, states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
2: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
10: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तरतावन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मज़म्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तरतावन के लिए कहा है। भारत की तरफ से यह आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदनशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैनुल अक्वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
11: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
10: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुतालिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वजीरे खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में خاطر خواہ تیزی آئی ہے. کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے. وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے. نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے, جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے. نیلامی کی یہ شرح 63% ہے. وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات, اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے. یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمیسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور سے ملاقات کی. ایک رپورٹ.
12: دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے, جب تجارتی شراکت داروں سے درآمد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی. 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بےحد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا. اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا. یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا. دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے, اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے. بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
10: اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں. اس دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے. پینسلونیا کے شہر میکنگی میں مین ٹرکس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اسلامی جمہوریہ کی جانب اس کی انتظامیہ کی پالیسی کا اصل مقصد ہے. جناب ٹرمپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں شدید کمزوری آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت اور دفاع کے شعبے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ایشیا خطے میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حملے جاری رکھیں گے اور ملیٹنٹ سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے, پائیدار امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا ہے. خلیج فارس کے خطے کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر ابو ظہبی پہنچنے پر جناب روبیو نے زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی پر بات چیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے الگ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزیف اون اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وین سے بات کی ہے, اور یہ کہ امریکی اہلکار اس وقت لبنان میں مصروف عمل ہیں. سمندر سے متعلق بین الاقوامی تنظیم آئی ایم او نے ان 11,000 سے زیادہ جہازوں کو نکالنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو آبنائے ہرمز میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل ارسینیو ڈومیگز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے ان لوگوں کو نکالنے کی کارروائی میں مدد کے مقصد سے حفاظت کے لیے درکار ضمانتوں اور محفوظ جہاز رانی کی توثیق شدہ شرائط کی یقین دہانی کر لی ہے. تمل ناڈو کی حکومت نے ویٹری تمزیگم ویژن دستاویز کو منظوری دی ہے. اس دستاویز کی اہم پہل میٹرنل انکلز گولڈ رنگ اسکیم ہے. اس اسکیم کے تحت تمل ناڈو میں مستقل طور پر رہائش پذیر خاندانوں کے نوزائیدہ بچوں کو 1 گرام سونے کی رنگ پیش کی جائے گی, بشرطے کہ بچے کی پیدائش سرکاری اسپتال میں ہوئی ہو. भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले तीन दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमरीका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
13: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने आईएएस 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अज़्म और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क़यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हुरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनीनो की वजह से मानसून के असरात से निपटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान सीयूईटी 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी सीयूईटी पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
10: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजव्वज़ा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
14: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं प्रातः के 8:45 और 14 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का पहला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है भाई भाई। संगीत दिया है मदन मोहन ने और गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने। साथियों हम सबका जीवन में ये चाह होती है कि हम सुख शांति और समृद्धि से अपने परिवारजनों के साथ अपने साथियों के साथ रहें और इसके लिए तो भाई अपने छोटे से जीवन में हमेशा अच्छे विचार भी अपनाने पड़ते हैं।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: गोल्डन हिट्स कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है कोरा कागज, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और शब्द रचना है एम जी हशमत की। जीवन में कभी ऐसा भी होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें तुरंत नहीं मिलता या अथक प्रयासों से मिलता है, तब हताश होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि विचार करना होगा कि हम इसे कैसे प्राप्त करें। लेकिन जब मन दुखी होता है उस समय हमें ज़रूर किसी के साथ की आवश्यकता होती है।

0: चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और लीजिए अब पेश है आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुरेश वाडेकर के स्वर में। संगीत है खयाम का और गीत के बोल लिखे हैं नक्श लालपुरी ने। फिल्म का नाम है दिल आखिर दिल है। साथियों, सच में दिल तो आखिर दिल ही है, और अगर बात नज़रों की है तो फिर उसके लिए जितनी भी शायरी शायर अलग अलग तरीके से कहते हैं, हमेशा नई सी लगती है। जैसे कि कुछ पंक्तियाँ, तुम हमें जब भी मिलती हो, तुम हमें जब भी मिलती हो, नज़रें झुका लेती हो, खुदा का शुक्र है इतना कि हमें पहचान लेती हो। जी हाँ, नज़रों की भी अपनी एक भाषा होती है, और उस भाषा को समझने के लिए एक प्यारी सी नज़र और सुंदर सा दिल ज़रूर चाहिए।

अभी आपने दिल आखिर दिल है में सुरेश वाडेकर के स्वर में ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज़ में फिल्म दिल ही तो है फिल्म का ये गीत। संगीतकार हैं रोशन और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

दिल ही तो है, लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में आपने ये प्यारा सा गीत सुना। और सच में अगर किसी का मन हमसे जुड़ जाता है तो फिर उसकी नज़रें भला बताइए दूर कैसे जा सकती हैं। तो प्रेम का ये बंधन बड़ा पवित्र होता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, सबके अलग रिश्ते हैं, अलग मर्यादा है, लेकिन प्रेम एक सा है, निश्चल निर्मल। गोल्डन हिट्स का ही कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का यह अगला गीत, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। तो सुनिएगा अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को, राम लखन फिल्म में। गीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और क्षमा कीजिएगा, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। देखिए, जब कोई किसी से दूर होता है तो सच में उसका मन अलग अलग विचारों में खो जाता है, सुध बुध ही नहीं रहती। और ऐसे में जब कोई मिलता है तो पूछना तो लाजमी है कि जब हम आपसे दूर थे आप क्या कर रहे थे। तो सुनिएगा ये प्यारा सा गीत राम लखन फिल्म से।

0: रामलखन फिल्म का एक गीत आपने सुन रहा, मनहर उदास, और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीतकार थे आनंद बख्शी। आइए साथियों सुनते हैं अब कार्यक्रम का ये अगला गीत। मन की बातों को बता देता है पूरा और कहता है कि हाँ आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। सुनिए बालिका वधू में अमित कुमार को, संगीत आर डी बर्मन का और गीतकार आनंद बख्शी।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या

0: श्रोताओं, मुकेश के गाइस गीत के साथ ही गोल्डन हिट्स कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। जिले की हलचल कार्यक्रम अब हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। आज इसमें आप सुनेंगे सीतापुर और श्रावस्ती जिले की हलचल। आप सुन रहे थे अपने ही मेल व पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। अब प्रस्तुत है श्रावस्ती व सीतापुर जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
2: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकोना, पिरवितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान SDM संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर DJ बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
3: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मुहर्रम त्योहार मनाने के लिए, उसको सभी लोगों को अवगत कराएंगे तथा सबको विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षक के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामाजिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भव्य शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संदेश दिया।
4: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार दबाव बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 7 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, आज हर गरीब आदमी।
2: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत दत्तन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों को से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।
1: श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
5: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
6: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए, जहां भी हमारी नजूल की भूमि है नोटिस दे जहां जहां दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
5: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदि गंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारम्भ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गाँव गाँव तक विकास कार्य पहुँच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्यवाही में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। प्रातः के 9:25:07 हो रखे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रखे हैं शालिनी जौहरी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आप सुन रहे हैं शालिनी जौहरी के गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

धरती गाती है। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शालिनी जौहरी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

राधे से धीरे चलने का मनोहार करता हुआ ये लोकगीत आपने सुना शालिनी जौहरी के स्वर में। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आप सुन रहे हैं रुखेल खंडी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं ये अगला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आपने शालिनी जौहरी के गाए रूहेल खड्डी लोक गीत सुने। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, अब से कुछ ही देर में आप प्रातः 10 बजे सुनेंगे पत्रों व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और इस गीत में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 9457078288। तो श्रोताओं, इस पर आप अपनी पसंद के गीत भेज सकते हैं। बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम गीत तुम्हारे शुरू होने के लिए है। और जो श्रोता पसंद करते हैं प्रायोजित कार्यक्रमों को, उनके लिए है ये अनाउंसमेंट। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT। शास्त्रीय संगीत के संगीत प्रेमियों के लिए भी ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:05 पर, जिसमें शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा।

बहनों का कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा दिन में 1:15 पर, जिसमें आज क्रम रहेगा मारा घर आंगन भोर से सांझ तक। शिवानी से तनप्रीत कौर की बातचीत का पुनः प्रसारण आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:45 पर हीरा सिंह राणा के गाए कुमाऊनी लोकगीत, और फिल्म संगीत पर आधारित आपका पसंदीदा कार्यक्रम संदेश.com का समय रहेगा 2:02:30।

0: सुगम संगीत में शाम 7:45 पर युवराज सिंह के गाए शब्द आप सुन सकेंगे। दिल ने फिर याद किया, रात्रि 10 बजे सुनेगा ये व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी के हम नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रातः के 10 बजने को हों। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज आपकी सखी निधि भारद्वाज, और मेरे साथ हैं हमारे साथी
1: फैजुर रहमान।
0: आप सभी को हमारा
1: प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बहुत बहुत आपका खैर मकदम स्वागत, और आपके मैसेज हमारे पास लगातार आ रहे हैं श्रोता, और वाकई ये प्यार बड़ा ही अच्छा होता है, देखने लायक होता है। जब आप हमें मैसेज करते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हमारे सही कहा फैजुर रहमान जी, ये प्यार का एहसास हमें कराता है, ये बात का एहसास कि आप हमारे साथ हैं। और देखिएगा आपके बोलने से तो पता चल रहा है कि ये तो हमारे पास हमारे 9457078288 नंबर पर फरमाइशों की बाढ़ से आ गई है, और आपके हाथों में पत्र भी बहुत सारे हैं।
1: तो आज मैंने सोचा कि कुछ जो है पत्र और लिए जाएं, तो व्हाट्सएप जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, और आज हम जो है देख रहे हैं कि कुछ पत्रों का सिलसिला भी ज्यादा हमारे पास आज है।
0: हाँ तो बिल्कुल, ये तो हमारा काम ही है, व्हाट्सएप मैसेज भी लेने हैं और पत्र भी, तो शामिल करते हैं पहला पत्र।
1: जी, ये पहला पत्र हमें मिला है अनारकली बाजार जगराव से। लिखने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपांशी, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सूचा पाठक। एक और पत्र हमें मिला है, ये लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आपने हमें ये पत्र भेजा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से पत्र भेजने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर।
0: और ये हमारे पास मैसेज आया है आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी का, और ये हमें लिखते हैं सिहारा जिला बिजनौर से, शाही मार्केट से। और अगला जो मैसेज है ये है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुढ़ाना और

0: द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा।
1: और ये मैसेज हमें मिला है गंज डुंडवारा से, शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, दान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का।
0: जी सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी और डॉक्टर ईशानी पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद जैद, अक्षा रानी, इंशा, रीवा, नाबिया और आयरा, जहानाबाद, नजीबाबाद ज़िला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से पत्र के माध्यम से हमारे साथ जुड़े।
1: जेल रोड जालंधर से भी हमें फरमाइश भेजी है व्हाट्सएप पर अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर ने।
0: जी ये पत्र हमारे पास आया है लुधियाना पंजाब से अमरजीत, परमजीत, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फ़कीर, डब्लू उल्ला फ़कीर और परवीन आसमा। बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं पत्र के माध्यम से बद्रू अली अंसारी, फर्जो अली अंसारी और इनका परिवार।
1: और ये अंतिम जो हम ले रहे हैं मैसेज है हमारे पास पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत जी का, और बहुत सारे साथी अभी और शामिल होंगे, लेकिन सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत अभिजीत और साधना सरगम की युगल आवाज में फिल्म मासूम से।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम की तुम्हारे में। और जो श्रोता नए जुड़े हैं फैजुर रहमान जी, उनके लिए हम अपना फोन नंबर बता देते हैं।
7: जी, हमारा नंबर है 9457078288।
6: तो अगला गीत हम आपको सुनवा रखे हैं श्रोताओं, उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज में, फिल्म का नाम है तेरे नाम। और तेरे नाम को सुनना चाहते हैं आप सभी।
7: जी, ये पत्र हमें भेजा है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से, लिखने वाले हैं खुशी, गणेश, कार्तिक, संजना, ललिता, स्वाति और मालती।
6: शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी भी इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।
7: जी, महाराजा रेडियो श्रोता संघ से हमारे साथ जुड़े हैं पत्र के माध्यम से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। एक और पत्र हमें मिला है श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, साक्षीताई राजे जाधव, जगुताई, संचित, प्रथमेश, सोहम, प्रणाली और सानवी देशमुख। आपने हमें ये मैसेज भेजा है जिला जालना से। और एक और पत्र हमारे पास आया है शिवाजी चौक राजिम से, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव का। अमरपुर से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव।
6: और व्हाट्सएप पर अपनी पसंद भेजते हैं लिखकर MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशर, डॉक्टर शीता साहनी, झुमरी तलैया से फरमाइश कर रहे हैं डॉक्टर सोनम, बरका काना से ख्वाहिशमंद हैं इस गीत के नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम। और आप हैं हमारे साथी
7: ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। आपने हमें ये मैसेज भेजा है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से।
6: इसी गीत की फरमाइश की है आपने गांव खेड़की जिला बिजनौर से दिव्यांशु यादव और आशुतोष यादव जी, वसुंधरा यादव, विनायक यादव, दिग्दर्शन गौड़ जी और हर्षवर्धन यादव जी ने। आप सब सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये गीत। और इस गीत में एक और साथी जुड़े हैं, आप हैं अहमदपुर खैर गांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली।
7: ये मैसेज हमारे पास आया है सरगुजा मैनपाट से, लिखने वाली हैं रुबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशमा थापा। जूट मील रायगढ़ से व्हाट्सएप मैसेज के साथ जुड़े हैं डब्बू बेलदार, आदिबा सरफुद्दीन और आसमा बेलदार। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ, अर्चना, हीरामन, प्रणय और प्रतिभा हमारे साथ जुड़े हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से।
6: और इसी गीत की फरमाइश करते हैं आप हमारे साथी नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमान नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। गांव पांठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, ऊर्षा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धन श्री बुरांडे भी अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं। और आप हैं हमारे साथी परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई।
7: कस्बा उगहता बदायूं से व्हाट्सएप हमें भेज रहे हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता।
6: ये फरमाइश हमें मिली है आपकी गांव व डाकघर निम्ना बाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवलीत कौर और करमजीत कौर भी सुनना चाहते हैं और आप हैं हमारे देखिए कार्यक्रम में। हम इस गीत के लिए अंतिम फरमाइश लेते हैं आपकी। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदी भाई बागरी। और आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये गीत फिल्म तेरे नाम से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरे नाम का ये गीत और फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अब एक और गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म दिल का रिश्ता से। आवाज़ है अलका याग्निक और कुमार सानू और साथियों की,
1: और इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुना हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी
0: जी। ये पत्र हमारे पास आया है जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्चिता, आप हमें लिख रहे हैं, ये यवतमाल से पत्र भेज रहे हैं। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। एक और पत्र हमारे पास है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकर, शर्मीन और मोहम्मद रिहान मोहम्मद नूर, आपने हमें ये मैसेज भेजा है जसपुर उत्तराखंड से।
1: ये मैसेज हमें मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन का। और आप हैं हमारे साथी इस गीत को सुनने के लिए।
0: जी, ये मैसेज हमारे पास आया रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी और प्रगति नाचानी का व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं और महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से आपने हमें ये मैसेज किया है। चंडीगढ़ से सेक्टर 67 मोहाली से हमें मैसेज कर रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज और बिट्टू बजाज और साहिल।
1: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी पलिया से अपनी फरमाइश भेजते हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय भी इसी गीत के सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। गांव नई बस्तीगंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद आसिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने भी अनुरोध किया है अपनी पसंद के गीत के लिए।
0: जी, ये पत्र हमारे पास आया है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार।
1: बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमार कंडे, संजय और बेबी किट्टू भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी बाबू, जब्बू अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकर, जिनका पत्र अभी हमने पढ़ा भी था व्हाट्सएप पर भी आप हैं। और आप हैं हमारे साथी अब्दुल सत्तार अब्बासी मुगलपुरा बागपत से, आपको सुनना है अपनी पसंद का ये गीत। और इसी गीत के क्रम में जुड़ रहे हैं बिहार स्टेट से मोहम्मद याकूब आशमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आशमा कुरैशी, मोहम्मद सलीम आशमा कुरैशी, मोहम्मद कलीम आशमा कुरैशी भी।
0: मलियान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन और सरदाना मेरठ से ही जुड़े हैं हमारे साथ आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन।
1: दिल का रिश्ता इस फिल्म का गीत आप भी सुनना चाहते हैं। कोल सिटी पर का गाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहिनी और मोहम्मद अफजल मलिक।
0: अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हमें व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं।
1: मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से एक और फरमाइश हमारे साथी करते हैं अभिजीत ग्वाणकर, राही श्रीमती सरिता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन ग्वाणकर और टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा, नागपुर से वैशाली शिलेश ग्वाणकर, सुमित ग्वाणकर, कुमारी ध्वनि ग्वाणकर परी भी सुनना चाहती हैं दिल का रिश्ता फिल्म का ये गीत। और आप हैं हमारे साथी
0: जी रामगंज खंडवा से पत्र भेज रहे हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, सोनू, मोनू, संजू, देव, रमेश, रमेश पांचोली और खुश नसीब। एक और पत्र हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय।
1: आपका अभी व्हाट्सएप मैसेज भी हमें मिला था, देखिए पत्र भी पहुंच गया। और आप हैं वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल
0: जी। नाज मंजिल महसोल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख।
1: मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिगड़ी लोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं और आप हैं हमारे साथी
0: जी। मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी अस्तुपुरा जिला मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान बेगम, निखत परवीन, नूर महल महसौल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। बहादुरगंज गाजीपुर से ये व्हाट्सएप मैसेज हमें कर रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद।
1: बीट शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर गट्टे, संगीता गट्टे, साक्षी गट्टे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीवी कुलथे भी अपनी फरमाइश भेज रहे हैं और आप हैं हमारे साथी दीवाना रेडियो लिसनर्स कब जमा। जबानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल गमरिया जमशेदपुर से भी हमें फरमाइश भेज रही हैं अपने साथियों के साथ, स्वाति जायसवाल, विपिन जायसवाल, दीप कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। तो आइए आप सब के साथ हम भी सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है
0: दिल का रिश्ता।

0: जी हाँ बिल्कुल, दिल का रिश्ता बहुत प्यारा होता है और हम अपने श्रोताओं से उसी रिश्ते को निभाते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से अपने पसंद का ये कार्यक्रम गीत तुम्हारे मैं हूँ। आज आपके साथ आपकी सखी निधि भारद्वाज और मेरे साथ है आपके साथी
1: फैजुर रहमान।
0: तो फैजुर रहमान जी, कार्यक्रम का अगला गीत हम अपने श्रोताओं को बता दें, हम सुनवा रखे हैं उदित नारायण के स्वर में, फिल्म का नाम है साया और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कमल।
1: जी एक पत्र हमारे पास आया निधि जी, और ये है रियासत हुसैन सिद्दीकी और सिंह मेडिकल स्टोर जसपुर ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से ये हमें लिख रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत पत्र इन्होंने हमें बनाकर भेजा है और ऐसा लगता है कि वाकई इन्होंने प्यार अपना इस पूरे पत्र में,
0: प्यार तो प्यार है, रंगीन प्यार है, कई अलग अलग रंगों से
1: अच्छे कलर करके इसको भेजा है।
0: जो बात व्हाट्सएप मैसेज में है वो पत्रों में उससे अलग ही है। कभी कभी कुछ होता है व्हाट्सएप पर भी अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, पर ये जो लिफाफा है ना भाई, क्या ही कहने। और अगली फरमाइश की बात करते हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा, ये हमें यूपी गुन्नौर से भेज रही थी। और आप है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अफान अब्बासी और इसके बाद पूरा अब्बासी परिवार।
1: जी ये मैसेज हमारे पास आया नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत नाज, फरत नाज, रिफाकत नाज, नुजहत नाज, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज।
0: मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सुनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश, जिला मुरादाबाद से अपनी फरमाइश भेज रहे हैं।
1: जी मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी और लाइबा मलिक हमारे साथ जुड़े हैं छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से।
0: गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से भी हमें फरमाइश मिली है। राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना की और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप।
1: कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और साथी आप हमें ये मैसेज भेज रहे हैं अनारकली बाजार जगराव से।
0: फिल्म साया का एक गीत सुनना चाहते हैं दंतरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा।
1: जी अनुसुईया, पवन राजे और छत्रपति सांभाजी नगर से हमें मैसेज कर रहे हैं मंगेश इंगले, संध्या और स्वराज विराज।
0: अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल और नानक चंद जी, शिवा कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का और आप हैं हमारे साथी
1: राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से।
0: ये फरमाइश हमें मिली है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया की।
1: ये मैसेज हमें भेजा है शहर दिल्ली से मनमोहन चुग, मीठी चुग, चुग, वसीउल्ला अंसारी, राज अंसारी, डुमराव से हमें मैसेज कर रहे हैं।
0: और ये है जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव और प्रभा रानी जटोलिया, मुंदी चेक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी ने भी अपनी पसंद का एक गीत सुनना चाहा है और आप हैं हमारे साथी जो कि एक निवेदन है। देखिए पुराना तालाब डुमराव से पुनः आ गई आपकी फरमाइश, इस चक्कर में हमारे बहुत सारे वो साथी रह जाते हैं जिनके नाम अभी नहीं मिले हैं, तो आप नए नामों को भी स्थान देने दीजिए, हम तो लगातार चाहते हैं कि नए साथी जुड़ते रहें। जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से
1: जी लिखने वाले हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, अनाबिया बिटिया अली शाह, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया।
0: हाँ जी, जब कभी हम वो प्रोग्राम करते हैं ना हेलो नजीबाबाद या फोन इन प्रोग्राम, तो इस तरह के नाम एक दूसरे

0: जुड़ते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप
1: बिल्कुल।
0: है नंगला खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा जी।
1: जी टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, ये हम पहले भी शामिल कर चुके हैं इनको,
0: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और देखिए पुनः निवेदन कि कुछ ऐसे साथी भी हैं जिनका नाम अभी तक शामिल नहीं हुआ है, वो भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। आप है हमारे साथी
1: मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजाउल्लाह शेख, फरहान शेख और साइम समयारा आजमीन और गुड़िया जी,
0: तेलंगाना भोंगीट से
1: जी।
0: तो आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। और ये है नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस गांधवानकर, निर्मला और विशाल। और आप है हमारे साथी डी अशोक कुम्भार, अविका, जीविका सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, गणेश, अविका आर्ट, श्री रामपुर से, कोयसे बस्ती पूनावले से भी फरमाइश मिली है। जय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े, शाहिशाह सोनवड़े की। और आप है हमारे साथी
1: जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।
0: और ये अंतिम फरमाइश अभी हम ले रहे हैं इस गीत के लिए, श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित आयाल और प्रथमेश कुमारी, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी, हर्षिता देशमुख की, ग्राम पंचायत काली गांव चाफरा बाद से। तो आइए आप सब सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत जो हम आपको सुनवा रखे हैं, साया फिल्म से उदित नारायण के स्वर में, संगीत अनु मलिक का है और सईद कादरी की शब्द रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म साया का ये गीत, और अगले गीत के लिए हमें फरमाइशी मैसेज कर रहे हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरिफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरू सराय बदायूं से हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज से जुड़े हैं आफरीन खान, जमीर खान। एक मैसेज हमारे पास और आया है उत्तराखंड कि ठंडी ठंडी वादियों से हमें मैसेज कर रही हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी और शौर्य और दिनेश हमें।
1: हाँ जी फैजुर रहमान जी, मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी में इन्होंने ये शब्द जो जोड़े हैं ना, गुलाब की ठंडी ठंडी वादियाँ, तो बहुत अच्छा लगा,
0: हमें भी अच्छा लगा।
1: और ये है आप हमारे साथी सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी
0: जी, और मोहम्मद फरहान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून जिला मुरादाबाद ग्राम दोलापुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं दादरी गेट भिवानी से। एक और मैसेज हमें मिला है सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग का सहारनपुर से। ये मैसेज हमारे पास आया, हैप्पी डागला जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, आप हमें मैसेज कर रहे हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। ये मैसेज हमारे पास आया मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नास और भाभी सरिता गौतम रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हमें ये मैसेज कर रहे हैं। जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, रमेश चंद्र चौहान, प्रतीक चौहान सदर बाजार मालवाड़ बिलाड़ा से हमें मैसेज कर रहे हैं। और एक और मैसेज हमारे पास आया है मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप मैसेज कर रही हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, कुंभार गली श्री रामपुर से आपने हमें मैसेज करा है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और आदिब हमारे साथ जुड़े हैं कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से।
1: विलेज एंड पोस्ट नगली से हमारे साथ है हमारे साथी, और ये है देखिएगा इतनी देर में क्लिक और हुआ है और इन्होंने हटा दिया मैसेज अभी। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन जरिए के, सजीव डाबेरा लिखते हैं अकोट।

0: से अपनी पसंद का गीत सुनने की बात। और आप हैं देवरा हिसार से वीरेंद्र सुरेंद्र शमशेर मनोज भ्याण, हमारे इस गीत को सुनना चाहते हैं। और आप हैं नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम, और ये गांव खरकड़ा चौबीसी से आप हैं। फरमाइश करने वाले गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम, अंशिका और तमन्ना कांगड़ा। और
1: जी एक पत्र को और शामिल करते हैं, यह है मेन रोड तेलहारा से, लिखने वाले हैं प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर, सुनील पोहारकर, साहिल पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर। आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर फिल्म चलते चलते का ये गीत। आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की।
0: और इसी में जो हमने कहा था पूरा मैसेज पढ़ देते हैं गीत के साथ साथ। विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षर चौहान और उनके सभी साथियों के साथ सुनेगा ये प्यारा सा गीत है।

0: और श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपकी अंतिम फरमाइश लेने का। और फिल्म हम आपको बता देते हैं, हंगामा फिल्म का ये गीत साधना सरगम और शान की आवाज में सुनना चाहते हैं आप हमारे साथी करणवीर हाउस भुजो कैंचिया
1: भटिंडा पंजाब से,
0: परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर चौड़ा, करणवीर, करण, दविंदर, वरिंदर, कुलदीप और इनके बहुत सारे साथी,
1: बिटू भैया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया झज्जर हरियाणा से व्हाट्सएप हमें कर रहे हैं, संगमित्रा श्रोता संघ से वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी ने हमें मैसेज किया है, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने हमें पोटिया कला दुर्ग से व्हाट्सएप मैसेज किया है। और ये मैसेज हमारे पास आया है एमडी पतरोड़ा से, मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल का।
0: और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो आइए सुनवा रहे हैं हम आपको ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हंगामा से, और शान और साधना सरगम की युगल आवाज़ है।

0: श्रोता शान और साधना सरगम के गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम की तुम्हारे संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज
1: और मुझे यानी फैजुर रहमान को श्रोताओ दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ें हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। गीतकार हैं संतोष आनंद।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की युगल आवाज़ों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गीत के बोल लिखे थे संतोष आनंद ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत जारी है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आइए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा एक नगमा फिल्म बाजार से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, खय्याम का संगीत है, गीत रचना है मीर तकी मीर की।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और गीत फिल्म अजनबी से। किशोर कुमार की आवाज़ है, आर डी बर्मन का संगीत है, गीत रचना है आनंद बख्शी की।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत में श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म अजनबी से यह गीत। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आर डी बर्मन का संगीत था, गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम में आइए एक कड़ी और जोड़ते हैं और सुनते हैं फिल्म धर्म करम का ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने, आर डी बर्मन का संगीत है, गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म बैराग से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: फिल्म बैराग के इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT। कार्यक्रम का आज आप सुनेंगे भाग 1313।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की

सर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्म स्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ के रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
2: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
2: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
5: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
5: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूं।
5: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
2: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
6: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
6: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
3: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी,
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल
7: उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
4: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी।
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
4: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
4: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
4: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।

0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT और कार्यक्रम का श्रोताओं आज आपने सुना भाग 1313। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर श्रोता सुन सकेंगे हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बारूसी बांसुरी वादन, राग होगा मारवा, आपके साथ तबले पर संगत करेंगे उस्ताद साबिर हुसैन खान। घर संसार, ये कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा आज दिन में 1:15 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की भूमिका। साथ ही क्रम रहेगा महारा घर आंगन भोर से सांझ तक। इस क्रम में शिवानी से बातचीत करेंगी तनप्रीत कौर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा का समय रहेगा आज दिन में 1:45 पर। कार्यक्रम में होंगे कुमावनी लोकगीत, कलाकार होंगे हीरा सिंह राणा। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा संदेश.com आज दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा में कार्यक्रम होगा मेरा सपना उन्नत भारत, समय रहेगा शाम 5:00। जानकारी के विषय होंगे राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS, परियोजना श्रम और रोजगार मंत्रालय, साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा आज शाम 5:15 पर। कार्यक्रम के आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरीज और बूस्टर्स, साथ ही ढेर सारा फिल्म संगीत। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा हमारे केंद्र से आज शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा कुक्कुट पालन में चूजों की देखभाल, भेंटवार्ता में फसलों में संरक्षण, कृषि तकनीकी द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सटीक प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस भेंटवार्ता में डॉक्टर रोहित दिलीप नलावड़े से बातचीत सुनवाई जाएगी। वैज्ञानिक भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से ये प्रसारण है। कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा हमारे केंद्र से आज शाम 6:45 पर। कार्यक्रम में सुनवाई जाएगी वार्ता, शीर्षक होगा निर्मल वर्मा के उपन्यास।

आज रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम होगा, दिल ने फिर याद किया। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 होने को हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, राग है मारवा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद साबिर खान।

अभी आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग मारवा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद साबिर खान। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओ। और कार्यक्रम का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म कुछ कुछ होता है से। उदित नारायण और अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें हैं। जतिन ललित का संगीत है, गीतकार हैं समीर।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को। फिल्म थी कुछ कुछ होता है।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक और गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। फिल्म है हम आपके हैं कौन, संगीत है राम लक्ष्मण का, गीत रचना है रविंद्र रावल की।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को, फिल्म थी हम आपके हैं कौन। इस गीत को संगीत निर्देशन दिया था राम लक्ष्मण ने और गीतकार थे रवींद्र रावल।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकते हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म जन्नत का ये गीत। के की आवाज़ है, प्रीतम का संगीत है, गीतकार हैं सईद कादरी।

अभी आपने सुना फिल्म जन्नत का ये गीत। इस गीत को आवाज़ दी थी के ने। प्रीतम का संगीत था, सईद कादरी के बोल थे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। नदीम श्रवण का संगीत है, गीतकार हैं समीर।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म हम हो गए आपके का ये गीत, नदीम श्रवण की संगीत निर्देशन में, और गीत लिखा है समीर ने।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।

हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम होगा घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय होगा महिलाओं

0: के स्वास्थ्य में योग की भूमिका, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और क्रम रहेगा हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक। इस संदर्भ में शिवानी से बातचीत करेंगी तनप्रीत कौर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही क्षणों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन के खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन और खसूसी तहकीकाती टीम SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिशजदगी के जायवकू का मुआयना किया। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामा निगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा,
1: हमें कुछ शुरुआती आज मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनदिम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदाम का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकती टीम ने कल लखनऊ में जायवकू का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में साफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का एहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे,

0: और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का एहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे
2: 947 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को थारी बहन तनप्रीत की प्यार भरी राम राम। बहनों आप सभी का स्वागत है अपने इस कार्यक्रम में। और सुनाओ बहनों, भाई सब राजी खुशी, भाई घर में सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक? तो चलिए बहनों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावेंगे, लेकिन उससे पहले सुने हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: इंसान को हर पल चंदन का एहसास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: बहनों, फिर से स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम घर संसार में। तो बहनों, सुखी जीवन की आधारशिला क्या हो वे? बताओ बहनों। चलिए बहनों, मैं ही बता देती हूं कि बहनों, सुखी जीवन की आधारशिला जो हो वे, वो हो वे स्वस्थ जीवन, है ना बहनों। जब बहनों हमारा तन और मन स्वस्थ रहेगा, तभी तो हम अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में बेहतर योगदान दे पाएंगे। विशेषकर बहनों, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होवे। और इसी महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए बहनों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की भूमिका विषय पर। बहनों, योग न केवल शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखे है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखे का एक पुरानी पद्धति है। मैंनो, हम जीवन में, हमारे जीवन में कितनी जिम्मेदारियां होंगे भाई, ऐसे में योग हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और तनाव मुक्त रखने में हमारी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। मैनो, हम सभी की खातिर योग क्यों जुड़ी होवे? मैनो, योग से शरीर में लचीलापन आवे और शक्ति बढ़े है, और नियमित योग करने से तनाव, चिंता और अवसाद भी जो है वो कम हो गए हैं। बहनों, हमें कुछ भी हम कर सकते हैं। देखिए, हम लोग योग भी करे हैं, जिम भी करे हैं, आजकल अलग अलग तरह की सब पद्धतियां चल गई हैं जिससे कि हम स्वस्थ रह सके हैं, लेकिन योग जो है वो बहनों सबसे पुरानी पद्धति है। और नियमित योग करने से, मैंने बताया, जैसे तनाव, चिंता और अवसाद कम हो गए हैं। बहनों, इसके कई लाभ हैं। इसे करने से बहनों रक्त संचार बेहतर हो गए, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़े है, और साथ में बहनों हम महिलाओं में जो हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाना, उसे भी संतुलित रखने में योग जो है वो हमारी मदद करे है। और जो मेरी बहनें किशोरावस्था में हैं, युवा हैं, उनका योग से बहनों शारीरिक विकास बेहतर हो, मानसिक धर्म से जुड़ी समस्याओं से राहत भी मिले है। और बहनों, विशेषज्ञ की सलाह के से किए गए योगासन जो हैं वो, उसमें जो है गर्भवती बहनें जो मेरी हैं, उनको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखे है। और बहनों, ये प्रसव को आसान बनाने में भी योग जो है वो बहुत ही मदद करे है। बहनों, जब हम बहनों में रजो निवृत्ति हो ना, तो हमें बहुत ही गर्मी लगे है, चिड़चिड़ापन आ जाए बहनों में, नींद की समस्या हो जाए, ऐसे लक्षणों को भी कम करने में जो है वो सहायक हो योग। तो बहनों, हमें कौन कौन से योग हैं जो हम बहनों के लिए उत्तम हैं, जरूरी हैं और हमें करने चाहिए, हमारे लिए उपयोगी हों? सबसे पहले तो बहनों, ताड़ासन, फिर भुजंगासन, वज्रासन, तितली आसन, त्रिकोण आसन और शव आसन। साथ ही बहनों, इसके साथ साथ, आसनों के साथ साथ हमें अनुलोम विलोम और भ्रमरी प्राणायाम जो है, उससे हमें मानसिक शांति मिले है, तनाव से मुक्ति मिले है, और जो कि बहुत ही अत्यंत लाभकारी हो बहनों प्राणायाम। और हाँ बहनों, योग हमेशा हमें खाली पेट करना चाहिए, और हल्के भोजन अगर हम कर सके हैं बहनों, अगर हमने हल्का सा भोजन भी किया है तब भी हम जो है योग कर सके हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए बहनों कि हमें खाली पेट ही हम योग करें। और किसी बीमारी में या गर्भावस्था की स्थिति में भी विशेषज्ञ की सलाह से ही बहनों जो है वो योग करें, और अपनी क्षमता के अनुसार ही योग करें बहनों। योग महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय होगा बहनों। अगर मेरी बहनें रोज 20 से 30 मिनट योग के खाते निकाले ना बहनों, तो वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक सशक्त बन सके हैं। तो बहनों, आज ही संकल्प लो कि आप रोज जो है वो योगासन करोगे। रोज हमें 20 से 30 मिनट रोज योग करना है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, हमारा शारीरिक, मानसिक और हम मानसिक रूप से हम जो है वो स्वस्थ रह सकें। तो चलिए बहनों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ावें। चलिए चलते हैं आज के क्रम की तरफ, और आज है बहनों हमारा क्रम, हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक। जिसमें हम अपनी श्रोता बहनों को, आप में से किसी एक श्रोता बहनों को अपने स्टूडियोज में बुलाए हैं तो, और उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत करें हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं शिवानी से, तो चलिए शिवानी सुनते हैं, शिवानी से बातचीत की गई, तनप्रीत बात कर रही हैं शिवानी से, तो चलिए मिलकर सुनते हैं मारा घर आंगन भोर से सांझ तक। बहनों शुरू करें हैं हम आज दिनचर्या पर आधारित क्रम भोर से सांझ तक। आज हमारे साथ हैं हमारी एक बहन, चलिए हम जानते हैं उनसे उनका परिचय।
4: मेरा नाम शिवानी है, इनायतपुर से आई हूँ मैं।
3: तो शिवानी आप कब से इनायतपुर में रहती हैं?
4: 1.5 साल हो गया है मुझे।
3: तुम्हारी शादी वहाँ पे हुई इनायतपुर में?
4: हाँ।
3: पहले कहाँ रहती थी तुम?
4: पहले मैं सिवारी के पास मुकरपुरी रहती थी।
3: तो तुम्हारे मायके मुकरपुरी में है?
4: हाँ।
3: अच्छा, तुम्हारे मायके में कौन कौन है?
4: पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, भाभी हैं, भाभी के 2 बच्चे हैं और एक मेरी छोटी बहन है।
3: अच्छा, तो तुम्हारी शादी हुए 1.5 साल हो गया।
4: हाँ।
3: और अब तुम इनायतपुर में रहती हो, तो इनायतपुर में तुम्हारे घर में कौन कौन है?
4: अभी पापा हैं, मम्मी हैं,
3: यानी कि सास ससुर।
4: हाँ। दीदी की लड़की है छोटी।
3: दीदी यानी ननद?
4: मेरी दीदी है ना, जिठानी उनकी ननद।
3: अच्छा, जिठानी को दीदी बोलती हो तुम?
4: हाँ।
3: अच्छा, वो तुम्हारी दीदी है, मतलब दीदी यानी तुम्हारी खुद की बहन।
4: हाँ।
3: अच्छा, तुम्हारी बहन और तुम एक ही घर में रहती हो?
4: हाँ।
3: एक ही घर में तुम्हारी शादी हुई है?
4: हाँ।
3: ओ भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जिठानी भी और बहन भी। तुम्हें तो फिर मायके और ससुराल में कोई फर्क नजर नहीं आता होगा कि वहाँ बहन भी है और जिठानी भी हो गई है ना।
4: हाँ।
3: तो बहुत अच्छी बात है। और शिवानी, अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ाई लिखाई की?
4: हाँ जी।
3: कहाँ तक पढ़ी हो तुम?
4: मैं हाई स्कूल हूँ।
3: हाई स्कूल पढ़ी हो, आगे क्यों नहीं पढ़ी?
4: आगे हम 4 बहन थी, बस ऐसी आगे थी, कुछ दिक्कत आ गई थी घर में, इसलिए नहीं पढ़ पाई। पापा अकेले थे उस टाइम पे कमाने वाले, तो इसलिए पढ़ नहीं पाई।
3: अब तो गांव-गांव में हर जगह मुफ्त शिक्षा अभियान है, हर जगह कहीं पे तुम्हें फीस देने की भी जरूरत ना है, सरकारी स्कूल है हर जगह, तो तुम क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ना चाहिए।
4: हाँ,
3: शिक्षा तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है। तो हर जगह गांव-गांव में स्कूल हैं, कॉलेज हैं और शिक्षा हमें फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, तो हम क्यों ना उनका लाभ उठाएं। और तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर हैं। और अच्छा, तुम ये बताओ कि सुबह तुम कब उठती हो और कैसी तुम्हारी दिनचर्या शुरू होती है, क्या करती हो तुम?
4: मैं 5 बजे उठती हूँ।
3: अच्छा, तो फिर 5 बजे उठकर क्या करती हो शिवानी?
4: घर की साफ सफाई करती हूँ, झाड़ू।
3: अच्छा,
4: फिर

0: नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए, फिर उसके बाद में खाना बनाती हूँ दोपहर को।
1: अच्छा हाँ। अच्छा नाश्ता, फिर खाना, फिर घर का काम। घर का काम सारा कौन करता है? कपड़े धोना, सफाई पोछा करना, ये सब कौन करे है?
0: हम सब करते हैं, दीदी भी, मेरी दीदी है,
1: मिलके कर लेते
0: हाँ,
1: हो,
0: मिलके
1: मतलब मिलके
0: हैं।
1: सास भी हैं और
0: हाँ,
1: तुम्हारी जेठानी या बहन कह लो कुछ भी, तो वो भी हैं और तुम तीनों मिलकर काम कर लेती हो घर का।
0: हाँ,
1: तो बहुत अच्छी बात है कि मिलजुल कर काम करने से तो देखो, एक तो शिवानी थकावट भी नहीं होती और उसके साथ साथ आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ता है। इकट्ठे रहने में तो अलग ही मजा है। तुम्हें संयुक्त परिवार में रहना अच्छा लगता है या एकल परिवार में?
0: संयुक्त,
1: मतलब सबसे साथ इकट्ठे रहने में मजा आता है।
0: हाँ
1: बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, उनकी
0: हाँ
1: सेवा करना, घर का
0: हाँ
1: काम करना, सबको अच्छा लगता है। और चलो अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारी वो बात कि तुम सुबह उठकर खाना बनाती हो, घर का काम काज करती हो, साफ सफाई करती हो। और उसके साथ साथ तुम्हारे घर में क्या पशु पाल रखे हैं?
0: हाँ जी,
1: अच्छा, कितने पशु हैं तुम्हारे पास?
0: एक भैंस है,
1: एक ही भैंस है?
0: हाँ एक ही भैंस है।
1: अच्छी देखभाल कौन कर रहे हैं?
0: मम्मी भी करती हैं, हम भी कर लेते हैं। चारा घेरना, भैंस को नहलाना,
1: अच्छा,
0: हाँ
1: और
0: ये
1: दूध
0: काम
1: कौन दोता है?
0: दूध मम्मी दूहती हैं सुबह सुबह,
1: अच्छा, और शाम को?
0: शाम को हम दूध लेते हैं।
1: अच्छा, तुम दूध लेती हो दूध? अच्छा, तुम उसकी पूरी देखभाल कर लेती हो पशु की?
0: हाँ
1: तो वो तुम बेचते भी हो दूध या फिर घर पे ही रखे
0: नहीं,
1: हो?
0: बेचते नहीं हैं।
1: अपने इस्तेमाल के लिए रखते हो?
0: हाँ जी,
1: झाड़ पोंछ करना, वहां वहां की साफ सफाई करना, जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी है तो वहां क्या कर रखा है तुमने? पंखे वंखे लगा रखा है?
0: हाँ जी, पंखा लगा रखा है।
1: अच्छा, क्योंकि देखो पशुओं को भी तो
0: हाँ,
1: गर्मी
0: बहुत
1: लगे
0: गर्मी
1: है।
0: हो रही है ना।
1: भैंस कितना दूध दे देती है?
0: 2 लीटर देती है।
1: 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम, 4 लीटर। 4 लीटर घर के लिए बहुत हो जाता है।
0: हाँ।
1: चलो, दूध भी धो लिया और सारा घर का काम काज हो गया। कुछ तो खाली वक्त मिलता होगा तुम्हें शिवानी, उस टाइम में तुम क्या कर?
0: हाँ जी, मैं सिलाई करती हूँ।
1: अच्छा, सिलाई का शौक है तुम्हें?
0: हाँ जी,
1: क्या क्या सिल लेती हो?
0: सूट, फ्रॉक वगैरह, छोटे बच्चों के नेकर, फ्रॉक, ब्लाउज व्लाउज ये सिल लेती।
1: शौक है मतलब तुम्हें सिलाई कढ़ाई का?
0: हाँ
1: तो अपने कपड़ा, जैसे तुमने ये सूट पहन रखा है, तुमने खुद बनाया? अच्छा,
0: हाँ जी,
1: खुद सिला है तुमने?
0: हाँ
1: लेकिन अपने ही सिलती हो या फिर जैसे कोई दे गया कि हमारे कपड़े सिल देना, किसी और के भी सिलती हो?
0: हाँ सिल देती हूँ।
1: अच्छे पैसे मिल जाते होंगे।
0: हाँ जी,
1: कितने सूट सिल लेती हो दिन में?
0: यही एक या दो
1: अच्छा,
0: बस।
1: एक दो सूट सिल लेती हो। चलिए अच्छी बात है शिवानी कि घर में रहते हुए हम अपना कुछ आमदनी भी हम बढ़ा लेते हैं, और घर में रहकर हम अगर काम कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात नहीं है।
0: हाँ जी,
1: अचार मुरब्बा भी डाला है कभी तुमने?
0: हाँ जी,
1: अचार वगैरह बनाती हो? जैसे
0: हाँ जी,
1: आजकल आम का मौसम है तो
0: हाँ
1: खूब अचार डल रहा है भाई घरों में, है
0: हाँ
1: ना?
0: हाँ
1: तो अचार डाला तुमने या तुम्हारी सास डालती हैं?
0: मेरे हस्बैंड गिरते हैं।
1: अच्छा, वो बनाते हैं अचार?
0: हाँ, सब
1: अच्छा
0: काम रेडी करके दे देते हैं, डाल
1: अच्छा
0: देते हैं वे।
1: अच्छा तुम्हारी कभी तो कोई ख्वाहिश रही होगी ना शिवानी कि मुझे और पढ़ना चाहिए था? काफी छोटी उम्र की दिखती हो।
0: हाँ, पढ़ना चाहती थी, अब बाद में भी सोचा तो फिर पढ़ नहीं पाई मैं।
1: लेकिन पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती शिवानी, और
0: जी
1: हमें जब हमारा मन करे तब हम पढ़ सके हैं, है ना? शादी के बाद भी पढ़ सके हैं, तो अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सके हो, है
0: हाँ
1: ना?
0: जी,
1: और ऐसा नहीं है कि तुम अभी तुम्हारी उम्र ज्यादा है या तुम नहीं पढ़ सकती, तो तुम पढ़ो और भी पढ़ सकती हो।
0: हाँ जी,
1: और आजकल तो गांव गांव में हर जगह मुफ्त शिक्षा अभियान चल रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह मुफ्त शिक्षा, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा मिलती है। और सास ससुर कितनी उम्र के हैं? बूढ़े होंगे ना तुम्हारे सास ससुर? काफी उम्र के होंगे,
0: हाँ अभी
1: तो
0: अपना आप ही करते हैं फिलहाल।
1: तो उनके लिए खाना वाना बनाना ये सब तो तुम कर लेती होगी ना, उनकी
0: हाँ
1: सेवा करना कुछ, मतलब
0: हाँ
1: जैसे उन्हें पूछना। अच्छा, तुमने कभी हमारे जैसे हमारे रेडियो के कार्यक्रम आते हैं तुम सुनती हो?
0: हाँ जी, सुनती हूँ,
1: कौन कौन से कार्यक्रम तुम सुनती हो?
0: लोग ही सुनती हूँ मैं।
1: लोकगीत पसंद है तुम्हें?
0: हाँ,
1: अच्छा, कौन सा लोकगीत पसंद है तुम्हें?
0: रंगीला और बालमा,
1: अच्छा, और भी कोई पसंद है?
0: ये मुझे सबसे अच्छा लगता है।
1: शिवानी, आपको हम आज सुनवाते हैं आपका पसंदीदा लोकगीत,
0: मैं तो रोज सुनती हूँ घर पे।
1: तो चलिए सुनिए फिर, आज भी सुनिए आप ये वाला लोकगीत, ठीक
0: अच्छा
1: है?

0: तो कैसे लगा शिवानी आपको हमारा ये लोकगीत?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: मजा आया सुनकर लोकगीत?
1: हाँ जी।
0: अच्छा शिवानी, ये तो वही बात, लोकगीत सुनने पसंद है। और तुम खाली वक्त में क्या करती हो?
1: और खाली वक्त में और सॉन्ग सुन लेती हूँ।
0: अच्छा गाने भी सुनती हो, गाने भी सुनना पसंद है तुम्हें। अच्छा तुम्हारे पति जो हैं वो क्या काम करते हैं?
1: घर जाते हैं, जमीन है ना हमारी, तो उसमें काम करते हैं,
0: खेती बाड़ी का काम करते
1: हाँ
0: हैं।
1: जी।
0: अच्छा खेत में क्या क्या उगा रखा है तुमने?
1: गन्ना है फिलहाल तो।
0: अच्छा
1: अभी तो
0: गन्ना है। और भी कोई काम करता है? तुम्हारे ससुर भी जाते होंगे खेतों में काम करने?
1: हाँ,
0: ससुर भी जाते हैं, पति भी जाते हैं,
1: हाँ सास भी जाती
0: सब
1: हैं।
0: जाते हैं। तुम भी जाती हो कभी खेतों में काम करने?
1: नहीं
0: तुम नहीं जाती?
1: नहीं
0: अच्छा कभी नहीं गई खेत में?
1: गन्ना है, मुंजी मुंजी लगाते हैं,
0: अच्छा
1: गेहूं।
0: सारा दिन मतलब खेतों में ही रहते होंगे, पति
1: हाँ
0: भी,
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: ससुर भी,
1: जी
0: सब खेतों में काम करना या खेत की देखभाल करना सब काम। तुम जब तुम खाली होती हो तुम जाकर खेतों में काम कर सकती हो? तुम एक संयुक्त परिवार में रहती हो, एक दूसरे के काम आते हैं। देखो कभी कोई बीमारी है कुछ है तो
1: हाँ
0: एक
1: जी
0: दूसरे का हम साथ दे सकते हैं। अगर हम इकट्ठे रहते हैं संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं या कुछ है तो हम इकट्ठे रहकर उन्हें आसानी से सुलझा भी सकते हैं, है ना शिवानी?
1: हाँ जी
0: तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और बताया कि आपका सुबह से लेकर यानी भोर से लेके सांझ तक आपका कैसे आपका दिन रहता है, कैसे हम अपना दिन बिताती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों अभी आप सुन रही थी क्रम मारा घर आंगन भोर से सांझ तक, जिसमें शिवानी से बातचीत कर रही थी तनप्रीत कौर। बहनों कैसे लगी आपको की गई बातचीत? तो बहनों हम सभी का जीवन, हम सब बहनों का जीवन जो है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे हैं। बहनों सारा दिन हम काम में इतना व्यस्त हो जाएं, अपने घर की अपने बच्चों की देखभाल करते करते हमें अपना ध्यान ही ना रहे है। तो बहनों हमें अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने बताया बहनों हमें योग जरूर करना चाहिए ताकि हम जो हैं वो स्वस्थ रह सकें। और बहनों आज एक और दिवस है, बहनों आज हम एक और विषय पर बात करने जा रहे हैं बहनों, कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, जो कि बहनों हर साल 24 जून को मनाया जा है। बहनों कूटनीति का मतलब होवे देशों के बीच अच्छे संबंध बनाना, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना और शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। बहनों इस काम को करने में महिलाओं की जो भूमिका को पहचान देने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के खातिर यह दिन मनाया जा है। बहनों आज मेरी बहनें राजदूत, विदेश सेवा अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिनिधि और शांति वार्ताकार के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी, विदेशों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं बहनों। तो बहनों जब महिलाओं को, हम बहनों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाए ना, तो समाज और दुनिया के लिए अधिक संतुलित और समावेशी नीतियां बना सके हैं हम बहनें। और हमारे देश की अनेक बहनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम जो है वो रोशन कियो है। उनकी सफलता यह संदेश दे है बहनों कि यदि बेटियों को शिक्षा और अवसर मिले, शिक्षा का अवसर मिले ना और अवसर मिले तो वे हर जो है क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके हैं। बहनों आज की बेटियां कल की नेता बन सके हैं, अधिकारी,

देश की प्रतिनिधि बन सके हैं। इसलिए हमें अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और सपनों को पूरा करने के खातिर उनके साथ देना चाहिए और परिवार और समाज का सहयोग ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत होवे। तो बहनों, इसी संदेश के साथ हम सभी बहनों को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दे हूं बहनों में। और आइए बहनों, अब प्रतिभा और नेतृत्व का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर जो है अपने बच्चों को दें, ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने देश का, अपना, अपने घर का, अपने परिवार का, अपना नाम जो है वो रोशन कर सकें। तो बहनों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावें, चलिए चले हैं आज के मनोरंजन की तरफ और सुने हैं एक प्यारा सा और लोकगीत।

मैंने अभी आपने सुना लोकगीत भी, उम्मीद कर रही हूँ मेरी बहनों को पसंद आया होगा। मैंने भी देखो गर्मी तो बहुत ही पड़ रही और आजकल आम भी बहुत आ रहे हैं ना बहनों, भी पूरी मंडी में सब्जी मंडी में आम ही आम नजर आवे, भी जहाँ देखो कच्चा आम, कहीं पे पका आम, फिर मौसम जो आमों का होवे आजकल, और हर जगह आम ही आम होवे। और बहनों आम से हम क्या कुछ ना बना सकें, वही देखो जैम बना सकें, आम पन्ना बना सकें, अचार बना सकें, मुरब्बा बना सकें, और उसके बाद बहनों कई कई तरह की पुडिंग बने हैं आम से। आम तो फलों का राजा होवे। और चलिए बहनों आज मैं आपको बताती हूँ कि हम आम से आम पापड़ बना सकें। जी हाँ बहनों, हम घर पे भी आम पापड़ बना सके हैं। तो भी आम पापड़ तो मेरी बहनों को बहुत पसंद होवे, बच्चों को भी बहुत पसंद आवे, तो जो अगर हम आम पापड़ बनाना चाहें बहनों, तो उसके लिए सामग्री नोट कर लें। हमें क्या क्या चाहिए बहनों उसके लिए? पके हुए आम, जो हम घर में आम लाते हैं वही चाहिए हमें। 4-5 आम ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, आधा से 1 कप आप चीनी ले लीजिए। इलायची पाउडर अगर डालना चाहें तो डाल सके हैं बहनों, नहीं तो कोई ज़रूरी ना है। और घी या तेल थोड़ा सा जो है हम उस पर, जिसमें हम जमावेंगे ना आम पापड़, उस पर लगाने के लिए हमें थोड़ा सा घी या तेल चाहिए। और बहनों बनाना कैसे है? सबसे पहले हमें बहनों आम का गुदा तैयार कर लें। आम को छील के उसका, उसको काट लें और फिर उसको मिक्सी में जो है उसका गुदा जो है वो तैयार कर लें। अच्छी तरह से उसको पीस लें कि ताकि उसमें टुकड़े ना रहें। और जब बहनों पल्प तैयार हो जाए, तो एक कढ़ाई में आम का पल्प और थोड़ा सा चीनी डाल के, जितनी हमने चीनी डालनी है अपने स्वादानुसार हम डाल सकते हैं बहनों, तो उसको मध्यम आंच पर पकाएं हम उसे, और लगातार उसको बहनों चलाते रहें ताकि मिश्रण जो है वो तले में ना लगे। और जब मिश्रण गाढ़ा हो जाना बहनों, जैम जैसा हो जाए, तब इसमें हम इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। और एक थाली या ट्रे लें और उस पर हल्का सा घी या हम तेल लगा के, और उस मिश्रण को, हम आम के मिश्रण को पतली परत में उस पर फैला दें। और फैलाने के बाद बहनों उसे धूप में हमें सुखाना है, और इसे 2-3 दिन तक हमें इसे तेज़ धूप में सुखाएं, और रात में हम इसको अंदर रख सकते हैं बहनों, अंदर रख लें। और पूरी तरह सूखने पर दूसरी परत भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, लगा दें ताकि जो है वो परत में, जैसे हम परत में हम बाजार से आम पापड़ लाते हैं, वैसा भी बन सके है। तो बहनों इसको 2-3 दिन सुखाने के बाद उसको मनचाहे आकार में हम काट सके हैं, और उसको एयर टाइट डिब्बे में बहनों बंद बंद कर लें। और जब अच्छे से हम बहनों उसको एयर टाइट डिब्बे में बंद कर लेंगे बहनों, तो हम उसको कभी भी, और इसको हम काफ़ी दिन तक हमें स्टोर भी कर सकते हैं बहनों, ख़राब नहीं होगा ये। तो खट्टे, मैंने एक बात बताती हूँ कि अगर खट्टे आम हो ना, तो उसमें हम चीनी थोड़ी ज़्यादा मिला सके हैं, अगर मीठे हैं तो उसमें कम चीनी डाल लें, अपने स्वाद अनुसार हम उसको बना सके हैं। और जब खाएं तो उसके ऊपर काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर खाएं बहनों, बहुत ही मज़ा आएगा। और ये तो घर की बनी चीज़ बहनों एकदम स्वादिष्ट भी होवे और अच्छी भी होवे बहनों। तो चलिए बहनों उम्मीद करी हूँ आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी, और आप ज़रूर बनाइएगा बहनों अपने घर पे आम पापड़। तो अब घड़ी की सुइयां जो है वो मुझे इशारा कर रही हैं घर कार्यक्रम संपन्न करने का। आज का कार्यक्रम बहनों आपको कैसे लगा? आप मुझे पत्र ज़रूर लिखिएगा, और पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम घर संसार, दौरा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। इसी के साथ बहनों कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए बहनों। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीत। कलाकार हैं हीरा सिंह राणा।

इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा सुन रहे थे। कार्यक्रम में आज आपने सुने कुमावनी लोकगीत, कलाकार थे हीरा सिंह राणा। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ

0: हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहाध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहाध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही। हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से

0: विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन
1: है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया।

श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया।

0: देश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को फैजुर रहमान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम है संदेश.com और हमें रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार। हमारा नंबर है 9457078288। श्रोताओं, कार्यक्रम में ये पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। निखिल विजय का संगीत है। गीत के

लिखे हैं फैज़ अहमद फैज़ ने। श्रोताओं, आपको मैसेज करना है कि हमने ये गीत किस फिल्म से लिया है, यानी आपको बताना है कि ये जो गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये किस फिल्म से है। हमें आपके व्हाट्सएप मैसेज का रहेगा इंतज़ार।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म तुम बिन का ये गीत, और आज का हमारा सवाल भी यही था कि ये गीत हमने कौन सी फिल्म से लिया है। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख भेजा है, आइए देखते हैं। ये सबसे पहले हमें मैसेज मिला था ग्राम झुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से, लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महवेश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। हमारे रेगुलर लिसनर हैं राशिद भाई, और सबसे पहला मैसेज हमें इन्हीं का मिला। और

0: जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, साइना, महवेश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर हमारे रेगुलर लिसनर हैं राशिद भाई। और सबसे पहला मैसेज हमें इन्हीं का मिला, और मुगलाल जिंदल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार। मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनेरा सही जवाब भेज रहे हैं। शाही मार्केट सिवाहारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, आराफात अदीब और कादिर चौधरी ने भी जो है जानकारी लिख भेजी है सही जवाब की। एक और मैसेज हमें मिला है नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर से एम ताहिर, आपने भी हमें सही जवाब लिख भेजा है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से सही जवाब के साथ हमारे साथ जुड़े। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से हमारे साथ जुड़े हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, आपने भी हमें सही जवाब लिख भेजा है। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से सही जवाब भेज रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इशरार, नरगिस खातून। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रोएश अहमद राही, रिशान राही, रोशेज राही और रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इशरार और नरगिस खातून ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें सही जवाब भेज रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं, आप सभी ने हमें लिख भेजा सही जवाब और आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म इश्क का ये गीत। और श्रोताओं, आपको बताना है कि इस गीत को आवाज़ किस कलाकार ने दी है, और अनु मलिक का संगीत है, गीतकार हैं जावेद अख्तर। आइए सुनते हैं फिल्म इश्क का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म इश्क का ये गीत। हमने आपसे सवाल किया था कि ये गीत किसकी आवाज़ में है, और इस गीत को आवाज़ दी थी जयश्री शिवम ने। आप बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है। सही जवाब लिखने वाले हैं वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार। मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनारा पुनः हमारे साथ जुड़े हैं, और पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशी दिल और पूरा खुश दिल परिवार, आपने भी हमें सही जवाब लिख के भेजा है। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनौरी तेलीवाला से हमें सही जवाब भेज रहे हैं। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत कुमार सिंह गढ़कर और अर्पिता जी, आपने भी हमें सही जवाब लिख के भेजा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से सही जवाब के साथ हमें मैसेज कर रहे हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। नवनीत त्यागी, वर्णिका त्यागी और लड्डू त्यागी हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आपने भी हमें सही जवाब भेजा है। सराय मीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रोएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रोशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार ने भी हमें सही जवाब लिख भेजा है। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी ने भी हमें सही जवाब लिख भेजा है। मोनू कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने भी हमें सही जवाब लिख के भेजा है। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से सही जवाब के साथ जुड़े थे नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। आप सभी का बेहद धन्यवाद, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब लिख भेजा। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। आपको बताना है इस गीत का संगीत निर्देशन किसने किया है। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं। आइए सुनते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म लाल सिंह चड्ढा से ये गीत, और हमने आपसे सवाल किया था कि ये गीत किस संगीत निर्देशन में है और इसके संगीत निर्देशक हैं प्रीतम। हमें सही जवाब काफ़ी कम मिले हैं इस बार। हमें सही जवाब लिख भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। आसिफ चौधरी शाही मार्केट स्योहरा ज़िला बिजनौर से पुनः हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वीरम गांव गुजरात से पुनः हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, आपने भी हमें सही जवाब दिया है। मुंबई से अनु बढ़ जातिया, शमशुल खान और अनुराज बैनारा। आइए कार्यक्रम का अब अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म सोल्जर से। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें हैं, अनु मलिक का संगीत है। आपको बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं।

श्रोताओं, इस गीत को लिखा है समीर ने और हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा दिलखोश, संगीता रानी जिंदल और पूरा खुशदिल परिवार। एक और मैसेज हमारे पास आया है बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान का, ज़िला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से। रवि कुमार राहुल ने भी हमें सही जवाब भेजा है। आपके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह राहुल और आप हमें ये सही जवाब भेज रहे हैं कस्बा बराड़ा, ज़िला अम्बाला, हरियाणा से। सही जवाब लिख भेजा है अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश ने, ग्राम खंडिया गेट, ज़िला रामपुर से। आप सभी ने हमें सही जवाब लिख भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, कार्यक्रम को आपने सार्थक बनाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम मेरा सपना

उन्नत भारत में आप सभी का स्वागत है। सामिन, हम एक उन्नत भारत का सपना तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हमारे देश का युवा सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत ना हो। हमारी भारत सरकार की भी यही सोच है कि हर हाथ को काम मिले और हर हुनर को मिले पहचान। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार लगातार कई बेहतरीन और जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। अक्सर हमारे युवा साथी पढ़ाई पूरी करने के बाद सोचते हैं कि अब सही नौकरी कहाँ ढूंढी जाए, किस दरवाजे पर दस्तक दी जाए। इसी उलझन को सुलझाने के लिए भारत सरकार की बेहतरीन पहल है राष्ट्रीय करियर सेवा। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे कई हुनरमंद युवा हैं जो सिर्फ नौकरी पाना नहीं चाहते बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। उनका सपना है कि उनका अपना एक छोटा सा उद्योग हो और अपनी एक दुकान हो या फिर छोटी सी फैक्ट्री ही क्यों ना हो। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई जज्बा है लेकिन पैसों की तंगी आड़े आ रही है तो सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना सीधे तौर पर आपके लिए है। इसके जरिए आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए न सिर्फ लोन मिलता है बल्कि सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी भी दी जाती है। तो आइए राष्ट्रीय करियर सेवा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना की शुरुआत भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2015 को की गई थी। राष्ट्रीय करियर सेवा एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है जहां 10वीं, 12वीं और स्नातकों के लिए सरकारी, गैर सरकारी या तकनीकी नौकरियों की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। इसके अलावा आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए या आपके लिए कौन सी नौकरी अच्छी है तो इसके लिए इस पोर्टल पर आपको एक्सपर्ट की भी सही सलाह और मार्गदर्शन मिल जाता है। नौकरी के लिए आज के दौर में कौन से हुनर की जरूरत है, इसकी जानकारी और उससे जुड़े कोर्स की लिस्ट भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है। कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर्नशिप और घर बैठे काम की तलाश करने वालों के लिए भी यहाँ ढेरों विकल्प मौजूद हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पोर्टल पर अपनी बुनियादी जानकारी जैसे नाम, शैक्षिक योग्यता और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपको NCS ID मिल जाएगी और आपका एक डिजिटल जॉब कार्ड बन जाएगा और आप अपनी पसंद की नौकरी के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो आप अपने जिले के रोजगार कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये थी जानकारी राष्ट्रीय करियर सेवा की और अब जानकारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की। श्रोताओं, हमारे देश का युवा सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहता। आज का युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को रोजगार देना चाहता है। अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस, दुकान, डेयरी या छोटी मोटी फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना खास तौर से आपके लिए है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन काम करती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री या निर्माण कार्य में जाना चाहते हैं, तो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और अगर आप सर्विस सेक्टर जैसे दुकान, रेस्टोरेंट या रिपेयरिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप ग्रामीण इलाके में अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सरकार आपको 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी देती है। वहीं शहरी इलाकों के लिए ये सब्सिडी 15% से लेकर 25% तक की है। यानी लोन का एक बड़ा हिस्सा आपको चुकाना ही नहीं है बल्कि वो सरकार देगी। इस योजना में कोई भी 8वीं पास भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, इसलिए इस योजना के लिए आवेदन भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पोर्टल पर ही किया जाता है। आप सीधे जनसेवा केंद्र से भी PMEGP के
ई पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये थी जानकारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की, तो इस योजना का लाभ उठाइए और देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और आगे बढ़ाइए।

तो श्रोताओं, एक तरफ जहां राष्ट्रीय करियर सेवा आपके लिए सही नौकरी और सही करियर की राह आसान बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आपके भीतर के उद्यमी को जगाकर आपको खुद का मालिक बनने का हौसला और आर्थिक मदद देती है। तो इन योजनाओं का फायदा उठाइए और देश की तरक्की में योगदान दीजिए और हमें दीजिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नचीपापाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

पहली जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 7:32 पर हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी कानून की बात।

दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 10 बजे। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे युगराज सिंह के स्वर में शब्द। युववाणी कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा यूथ कनेक्ट और लव स्टोरीज का। कार्यक्रम का वक्त रहेगा आपसे कुछ देर बाद शाम 5:15 पर। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, कुक्कुट पालन में चूजों की देखभाल। इसके अलावा डॉक्टर रोहित दिलीप नलावड़े, वैज्ञानिक भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान मोदीपुरम मेरठ से भेंटवार्ता का विषय होगा फसलों में संरक्षण कृषि तकनीकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सटीक प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 6:55 पर छाया गीत कार्यक्रम में, गीत संध्या कार्यक्रम में रात 8 बजे और रात 8:30 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान का वक्त रहेगा कल सुबह 6:30। विजय कुमार शर्मा का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 7:05 पर जानकारी का विषय होगा बच्चे नाखून क्यों खाते हैं। कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां विषय पर। इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ होगा हर रोज की तरह सुबह 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुनेंगे कल सुबह 9:25 पर, जिसमें आपको सुनवाए जाएंगे भुवनेश गिरी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त रहेगा कल सुबह 11:30 पर। कल अपराह्न 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर निकिता सिंह चिकित्सा अधिकारी से बीना कोटनाला की बातचीत, जिसका विषय होगा महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और उपचार। लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर आपको सुनवाए जाएंगे भजनदास के स्वर में जौनसारी लोकगीत। कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन योजना के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू आर वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट शुमायला।
1: और दोस्तों, प्रोग्राम में शुमायला के साथ शामिल हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट अलीना।
0: और फ्रेंड्स, आज के इस खूबसूरत सफर में हमारा आपका ये साथ बना रहेगा प्रोग्राम के एंड तक, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि सफर वही जो कुछ नया सिखा जाए और बात वही जो दिल में उतर जाए।
1: दोस्तों, वक्त की धूल में कई किस्से खो जाते हैं, पर कुछ अल्फाज सदियों तक गूंजते रहते हैं। चलिए आज हम भी इतिहास के ऐसे ही सुनहरे पन्नों को पलटेंगे जिसकी गूंज आज भी हर इंडियन के दिल में सुनाई देती है।
0: और फ्रेंड्स, इतिहास के इन सुनहरे पन्नों से ही लिया है हमने आज का बूझो तो जाने के अंतर्गत पूछा जाने वाला ये सवाल।
1: तो दोस्तों, आपसे हमारा आज का सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है?
0: जिसका जवाब आपको देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद पर, जहां आपको सवाल ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। वहां उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर आपको सही जवाब लिख देना है। तो जब तक आप अपने जवाब हम तक पहुंचाते हैं, तब तक हम सुनवा देते हैं आपको इस शाम का ये पहला गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे एहसास कर लोट को,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
7: गुड मॉर्निंग मैम।
6: हैव यू डन योर होमवर्क?
7: नहीं मैम।
6: अरे समर वेकेशन के बाद भी तुम लोग होमवर्क करके नहीं ला रहे हो।
7: वो मैम मुझे ध्यान नहीं रहा।
6: ठीक है, तो आज तुम सबकी छुट्टी बंद, कोई घर नहीं जाएगा, यहीं बैठो।
7: सॉरी मैम, मैं कंप्लीट कर लूंगा, प्लीज जाने दो।
6: अच्छा ठीक है, जो मेरे सवाल का सही जवाब देगा सिर्फ वो ही घर जाएगा, ठीक है? अरे अरे, ये बाहर बैग किसने फेंका?
7: मैम मैंने। अब मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया ना, अब मैं घर जा सकता हूँ।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
7: तो दोस्तों, आज है वेडनेसडे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास सेगमेंट यूथ कनेक्ट। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज का ये खास यूथ कनेक्ट।
8: तो दोस्तों, आ गए हैं हम एक बार फिर स्टूडियो के बाहर अपने सेगमेंट यूथ कनेक्ट के लिए। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हमारे सब सेगमेंट अरे दीवानों मुझे पहचानों के बारे में। तो यहाँ हमारे एक युवा साथी मौजूद है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनसे इनका नाम। जी, आपका नाम?
9: जी, मेरा नाम निकिता है।
8: हाय निकिता। तो निकिता, आप हम आकाशवाणी नजीब आबाद से हैं, आप फॉलो करती हैं आकाशवाणी सोशल मीडिया पर?
9: हाँ बिल्कुल, मैं उससे करती हूँ। इवन मेरी फ्रेंड है वो, उससे मुझे पता चला तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू करा।
8: अरे बहुत अच्छी बात है। तो हम आकाशवाणी से ही हैं, आज हमारा सब सेगमेंट जा रहा है अरे दीवानों मुझे पहचानो। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को पहचानना होता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है और एक वो चीज जो आप लैक कर रहे हो, जिसे आप इम्प्रूव करना चाहते हो। तो आपके अंदर वो क्या क्वालिटी है जो आपकी स्ट्रेंथ है?
9: मेरी स्ट्रेंथ, मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसमें कोई कमी नहीं रहती है। उसको अगर मैं कोई काम दिया है मैंने अपने हाथों में, तो उसको पूरी शिद्दत से करना है और उसको खत्म करना चाहिए।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं जहाँ आप लैग कर रही हो, जहाँ एक कमी आपकी जिसे आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो?
9: हाँ बिल्कुल, एक कमी भी है वो मेरे हिसाब से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कहना चाहूंगी। कभी कभी मुझे डर आ जाता है जिसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ दूसरों से।
8: तो अभी आपको क्या लगता है, आप कैसे अपनी इस जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कमी है ये, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकती हैं, कॉन्फिडेंस कैसे ला सकती हैं अपने?
9: हाँ, इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि मुझे चीजें फेस करनी होंगी और खुद से प्रैक्टिस करनी होगी ताकि कॉन्फिडेंस आए।
8: ओके यस, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम उम्मीद करते हैं निकिता कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं और बहुत अच्छे से सभी टास्क परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।
9: थैंक यू सो मच,
8: हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
7: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हूबहू की ओर। तो हमें हमारे एक साथी मिल चुके हैं, तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
10: मेरा नाम अली अहमद है।
7: तो अली आप ये बताइए कि अगर आपको लाइफ में हूबहू किसी की तरह बनने का मौका मिले तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे?
5: इस चीज पे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहूंगा।
7: ये है कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे रोल मॉडल होते ही हैं, तो आप ये बताइए कि क्यों अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं या उनकी तरह क्यों बनना चाहेंगे? कोई तो खासियत होगी ना।
5: जी बिल्कुल, मैंने अपने पेरेंट्स को हार्ड वर्क करते देखा है, हर चीज में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हुए देखा है और ये चीज बहुत अच्छी है, तो मैं उनको ही अपना रोल मॉडल मानता हूँ और उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ।
7: बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना एहसास है कि आपके पेरेंट्स काफी हार्ड वर्किंग है और आप लाइफ में उनकी तरह बनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अली हमें इतना खूबसूरत सा जवाब देने के लिए।
5: थैंक यू सो मच।
8: हमारी एक और दोस्त हमारे लिए इंतजार कर रही है। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमें दोस्तों को ढूंढना नहीं पड़ रहा, वो खुद हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो जी क्या नाम है आपका?
10: मेरा नाम जारा है।
8: जारा, ओके। जारा क्या करती हैं आप?
10: मैं स्टूडेंट।
8: अच्छा, आप क्या कर रही हैं?
10: मैं अभी करंटली एमकॉम कर रही हूँ।
8: जारा आप जानती हैं आकाशवाणी? कुछ सुना है उसके बारे में?
10: हाँ, मैंने सोशल मीडिया पर बहुत देखा है आकाशवाणी की रील्स वगैरह में।
8: तो आप फॉलो करती हैं?
10: नहीं, मैं फॉलो तो नहीं करती, बट की रील्स वगैरह देखती हूँ।
8: अरे तो आप फॉलो क्यों नहीं करती?
10: आप करूंगी जाकर।
8: चलिए, देर आए दुरुस्त आए, तो आप जरूर कीजिएगा हमें फॉलो, क्योंकि रील्स हमारी अच्छी होती है डेफिनेटली। हम इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपसे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आकाशवाणी से हैं और आज हमारे

0: अच्छा, आप क्या कर रही हैं?
1: मैं अभी करंटली M.Com कर रही हूँ.
0: जारा, आप जानती हैं आकाशवाणी? कुछ सुना है उसके बारे में?
1: हाँ, मैंने सोशल मीडिया पर बहुत देखा है आकाशवाणी की रील्स वगैरह में.
0: तो आप फॉलो करती हैं?
1: नहीं, मैं फॉलो तो नहीं करती, बट कि रील्स वगैरह देखती हूँ.
0: अरे तो आप फॉलो क्यों नहीं करती?
1: आप करूंगी जाकर.
0: चलिए, देर आए दुरुस्त आए, तो आप जरूर कीजिएगा हमें फॉलो, क्योंकि रील्स हमारी अच्छी होती है डेफिनेटली. हम इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपसे हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम आकाशवाणी से हैं और आज हमारे बात करके बहुत अच्छा लगा. मुझे उम्मीद है अब आप हमारा सोशल मीडिया पेज फॉलो करेंगी.
1: जी जी बिल्कुल, मैं घर जाते ही आपका पेज फॉलो करूंगी.
2: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं गलत है तो सही है की ओर, और हमें इसके लिए हमारे एक साथी मिल चुके हैं. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम. आपका नाम?
3: जुबैर अहमद.
2: तो जुबैर, आज आपको हमने हमारे प्रोग्राम में शामिल किया है, तो आपको कैसा लग रहा है?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.
2: हमें बहुत अच्छा लग रहा है जुबैर. तो जुबैर, जैसे हमारा सब सेगमेंट है गलत है तो सही है, तो हम आपसे कुछ चटपटे सवाल करेंगे और आपको उनके देने हैं बहुत ही चटपटे जवाब. तो आप तैयार हैं?
3: जी, मैं तैयार हूँ.
2: तो जुबैर, आप हमें ये बताइए कि सूरज कहाँ से निकलता है?
3: अमेज़न वेयरहाउस से.
2: क्या बात है. और अच्छा, ये बताइए कि एग्जाम में पास कैसे होते हैं?
3: रिमोट कंट्रोल से.
2: मछली कहाँ रहती है?
3: लिफ्ट में.
2: कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया?
3: डोरेमोन ने.
2: रात के बाद क्या आता है?
3: शैम्पू.
2: चाय किस चीज से बनती है?
3: ब्लूटूथ से.
2: ट्रेन किस पर चलती है?
3: मूड पर.
2: क्रिकेट में बैट का क्या काम है?
3: वाईफाई सिग्नल पकड़ना.
2: पैन किस काम आता है?
3: रोटी बनाने के लिए.
2: बारिश क्यों होती है?
3: क्लाउड्स के वाटर बोतल गिर जाती है.
2: गूगल क्या है?
3: एक सब्जी.
2: मोबाइल चार्ज क्यों करते हैं?
3: उसका मूड फ्रेश करने के लिए.
2: क्या बात है जुबैर, आपने तो हमारे सारे सही सवालों का बहुत ही गलत जवाब दिया, लेकिन बहुत ही मजेदार था, बहुत ही चटपटे जवाब थे. हमें आपसे बात करके जुबैर बहुत अच्छा लगा. उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा.
3: जी, मुझे भी अच्छा लगा.
2: तो जुबैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें हमने सब सेगमेंट शामिल किया और हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. इसके बाद रुक करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अगले गीत की ओर.

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे क्या कर रहे हो तुम?
2: दिख नहीं रहा क्या? अखबार पढ़ रहा हूँ।
3: इसमें क्या देखने वाली बात है, अखबार तो रोज आता है, रोज पढ़ते हो तुम। आज क्या नया है इसमें?
2: इसमें लिखा है कि आदमी एक दिन में एवरेज 15,000 शब्द बोलते हैं। और पता है औरतें कितना बोलती हैं?
3: कितना?
2: औरतें 30,000।
3: अरे ठीक ही तो लिखा है, मर्दों को समझाने के लिए एक बात को दो दो बार बताना पड़ता है, 30,000 तो खुद से हो जाएंगे।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
2: दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में बहुत मेहनत करें लेकिन मन में बस एक ही बात हो, लोग क्या सोचेंगे?
3: या फिर उसे दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, सबको साबित करना है कि मैं गलत नहीं थी।
2: दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही जीते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए।
3: और मजे की बात यह है कि जब लोग हमारी तारीफ भी कर देते हैं तब भी मन को सुकून नहीं मिलता।
2: क्यों? क्योंकि हम गलत जगह खुशी ढूंढ रहे होते हैं।
3: जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
2: तो दोस्तों, हमारे कुछ खास है आज सेगमेंट के अंतर्गत, हम बात कर रहे हैं खुद को प्रूव करो दुनिया को नहीं।
3: अलीना, अक्सर हम सोचते हैं कि हमें दुनिया को बताना है कि हम कितने काबिल हैं,
2: लेकिन शुमाइला सच तो ये है कि दुनिया कभी पूरी तरह सेटिस्फाई होती ही नहीं। अगर थोड़ा पीछे रह जाओ तो लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी, और अगर थोड़ा पीछे रह जाओगे तो लोग कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, और अगर आगे निकल जाओगे तो कहेंगे किस्मत अच्छी थी, कोई बड़ी बात नहीं।
3: बिल्कुल, और लोगों की बातों तो खत्म ही नहीं होती उनकी बातें। दोस्तों, एक छोटी सी बात आप ये सोचिए, जब आपने साइकिल चलानी सीखी तब क्या आपने पूरे मोहल्ले को प्रूव करने की कोशिश की थी?
2: नहीं ना, आप बार बार गिरे, फिर उठे, फिर सीखा, क्योंकि आपका मकसद लोगों को दिखाना नहीं था, सीखना था। और यही बात हमारी असल जिंदगी पर भी लागू होती है।
3: हमारा ध्यान सीखने पर होता है, हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारा ध्यान लोगों को दिखाने पर होता है तब हम परेशान होते हैं।
2: तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि लोगों को क्या प्रूव करना है, ये सोचिए कि खुद को क्या प्रूव करना है।
3: और जब आप खुद को प्रूव कर देते हैं तब दुनिया को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती।
2: तो इसीलिए मेहनत कीजिए, लेकिन लोगों की तारीफ के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए और खुद को खूब बेहतर बनाने के लिए और अपने आगे आने वाले कल के लिए।
3: बिल्कुल, और अभी हम चलते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनवा देते हैं आपको ये गीत।

0: दोस्तों, इश्क वो नहीं जो हर लफ्ज में जताया जाए, इश्क वो है जो खामोशी से निभाया जाए। किसी के साथ चलने का नाम ही नहीं मोहब्बत, मोहब्बत वो है जो दूर रहकर भी निभाया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अगले सेगमेंट लव स्टोरीज की, जिसमें आज आप सुनेंगे लव स्टोरी चित्रलेखा एपिसोड नंबर 3, जिसको प्रेजेंट किया है हमारी युवाणी साथी शैली ने।
1: नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे लव स्टोरीज सेगमेंट का एपिसोड 3। तो पिछले भाग में आपने सुना कि श्वेतांक धीरे धीरे समझने लगा था कि हर चमकती हुई चीज़ बुरी नहीं होती। वहीं एक धार्मिक समारोह में कुमारगिरी और चित्रलेखा की मुलाकात हुई। वो मुलाकात बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बाद कुमारगिरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। समय बीतता गया, लेकिन कुमारगिरी के मन से चित्रलेखा की छवि नहीं निकल रही थी। पहले जो मन घंटों ध्यान में डूबा रहता था, वो अब बार बार भटकने लगा। वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं एक योगी हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मन तर्क कहाँ सुनता है। उधर चित्रलेखा के मन में भी कुमारगिरी के लिए सम्मान और जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने कई लोगों से उनके बारे में बातें सुनी और धीरे धीरे उसकी इच्छा हुई कि वो उन्हें और करीब से जाने। कुछ समय बाद एक अवसर ऐसा आया जब चित्रलेखा और कुमारगिरी की मुलाकात हुई। इस बार दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। चित्रलेखा ने जीवन, प्रेम और त्याग को लेकर कई सवाल पूछे। कुमारगिरी ने अपने विचार रखे, लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि चित्रलेखा बाकी लोगों जैसी नहीं है। वो हर बात को समझने और परखने की कोशिश करती है। उसकी सोच बहुत गहरी थी। मुलाकात खत्म हुई, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। उधर बीजगुप्त भी ये बदलाव महसूस कर रहा था। उसने देखा कि चित्रलेखा पहले की तरह खुलकर हंसती नहीं है। कई बार वो कहीं खोई हुई नजर आती है। एक शाम बीजगुप्त ने उससे पूछा, क्या बात है चित्रलेखा, आजकल तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। चित्रलेखा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, शायद मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। बीजगुप्त ने आगे से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में चिंता जरूर पैदा हो गई। श्वेतांक ये सब देख रहा था। वो जितना लोगों को समझने की कोशिश करता, उतना ही उलझ जाता। जिसे वो पहले पापी समझता था, वही बीजगुप्त अब उसे सबसे ज्यादा उदार और सच्चा इंसान लगने लगा था। और जिसे विशाल देव पुण्य का सबसे बड़ा उदाहरण मानता था, वही कुमारगिरी अब अपने मन के संघर्ष से जूझ रहे थे। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगे कि चित्रलेखा और कुमारगिरी की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे की बातों को महत्व देने लगे, लेकिन शायद उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उनका ये बढ़ता हुआ रिश्ता कई जिंदगियों को बदलने वाला है।

तरफ प्रेम था, दूसरी तरफ तपस्या। एक तरफ दिल की आवाज थी, दूसरी तरफ वर्षों का त्याग। और अब वो पल करीब आ रहा था जब कुमार गिरी को अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता। लेकिन आखिर वो फैसला क्या होगा? क्या कुमार गिरी अपनी भावनाओं पर काबू रख पाएंगे या फिर उनका पूरा जीवन बदल जाएगा? जानिए अगले भाग में कल यानी बृहस्पतिवार को।

0: दोस्तों रुक करते हैं हमारे सवाल की ओर। आज का बूझो तो जाने के अंतर्गत पूछा जाने वाला सवाल हमारा था कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया, जिसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस।
1: तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि हैं नदीम बाकी, सुदर्शन शाह, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, ताज अंसारी, रामबीर शर्मा, नानक खन्ना, आरिज रजा, सुरेश राठौड़, वीरेंद्र भयान, रामकुमार रेवड़, मोहम्मद रफीक पवार, अनजान कुमार सिंह, विथल सरोशे, बी आई धाकड़, गुरमीत सिंह, नवी हसन अब्बासी और हैं राजकुमार वर्मा, राजेश कुमार, जाकिर मंसूरी, देवशंकर तामूरिया, मोहम्मद आमिर अंसारी, फागुराम यादव, राम अवतार त्यागी, दिगर्शन गौड़, बबलेश पवार, उत्तम कुमार भगत, विजय सुरलकर, सुनीता राणा, सोहन जोशी, तुलसी मस्कीन, चंद्रकेला, गंगा सिंह रावत, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, शमसुल कमर, राजकुमार डूडी, महाराज कीर्तनपुरी, शाहजी बोड़के, अर्चना चौहान, पुनाजी नावकर और हैं निसार सलमानी।
0: इन्हीं के साथ हमारे जो लिसनर्स जिन्होंने हमें जवाब भेजा है उनके नाम है लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय ढिंगिया, हल्के जयपाल यादव, रवि कुमार राहुल एंड इनके साथ सदाशिव थोरात, गजानन येले, मोहम्मद असलम सैफी, कैलाश फुलमेली, अफजल ताज, बी कमल, दिलशाद हुसैन, मोहम्मद जैद अली, परवीन चौहान, भागवत चौबे लाडला जी, दुर्गाराम साहू, बलवंत कुमार वर्मा, लाल बाबू दीवाना, राजेश वर्मा और धीरज भाई राबड़ी और बहुत सारे हमारे लिसनर जिन्होंने हमें नाम शेयर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमें उम्मीद है आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये लास्ट गीत।

0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: इतना ही नहीं दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है AIR नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AIRNBD, साथ ही हमारे पुराने प्लेज आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अब दीजिए मुझे यानी कि शुमायला और
0: अलीना को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 107 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

थिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अब अन्नदाता कहते हैं, और भाई जो खाद्यान्न की समस्या है या फलों की है, दूध की है, ये सब किसान भाई हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी पूर्ति करते हैं। और भाई देखिए, आज जो है, आज के समय में एक बहुत ही विकट समस्या है बढ़ती जनसंख्या की, और बढ़ती जनसंख्या होने के बाद भी हमारे देश में किसी भी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। खैर भाई, किसान भाई इस समय बहुत से कार्य में व्यस्त हैं। कुछ किसान भाइयों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है और नर्सरी से पनीर उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन भैया, जो नर्सरी से हमारे किसान भाई पनीर उखाड़ते हैं, पौध उखाड़ते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर वो उस क्यारी में पानी अवश्य भर के रखें, तभी जो है पौध को उखाड़ें। नहीं तो भाई, सूखे खेत में से पौध उखाड़ने से एक तो हमारी पौध टूट सकती है, जड़ें टूट सकती हैं, और दूसरा जब हम इनकी रोपाई करते हैं तो भैया उसमें बकैना रोग लग सकता है। और हो सके तो किसान भाई अवश्य रूप से इस नर्सरी को, यानी कि धान की जो हम पौध

आए तभी हमारे किसान भाई उसमें रोपाई करें, और यदि इसके ऊपर रात गुजर जाए या 10-12 घंटे हो जाएं तो क्या कहने, क्योंकि फिर ज़्यादा गहरी हम जब रोपाई करते हैं तो श्रमिक क्या करते हैं कि वो शुरू शुरू में जैसे ट्रैक्टर खेत से निकला और तुरंत ही रोपाई शुरू कर देते हैं, उस समय जो है जड़ें जो हैं ज़्यादा गहराई में पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो हमारा कीचड़ होता है वो बड़ा मुलायम होता है, और जड़ें जब गहराई में पहुंच जाती हैं तो हमारी पौध जो होती है वो टेलरिंग यानी कि कल्ले अच्छी प्रकार नहीं बनाती। तो 10 घंटे का विराम देने के बाद यदि हम उसमें पौध की रोपाई करें, और ज़्यादा नहीं कि मुश्किल से 1 इंच हम धान की जो जड़ है उसको 1 इंच गहराई पर रोपित करें, तो हमें आगे चलकर हमारी फसल में 7 दिन के अंदर कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो भैया सिंगल पौध खड़ी रहती है और हमारी फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और भाई अब हम बात कर लें उन भाइयों की जिन्होंने अपने खेतों में मुर्गी फार्म खोल रखे हैं, और मुर्गी के जो चूजे हैं उनकी किस प्रकार से देखभाल होनी चाहिए, ये ऐसे हमारे किसान भाई कुछ होते हैं, तो भैया उनके लिए हम बता दें कि मुर्गी के चूजों में 3 बात मुख्य रूप से प्रभावित होती है, और ये मुर्गी के चूजे जो है इनके आहार की जरूरत होती है जन्म के 24 घंटे के बाद, और जन्म के 24 घंटे बाद ये मुर्गी के चूजे आहार खाना शुरू कर देते हैं, और इन्हें शुरू शुरू में 3 मुख्य बातें प्रभावित करती हैं, गर्मी, पानी और भोजन। तो भाई देखिए पहले सप्ताह में 35 डिग्री तापमान पर हम इन चूजों को रखते हैं, नहीं तो भैया इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है मौसम के प्रति, रोग के प्रति, वो कम होती है। तो भाई इस बात का ध्यान रखें कि शुरू में इनको ठंड न लग जाए, रात में या तापमान जब कम हो जाता है तो छोटे चूजे मर भी सकते हैं। और भैया पानी की कोई कमी न हो, पानी इनको समय समय पर ताज़ा और पूरे दिन नित्य प्रति पिलाएं। और फिर बात आती है इनके भोजन की, तो पहले दिन से 18वें सप्ताह तक यानी कि संपूर्ण इनके जीवन काल में संपूर्ण आहार और फिर विकास करने वाला आहार देकर उन्हें अच्छी शुरुआत दें। और चूजों को भैया पहले 6 सप्ताह तक प्रोटीन से भरपूर चिक स्टार्टर फीड देना चाहिए, और भाई वैसे शुरू में जो है प्री स्टार्टर फूड होते हैं जिसको प्री स्टार्टर फीड कहा जाता है, जो 1 से 10 दिन के जो चूजे होते हैं तो जन्म के तुरंत बाद बहुत बारीक दाना आता है, और ये भैया रेडीमेड दाना आता है, और जब हमारे किसान भाई पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले प्रशिक्षण लेते हैं इस बात की कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो ये सब बातें वहाँ बताई जाती हैं। और इस बारीक दाने में जो चूजों का पहला दाना होता है 20 से 24% तक प्रोटीन होता है। तो भैया ये तो थी प्री स्टार्टर फीड, और दूसरा फीड होता है इन चूजों का स्टार्टर फीड। इसके बाद 1 महीने की उम्र तक

0: फीड है उससे थोड़ा सा मोटा होता है, और तत्पश्चात हम घर का बना भी अतिरिक्त आहार अपने मुर्गी के चूजों को खिला सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें भैया, कि आपकी मुर्गी बाड़े में कहीं ऐसी जगह न हो जाए, जैसे चूहे वगैरह बिल करके बना देते हैं, कि आपके मुर्गी बाड़े में नेवला घुस जाए या सांप घुस जाए या छछूंदर घुस जाए, क्योंकि नेवला मुर्गी के चूजों को बहुत ही चाव से खाता है और बहुत भारी नुकसान भी कर सकता है। कुछ जगह ये देखा गया है कि यदि नेवला मुर्गी बाड़े में घुस जाता है तो बहुत सारे चूजों को मार भी देता है और कुछ को खा लेता है, कुछ को ले जाता है। इसी प्रकार सांप है तो भैया सांप से भी अपने मुर्गी के बच्चों का, मुर्गी के चूजों का बचाव रखें, और छछूंदर भी हमें अपने मुर्गी बाड़े में घुसने नहीं देनी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और किसान भाई कभी कभी जो है अपने मुर्गी फार्म का दरवाज़ा अनावश्यक रूप से या लापरवाही के रूप में खुला छोड़ देते हैं, जिसमें कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि कुत्ता बिल्ली या कोई जंगली जानवर हमारे मुर्गी के चूजों को, मुर्गी के बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं और मार देते हैं। तो इस प्रकार जो है थोड़ी सावधानी बरती जाए और वे चीज़ें न की जाएँ जिससे हमारी मुर्गियों को कोई दिक्कत आए या परेशानी आए। और भैया एक बात का विशेष ध्यान रखें कि समय समय पर इनको जो टीकाकरण है या इनके पीने के पानी में जो डॉक्टर दवाई डलवाते हैं, उन्हें समय समय पर दवाई डलवाई जाए। और भाई तापमान का ध्यान रखें कि ज़्यादा जब गर्मी हो जाए और चूजे बड़े हो जाएं तो मुर्गी फार्म की जो रात को हम पन्नी वगैरह जो प्लास्टिक की पन्नी साइड में होती है उसको हम शाम के समय जब छोटे चूजे होते हैं उसको खोल देते हैं, या हाँ माफ़ कीजिए बंद कर देते हैं रात को, तो रात के समय जब मुर्गियां बड़ी हो जाएं तो इस समय तापमान ज़्यादा हो रहा है और गर्मी हो रही है, तो भैया वो खुली छोड़ दें और जाली में जब हवा आर पार जाएगी तो इनका अच्छा विकास होगा। और जब आपकी मुर्गियाँ 40 से 45 दिन की हो जाएँ तो आप उनको बाजार की मांग के अनुसार बेचकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो भैया अपनी मुर्गियों की इस प्रकार से देखभाल रखें और अच्छी आमदनी लें। और भाई देखिए अब कार्यक्रम में हम भी लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
8: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
9: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
8: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
9: खुशहाली का नया प्रयोग।
10: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और संदेश के बाद भैया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और भैया अब हम बात कर लेते हैं कार्यक्रम में अपनी खेती किसानी की। तो किसान भाई जानते हैं कि सरकार भी भाई इस ओर ध्यान दे रही है कि रासायनिक उर्वरकों का हम अपनी मिट्टी में कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी मिट्टी की भौतिक दशा बिगड़ने न पाए। और भाई अनावश्यक रूप से कुछ किसान भाई यूरिया, DAP और अन्य जहरीले रसायन, जैसे आप कीटनाशी हों या कवकनाशी हों या भाई हर्बिसाइड्स यानी के जो खरपतवार नाशी हों, ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो भाई अपने खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए जो किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए आज हम अपने कार्यक्रम में एक भेंटवार्ता लेकर आए हैं, जिसका विषय है फसलों में संरक्षण कृषि तकनीकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सटीक प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव। और भाई इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर रोहित दिलीप नलावडे, और भैया आपसे बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर हमारे भैया प्रमोद सिंह। तो भैया ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं इनसे की गई ये बातचीत।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में जहां हम आपको तरह तरह की जानकारियां विभिन्न फसलों के संबंध में दिलवाते हैं, वहीं हम आपको उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संबंध में भी जानकारी देते रहते हैं। उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जब बात आती है तो इसमें हम सोचने लगते हैं कि हम अपनी फसलों में उन कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपने खेतों में उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल करके अपनी फसल को अच्छी तरीके से पैदा कर सकें। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं उसका विषय है फसलों में संरक्षण कृषि तकनीकों के द्वारा रासायनिक उर्वरकों का सटीक प्रयोग। और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नलावड़े रोहित दिलीप, जो कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से आज हमारे बीच में आए हैं। तो डॉक्टर नलावड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर नलावड़े। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संरक्षण कृषि तकनीक की हम बात करते हैं, ये आखिर है क्या और किसान भाई इसको किस प्रकार से समझेंगे?
2: देखिए, संरक्षण कृषि प्रणाली मूलतः तीन सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें से सबसे पहला सिद्धांत है न्यूनतम या शून्य जुताई। दूसरा है फसल अवशेष प्रबंधन, जिसमें फसलों के अवशेषों से भूमि को ढककर रखा जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है फसल विविधता एवं फसल चक्र। इन तीनों सिद्धांतों के संयोजन से मिट्टी की संरचना सुधरती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और उर्वरकों की उपयोग क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।
1: जी।
2: सरल भाषा में कहे तो जमीन को कम परेशान करो, ढककर रखो और बदल बदल कर फसल लो।
1: लेकिन हमने तो देखा है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, उसी पर वो निर्भर रहते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप?
2: जी हाँ, यह एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज भारत में प्रति हेक्टर उर्वरक का उपयोग पिछले 3 दशकों में 3 गुना बढ़ गया है, परंतु उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं देखी गई। इसके मुख्य 3 कारण बताए जा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, जिसमें हमारे किसान भाई मुख्यतः NPK पे निर्भर रहते हैं। और दूसरा कारण है सही समय पर सही मात्रा में उर्वरक न देना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं बताना चाहता हूँ, वो है मिट्टी की जांच किए बिना अंधाधुंध उर्वरक डालना।
1: जी।
2: तो संरक्षण कृषि इस समस्या का समाधान इसलिए है क्योंकि यह उर्वरकों को सीधे जड़ क्षेत्र तक पहुंचाने की तकनीक पर काम करता है, जिससे उर्वरक बर्बादी न्यूनतम होती है।
1: जी, तो संरक्षण तकनीक की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी तकनीक है और हमारे किसान भाई इस बातचीत को बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात जानने की यहाँ पर ये भी है कि जिस संरक्षण कृषि की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या कोई इस तरह के यंत्र भी हैं जिससे हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई यंत्रों का भी विकास किया गया है क्या?
2: जी हाँ, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी विशेषज्ञता कृषि यंत्र और शक्ति में है।
1: अच्छा।
2: इसलिए मैं विशेष रूप से इस बात को बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी तकनीकियां इस कार्य के लिए उपलब्ध है, पर मुख्यतः मैं 4 तकनीकों का जिक्र करना चाहता हूँ। उसमें से पहली है शून्य जुताई 20 सह उर्वरक ड्रिल, इसको हम 0 till drill भी कहते हैं। यह यंत्र धान की पराली हटाए बिना उसके बीच सीधे गेहूं की बुआई करता है। इसमें उर्वरक को बीज से दो से तीन सेंटीमीटर नीचे बीज स्थापन क्षेत्र में डाला जाता है और इससे उर्वरक की दक्षता लगभग 15-20% तक बढ़ जाती है।
1: जी जी जी।
2: दूसरा मैं यह तकनीक बताना चाहता हूँ, टर्बो हैप्पी सीडर। यह यंत्र पराली को काट कर खेत में मल्च के रूप में बिछाता है और साथ ही बुवाई और उर्वरक का स्थापन का काम करता है। शोध में ऐसा पाया गया है कि इस विधि से नाइट्रोजन की जो लागत है वो लगभग 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर से कम हो जाती है।
1: अच्छा।
2: तीसरा मैं तकनीक बताना चाहता हूँ, वो है परिवर्तनशील दर तकनीक आधारित उर्वरक अनुप्रयोग यंत्र। ये अत्याधुनिक यंत्र है और ये मुख्यतः वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली जिसको हम GPS कहते हैं और सॉइल सेंसर्स या मृदा संवेदकों की सहायता से खेत के अलग अलग हिस्सों में आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न मात्रा में उर्वरक डाला जा सकता है और इसे ही हम सटीक कृषि या प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं।
1: जी।
2: और आखिरी में जो चौथा यंत्र है या मेथड है जिससे हम उर्वरकों के उपयोग की दक्षता बढ़ा सकते हैं, वो है उर्वरक सिंचाई प्रणाली जिसको हम अंग्रेजी में फर्टिगेशन भी कहते हैं। इसके उपयोग से सिंचाई के जल के साथ घुलनशील उर्वरक देते हैं जिसमें हम ड्रिप इरिगेशन और बौछारी या स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करते हैं। इससे यह फायदा होता है कि पोषक तत्व सीधे सीधे पौधों के जड़ तक पहुंचता है और उनका व्यर्थ बहना रुक जाता है।
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने जो इन यंत्रों की बात की है तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अगर हमारे किसान भाई थोड़े से जागरूक हो जाते हैं तो इन यंत्रों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जुताई के समय की बात हो या अगर हम उर्वरकों के इस्तेमाल की बात करते हैं उस समय की बात हो, सिंचाई की बात हो, तो इन सभी तकनीकों का, इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसान भाई, जीरो टिलेज की जानकारी देखिए वो रखते ही हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे यंत्र हैं जिनके बारे में आपने बताया लेकिन जीरो टिलेज को हमारे किसान भाई जानते हैं, तो इससे क्या उर्वरकों के इस्तेमाल में बचत हो सकती है?
2: जी हाँ, बिल्कुल। शून्य जुताई या जीरो टिलेज के उर्वरक दक्षता पर कई सकारात्मक परिणाम है। अगर मैं आंकड़ों के साथ बताना चाहूं तो पारंपरिक जुताई में जो नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टर 120 से 140 केजी की लागत होती है, पर शून्य जुताई में ये 15-20% तक कम हो जाता है। अगर हम उर्वरक उपयोग दक्षता की बात करें तो पारंपरिक जुताई में वो 30-35% रहता है जबकि शून्य जुताई में वो लगभग 40-50% तक रहता है, मतलब हम 10-15% तक वृद्धि देखी जा सकती है। उसके अलावा नाइट्रोजन नुकसान जो है जिसको हम अंग्रेजी में लीचिंग कहते हैं वो पारंपरिक जुताई में अधिक रहता है पर शून्य जुताई में वो लगभग 50% तक कम हो जाता है। उसके अलावा मृदा ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो पारंपरिक जुताई से घटता है और शून्य जुताई से बढ़ता है। तो इसके अलावा और भी कई सकारात्मक परिणाम जीरो टिलेज के देखे गए हैं।
1: अच्छा, तो कुल मिलाकर यह है कि इन यंत्रों का इस्तेमाल हमारे सभी किसान भाइयों को करना चाहिए, उर्वरकों की बचत करनी चाहिए, क्योंकि इस समय उर्वरकों की खरीद की अगर बात करें तो उर्वरक मिलने में भी किसान भाइयों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज देखिए हम बातचीत कर रहे हैं उर्वरकों के सटीक प्रयोग की, तो डॉक्टर साहब ये है क्या, कैसे कर सकते हैं किसान भाई?
2: सटीक उर्वरक प्रयोग ये मुख्यतः चार सिद्धांतों पे काम करता है। उसमें से पहला सिद्धांत है सही स्रोत। इसमें मृदा परीक्षण के अनुसार सही पोषक तत्व का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: जी।
2: दूसरा है सही मात्रा, न ज्यादा न कम।
1: जी।
2: बस फसल के आवश्यकता अनुसार ही हमें जो फसलों को उर्वरक की जो मात्रा है वो डालनी चाहिए।
1: जी।
2: और तीसरा है सही समय। सही समय मतलब फसल की वृद्धि के अवस्था अनुसार उसको जो सही उर्वरक है उसको डालना जरूरी है। और सबसे आखिरी में मैं बताना चाहता हूँ जो आखिरी सिद्धांत है वो है सही स्थान, मतलब अगर हम उर्वरक जो है सतह पर फैला देंगे, बिखेर देंगे, तो उससे क्या होता है कि जो जड़ों तक उसको उर्वरक को जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। संरक्षण कृषि यंत्र इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं।
1: अच्छा।
2: और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो शून्य जुताई बीज सह उर्वरक ड्रिल जिसको हम जीरो ड्रिल भी कहते हैं जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की, उसमें उर्वरकों को बीज क्षेत्र के ठीक नीचे पट्टी का रूप में स्थापित किया जाता है।
1: अच्छा।
2: इससे पौधों की जड़ें उसे सीधे ग्रहण करती है, पोषक

0: तत्वों का नुकसान न्यूनतम तो होता है और खरपतवारों को बढ़ावा नहीं मिलता है।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम लीफ कलर चार्ट के बारे में भी सुनते हैं, ये क्या है?
0: ये बहुत ही बढ़िया एक सस्ती और आसान तकनीक है जिसमें लीफ कलर चार्ट एक प्लास्टिक की पट्टी होती है।
1: अच्छा।
0: जिसमें हरे रंग के 4 से 6 शेड होते हैं। धान या गेहूं की पत्ती को इससे मिलाकर अगर हम देखते हैं और उस पत्ती का रंग उस शेड के नंबर 3 से कम होता है तो हम ये मान सकते हैं जो अपने पौधे हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी है और नाइट्रोजन देने का समय आ गया है।
1: अच्छा।
0: इसकी कीमत सिर्फ 20 से 30 रुपए होती है और शोध से यह भी पाया गया है कि LCC मतलब लीफ कलर चार्ट आधारित अगर हम उर्वरकों का प्रबंधन करते हैं तो उससे 15 से 20% तक उर्वरक की बचत हो सकती है।
1: अच्छा अच्छा। तो सभी किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: सभी किसान भाई कर सकते हैं। वो बहुत ही सस्ता एक तकनीक है जिसको कोई भी किसान भाई आसानी से खरीद सकता है। जो आपके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे उसमें ये आपको आसानी से मिल जाएगा।
1: हाँ देखिए डॉक्टर नलावड़े, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया विषय पर बात चल रही है। सटीक उर्वरक प्रबंधन पर हम बात कर रहे हैं और आजकल जो विज्ञान का युग है उसमें हम AI के बारे में भी सुनते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी सुनते हैं। तो AI और ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्या ये दोनों ही तकनीक उर्वरकों की बचत कराने में सहायक हो सकते हैं?
0: बिल्कुल, ये इसको तो मैं कहूंगा ये जो तकनीक है भविष्य की दिशाएं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ड्रोन के बारे में, एक उर्वरक छिड़काव ड्रोन प्रतिदिन 50 एकड़ क्षेत्र कवर कर सकता है।
1: अच्छा।
0: जो पारंपरिक विधियों से 8 गुना तेज है। ड्रोन के माध्यम से सटीक छिड़काव से उर्वरक लागत में लगभग 40% तक बचत की जा सकती है। इसके साथ साथ जल उपयोग में लगभग 90% तक कमी आ सकती, कमी 90% तक हम बचत कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जिक्र किया AI का, तो AI एल्गोरिदम जो है वो सेंसर डेटा मतलब जो सेंसर लगे हुए फील्ड में उस डेटा का विश्लेषण करके यह निर्धारित करता है कि फसल के किस हिस्से को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत है, जिससे स्पॉट एप्लीकेशन संभव हो जाता है। मतलब एक जैसा उर्वरक का प्रयोग करने से अच्छा है कि जहां जरूरत है वहां सिर्फ हम उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और उर्वरक की बचत कर सकते हैं।
1: मतलब AI के माध्यम से हमारे किसान भाई जड़ों में या पत्तियों में या तने पर कहीं भी इसका छिड़काव किया जा सकता है?
0: जी हाँ, ड्रोन के माध्यम से हम उसको जो उर्वरक है उर्वरक को उसके पत्तों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर साहब, इस विज्ञान के युग में काफी तरक्की हुई है और हमारे किसान भाई नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रभावित होता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
0: ये एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है और रासायनिक उर्वरकों के वैसे तो बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, पर कुछ का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। उसमें से सबसे पहला है भूजल प्रदूषण, जिसमें नाइट्रेट रिसाव से पीने के पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा हरित गृह गैस उत्सर्जन, जो नाइट्रस ऑक्साइड रहता है जो नाइट्रोजन से निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 298 गुना ज्यादा हानिकारक है। उसके अलावा जो हम DAP और यूरिया मिट्टी में अधिक मात्रा में यूज करते हैं, उससे मिट्टी का pH घट जाता है और मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, मृदा जीवाणु जो मौजूद रहते हैं मिट्टी में, जो पौधे के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जल स्रोतों में सुपोषण की भी समस्या देखी गई है। संरक्षण कृषि इन सभी समस्याओं का समाधान है। यह कार्बन संचयन बढ़ाती है और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को लगभग 30% कम कर देती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे इन सब तकनीकों के बारे में किसान भाइयों को दी है, लेकिन किसान भाइयों के मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि इन सब तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई किसानों को मदद भी की जा रही है?
0: जी हाँ, सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को ये तकनीकें उपलब्ध हो इसके लिए प्रयास करती है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका उपयोग करके किसान भाई उर्वरकों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ योजनाओं का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ।
1: जी जी जी।
0: उसमें से पहला है कृषि यांत्रिकरण पर उपमिशन। इसके अंतर्गत हैप्पी सीडर और शून्य जुताई बीज सह उर्वरक ड्रिल जैसे आधुनिक यंत्रों पर लगभग 50 से 80% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी लीप कलर चार्ट और मृदा स्वास्थ्य कार्ड,

0: ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वितरित किया जाता है ताकि किसान आवश्यकता अनुसार उर्वरक डाले। उसके अलावा पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक और संरक्षण कृषि अपनाने पर किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है।
1: जी।
0: इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत सौर पंप, ड्रिप सिंचाई, उर्वरक प्रणाली के संयुक्त स्थापन के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान है।
1: मतलब कुल मिलाकर यह है कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं।
0: जी
1: कोई
0: हाँ
1: और विशेष बात आप हमारे किसान भाइयों को उर्वरकों के सटीक प्रबंधन के बारे में बताना चाहेंगे?
0: जी हाँ, मैं आखिरी में किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मिट्टी को जीवित रखो, मिट्टी जीवित रहेगी तो खेती जीवित रहेगी। उर्वरक डालने से पहले मृदा परीक्षण कराए और पराली मत जलाए, कम उर्वरक, सही स्थान, सही समय, यही सटीक कृषि का मूल मंत्र है।
1: बहुत अच्छी जानकारी आज आपने डॉक्टर रोहित नलावड़े जी हमारे किसान भाइयों के लिए दी है और हमारे सभी किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये भेंट वार्ता सुनी जिसमें विषय था फसलों में संरक्षण कृषि तकनीकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के सटीक प्रयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोहित दिलीप नलावड़े और आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे भैया प्रमोद सिंह। तो भैया सारी बातचीत आपने सुनी और बातचीत के माध्यम से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि हमें परंपरागत और जैविक खेती, कार्बनिक खेती की ओर निरंतर ध्यान रखना चाहिए। और भैया आजकल की आधुनिक खेती में कुछ बिंदु ऐसे हैं कि वो जरूर अपनाने चाहिए, जैसे भाई हम उन्नत कृषि यंत्रों का चुनाव करते हैं, उन्नत कृषि सिंचाई पद्धतियों का चुनाव करते हैं, और जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं वो हमें अवश्य चुनाव करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हमें इसमें परंपरागत रूप से भी जो हम खेती करते आए हैं उनका समावेश करना चाहिए, जैसे कि भाई हम गोबर की खाद, हरी खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करें, यानी कि अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बनिक पदार्थ मिलाएं। और कार्बनिक पदार्थ एक और चीज़ से भी मिल सकता है, वह है भैया फसल अवशेष। जी हाँ, हम अपने खेतों में फसल अवशेष बिल्कुल न जलाएं और फसल अवशेषों को विभिन्न तरीकों से या तो जुताई करके खेत में मिट्टी में मिलाकर उनका कार्बन जो है वो मिट्टी में बढ़ा दें, और भैया कुछ जो एक्स सीटू विधि होती है यानी कि इनको फसल अवशेषों को इकट्ठा करके आप बाहर किसी गड्ढे में कंपोस्ट बनाकर उसके बाद जब अच्छी खाद तैयार हो जाए तब भी अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई बात ये निकल कर सामने आती है कि उचित फसल चक्र अपनाया जाए और हम अपने खेतों में फसल अवशेष न जलाएं और देशी खाद का प्रयोग और हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका बहुत ही कम और संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई जब अपनी खेतीबाड़ी करेंगे तो हमारी भूमि का संरक्षण होगा, हमारे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा, और जो हमें खेती का उत्पाद मिलेगा चाहे वो अनाज हो, दाल हो, फल हो, सब्जी हो, या यहाँ तक कि चारा हो, क्योंकि चारा हमारे पशु खाते हैं और पशु चारा खाकर जो दूध देते हैं उसमें भी यदि हम अपने चारे में ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पशु के दूध में भी उसका असर अवश्य आएगा। तो इन बातों का किसान भाई जो है ध्यान रखें और अपनी खेती किसानी से लाभ लें। और भैया लाभ एक और चीज़ से होता है जिसका नाम है मनोरंजन। जी हाँ, आप इंतजार में होंगे कि कार्यक्रम का अब अंतिम पड़ाव है और भैया अब मनोरंजन की बारी आई है। तो भैया ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं ब्रह्मदेव आर्य की गाइये उपदेश परक रागनी।

तो किसान भाइयों ने सुनी अभी रागनी, और भैया आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। और अब देखिए, समय आपसे ज़्यादा बातें करने की अनुमति नहीं देता, तो चलते समय आपको मौसम की जानकारी दे दें। तो भैया, आने वाले 3-4 दिन तक यानी कि शनिवार तक हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि मौसम शुष्क रहेगा और अपने खेतों की हल्की माड़ी सिंचाई करते रहें, और उसके बाद जो है मौसम में हल्की से मध्यम वर्षा हवा के साथ हो सकती है, ऐसा हमारे मौसम वैज्ञानिक बताते हैं। तो इसी हिसाब से किसान भाई अपने काम का इंतजाम रखें, सिंचाई का इंतजाम रखें। और भाई देखिए, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या आप हमारे कार्यक्रम से क्या अपेक्षाएं रखना चाहते हैं, तो ये आप हमें व्हाट्सएप संदेश करके भी भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप संदेश करने का आपका जो समीक्षा आप करना चाहें तो उसके लिए नंबर है 94-57-07-82-88। जी हाँ, नंबर हमारा वही है, आपका जाना पहचाना, 94-57-07-82-88। और भैया हमें आप जो है पत्र के माध्यम से भी अपनी सूचना दे सकते हैं, अपनी समीक्षा भेज सकते हैं। और पत्र लिखने का हमारा पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467-63। तो भैया इस पते पर हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी। और अब अगले कार्यक्रम तक अपने भाई नरेश पाल सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अपूर्वा मिश्रा की वार्ता, जिसका विषय है निर्मल वर्मा के उपन्यास वे दिन का मूल्यांकन और प्रासंगिकता।
1: आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महत्वपूर्ण उपन्यास की चर्चा करेंगे जो अपने शांत, संवेदनशील और गहरे मानवीय स्वर के कारण आज भी पाठकों के मन में विशेष स्थान रखता है। यह उपन्यास है वे दिन, जिसके रचनाकार हैं हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने अपने साहित्य में बाहरी घटनाओं से अधिक मनुष्य के भीतर चलने वाली भावनाओं, स्मृतियों, रिश्तों और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी है। वे दिन कभी केवल एक कहानी नहीं रहा।

रचनाकार हैं हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने अपने साहित्य में बाहरी घटनाओं से अधिक मनुष्य के भीतर चलने वाली भावनाओं, स्मृतियों, रिश्तों और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी है। वे दिन कभी केवल एक कहानी नहीं रहा।

रिश्ते में बाहरी घटनाओं से अधिक मनुष्य के भीतर चलने वाली भावनाओं, स्मृतियों, रिश्तों और अकेलेपन को अभिव्यक्ति दी है। वे दिन कभी केवल एक कहानी नहीं रख देते हैं कि आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ सकती हैं, पर आत्मिक संतोष अपने आप नहीं मिलता। मनुष्य लगातार अपनी पहचान और अपने अस्तित्व का अर्थ खोजता रहता है। फिर जैसे स्मृति और अतीत का प्रभाव, स्मृतियां केवल बीते हुए समय की याद नहीं है इस उपन्यास में, बल्कि वर्तमान को प्रभावित करने वाली जीवंत शक्ति है। पात्र बार बार अपने अतीत में लौटते हैं, पुराने रिश्ते, अधूरे अनुभव और बीती घटनाएं उनके निर्णय और भावनाओं को प्रभावित करती रहती हैं। इस प्रकार उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान अपने भीतर से पूरी तरह कभी अलग नहीं हो सकता। फिर जैसे मानवीय संबंधों की जटिलता, प्रेम, मित्रता, आत्मीयता इस उपन्यास के केंद्र में है, लेकिन ये संबंध सरल नहीं। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर भी उनके बीच कुछ अनकहा रह जाता है। वे अपने मन की पूरी बात नहीं कह पाते। निर्मल वर्मा बड़ी सहजता से ये दिखाते हैं कि कई बार संबंध टूटते नहीं, बल्कि धीरे धीरे चुप्पियों में बदल जाते हैं। युद्धोत्तर समाज की त्रासदी भी इस उपन्यास में देखने को मिलती है, क्योंकि परिवेश यूरोप का है जिसने युद्ध की भयावहता देखी है। युद्ध तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके घाव लोगों की मानसिकता में अब भी मौजूद हैं। सामाजिक अस्थिरता, भावनात्मक टूटन, भविष्य की अनिश्चितता पात्रों के व्यवहार में दिखाई देती है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि युद्ध केवल शहरों को नहीं बल्कि मनुष्य की भीतर की दुनिया को भी बदलता है। निर्मल वर्मा इस उपन्यास में सांस्कृतिक विस्थापन की बात करते हैं, क्योंकि कथावाचक एक विदेशी समाज में रह रहा है। वह वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास तो करता है, लेकिन पूर्णतः उसका हिस्सा नहीं बन पाता, असमर्थ रहता है बेचारा। यह अनुभव केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर नई पहचान गढ़ने की कोशिश करता है, अपनी जड़ों और नए परिवेश के बीच संतुलन बनाता है। फिर जो रचनाकार हैं वो प्रेम और असुरक्षा की भी बात करते हैं। प्रेम किसी आदर्श या परिकथा जैसा नहीं है, इसमें आकर्षण है तो संकोच भी है, निकटता भी है और दूरी भी है। पात्र एक दूसरे को समझने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। इसलिए उपन्यास में प्रेम का एक मानवीय अनुभव भी उभरता है। अगर हम उपन्यास के प्लॉट या कथानक की बात करें तो कहानी एक भारतीय युवक के यूरोप में रहने से शुरू होती है। वह नए वातावरण में स्वयं को ढालने की कोशिश करता है। भाषा, संस्कृति, जीवन पद्धति उसके लिए नई है, इसलिए उसके भीतर उत्सुकता के साथ साथ अलगाव की भावना भी है। धीरे धीरे उसकी मुलाकात विभिन्न लोगों से होती है। इन सभी के अपने संघर्ष हैं, अपनी अधूरी इच्छाएं हैं, अपनी निजी पीड़ाएं हैं। इन मुलाकातों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और कई अनुभवों के रंग सामने आते हैं। समय के साथ पात्रों के बीच आत्मीयता बढ़ती है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन अतीत की स्मृतियां, व्यक्तिगत असुरक्षाएं और जीवन की परिस्थितियां इन संबंधों को स्थायी रूप नहीं लेने देती। यही स्थिति उपन्यास को गहरी मनोवैज्ञानिक परत प्रदान करती है। कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। पात्र अपने आप से सवाल करते हैं, क्या प्रेम वास्तव में हमें पूर्ण बना सकता है? क्या कोई दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह समझ सकता है? क्या स्मृतियों से मुक्त होकर वर्तमान में जिया जा सकता है भला? इन्हीं प्रश्नों के बीच उपन्यास अपनी दार्शनिक गहराई प्राप्त करता है। युद्ध की छाया पूरे उपन्यास के कथानक पे मंडराती रहती है। युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव लोगों की सोच और व्यवहार में दिखाई देता है। वे सामान्य जीवन जीने का प्रयास करते हैं, पर अतीत की पीड़ा बार बार सामने आती है। उपन्यास का अंत खुला और संकेतात्मक है, एक निश्चित निष्कर्ष नहीं है। लेखक पाठक को सोचने का अवसर देते हैं। जीवन की तरह कहानी भी खुली ही रह जाती है, जहां हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार अर्थ खोजता है। अगर हम प्रमुख पात्रों के महत्व के बारे में बात करें तो जो इंडी हैं, भारतीय कथावाचक, वो एक संवेदनशील और आत्मविश्लेषी व्यक्ति हैं, जिनकी दृष्टि से पूरा कथा हमारे सामने आती है। उनकी विदेशी मित्र रायना और उनके बेटे मीता हैं, जो आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, संघर्ष और टूटे रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम कथानक की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो घटनाओं से अधिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया गया है। वातावरण और मनस्थिति का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। संवादों के साथ साथ मौन और संकेतों का प्रभावी उपयोग किया गया है। स्मृति और वर्तमान का एक सुंदर मेल, एक सुंदर खेल

0: चलता रहता है। खुला और पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करने वाला अंत दिया गया है। भाषा और शैली निर्मल वर्मा की इतनी सरल है लेकिन अत्यंत कलात्मक और संवेदनशील भी है। वे छोटे छोटे दृश्य, प्रकृति के चित्रण और सूक्ष्म भावनाओं के माध्यम से गहरा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उनकी शैली में काव्यात्मकता, प्रतीकात्मकता और मनोवैज्ञानिक गहराई का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। उपन्यास का संदेश ये है कि हमें यह उपन्यास ये एहसास कराता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संसार उसके भीतर है, उसे बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं। हमारी स्मृतियां, हमारे रिश्ते, हमारी संवेदनाएं और हमारा आत्मिक खोज ही हमारे जीवन को अर्थ देती है। यह उपन्यास यह भी बताता है कि प्रेम और आत्मीयता की तलाश मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, लेकिन जीवन की जटिलताएं उसे हमेशा सरल उत्तर नहीं देती। यह उपन्यास यह भी बताता है कि कैसे युद्ध प्रेम को पूरा नहीं होने देता, कैसे अधूरा प्रेम हमें मनुष्य को पूरा होने नहीं देता और हम भटकते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अपना दूसरा हिस्सा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि 1964 में प्रकाशित यह उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक क्यों लगता है भला? शायद इसलिए कि समय बदल गया है, लेकिन मनुष्य की मूल भावनाएं नहीं बदली। आज तकनीक की दुनिया को पहले से कहीं अधिक जोड़ दिया गया है तकनीक के द्वारा, फिर भी अकेलेपन की अनुभूति पहले से अधिक तो दिखाई देती ही है। सोशल मीडिया और तेज रफ्तार के जीवन के बीच भी लोग आत्मीय संबंध, सच्चा संवाद और अपनी पहचान खोज रहे हैं। प्रवास, सांस्कृतिक विस्थापन, मानसिक तनाव, रिश्तों की जटिलता, स्मृतियों का प्रभाव और जीवन के अर्थ की तलाश, ये सभी प्रश्न आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने 6 दशक पहले थे। इसलिए यह उपन्यास अपने समय का उपन्यास नहीं बल्कि हर समय का उपन्यास है। अस्तित्व का अर्थ खोजेगा, अकेलेपन से जूझेगा, प्रेम करेगा, स्मृतियों में जिएगा, तभी तो मनुष्य मनुष्य बना रहेगा। वे दिन साहित्य की उन कालजयी कृतियों में से है जो पाठक को केवल कहानी नहीं सुनाती बल्कि उसके भीतर संवाद शुरू कर देती हैं। यही कारण है कि वे दिन आज भी उतना ही अर्थपूर्ण, संवेदनशील और प्रासंगिक है जितना अपने प्रकाशन के समय था और आने वाले वर्षों में भी मानवीय अनुभवों का एक सशक्त दस्तावेज बनकर रहेगा।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अपूर्वा मिश्रा की वार्ता जिसका विषय था निर्मल वर्मा के उपन्यास वे दिन का मूल्यांकन और प्रासंगिकता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

छाया गीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म गोपी का ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर की, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नागिन से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: छायागीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: छायागीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म दिल एक मंदिर से। आवाज है लता मंगेशकर की, नगमा निगार हैं, हसरत जयपुरी, मौसिकार हैं शंकर जयकिशन।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: इसी के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आपने सुना समो स्वर में देशकान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं, आइए एक नज़र डालते हैं कार्यक्रम विवरण पर। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 7:32 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे कानून की बात। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 10:00। सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे युगराज सिंह के स्वर में शब्द।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में, और रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस गान का वक्त रहेगा कल सुबह 6:30 पर। विजय कुमार शर्मा का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 6:45 पर काव्यधारा कार्यक्रम में। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल सुबह 7:05 पर जानकारी का विषय होगा बच्चे नाखून क्यों खाते हैं। कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी, विषय होगा सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां।

इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ होगा हर रोज की तरह सुबह 7:31 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुनेंगे कल सुबह 9:25 पर, जिसमें आपको सुनवाए जाएंगे भुवनेश गिरी के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का वक्त रहेगा कल सुबह 11:30 पर। कल अपराह्न 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर निकिता सिंह, चिकित्सा अधिकारी से बीना कोटनाला की बातचीत, जिसका विषय होगा महिलाओं में एनीमिया की समस्या, कारण, लक्षण और उपचार। लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर आपको सुनवाए जाएंगे भजन दास के स्वर में जॉन सारी लोकगीत। कल शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन योजना के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा, कहा दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
2: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, इस क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
3: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
4: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
5: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही पसंदीदा का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेट को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है जितना हिस्सा मेट के अंदर आएगा उसका पैसा मेट का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा, कहा दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
7: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31। इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून की बात। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विधवा महिलाओं के अधिकार, इस विषय पर भेंटवार्ता सुनीति सचान एडवोकेट से सुमोना एस पांडे की बातचीत आपको सुनवाते हैं।
8: कानून की बात कार्यक्रम में आज मैं सुमोना पांडे आपके साथ हूं श्रोताओं, और आज हम जिस महिला वर्ग की बात करने जा रहे हैं वो वर्ग हमेशा से बहुत उपेक्षित रहा है, लेकिन अब सामाजिक परिदृश्य बहुत बदल चुका है और हम देखते हैं कि ऐसी महिलाओं को काफी सम्मान, काफी अधिकार भी मिलते हैं और वो उनके लिए सजग भी हो रही है। हमें अपने इन अधिकारों के बारे में बात करने की जरूरत है और आज हम बात करेंगे विधवा महिलाओं के सम्मान के बारे में, उनके अधिकार के बारे में। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व अपर महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुनीति सचान जी। सुनीति जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
8: सुनीति जी। ये बात तो सही है कि जो इस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, जो महिलाएं पहले प्रताड़ित होती थी, उनको कई बार मांगलिक कार्यों में आना भी मना होता था और कई अपमान सहन करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो हमारे श्रोताओं को ऐसी महिलाएं यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनके अधिकारों के बारे में आप बताइए।
9: विधवा महिलाओं को कानूनी रूप से बहुत सारे अधिकार हैं
8: जी।
9: सामान्य महिला के तौर पर भी जो महिलाओं का अधिकार है वो तो उन्हें प्राप्त है ही
8: जी।
9: विधवा हो जाने के बाद उनकी परिस्थितियां थोड़ी बदलती हैं, उससे जो उनको कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हैं वो पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति पर प्रथम अधिकारी वही होती हैं
8: जी।
9: जो श्रेणी विभक्त की गई है उसमें प्रथम अधिकार विधवा स्त्री का ही होता है अपने पति की मृत्यु के बाद। पैतृक संपत्ति में भी उसका अधिकार है बराबर का, जो उसके पति के हिस्से की चीजें हैं वो उसको प्राप्त होंगी। ससुर के जीवित रहते हुए उसका प्रथम अधिकार स्वतः नहीं आएगा, अगर ससुर की स्वार्जित संपत्ति है तो वो तो फिर जिसे चाहेंगे उसे देंगे, लेकिन अगर ससुर के जीवित रहते हुए भी अगर कोई संपत्ति पति के हिस्से की आती है
8: जी,
9: वो उसे प्राप्त होगी।
8: और देखिए सुनीति जी, ये बात भी जग जाहिर है कि चूंकि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं 23 जून को, और ये कोई हमारे ही देश में ये कॉमन नहीं है इस तरह के जो व्यवहार है, अन्य देशों में भी है तभी ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो ऐसी स्त्रियां होती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि पति की संपत्ति में उसका अधिकार होता है, इसके अलावा किस तरह से उनके अलग अलग अधिकार होते हैं उनके बारे में बताइए।
9: यूजुअली देखा जाता है कि पति की मृत्यु हुई और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया तो वो प्रताड़ित भी की जाती हैं, उनको उस

0: से संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह से घरेलू हिंसा अधिनियम में सामान्य स्त्रियों को है, उसी तरह सामान्य स्त्री के रूप में ही उसे भी है। घरेलू हिंसा अधिनियम, बहुत गलत फहमी है लोगों को कि सिर्फ पति के खिलाफ है, ऐसा नहीं है
1: जी।
0: विवाहित स्त्री में ससुराल पक्ष के किसी भी पुरुष के खिलाफ, ससुराल पक्ष में ही नहीं, इवन लड़कियों को अपने माए, हाँ, अपने घर में भी, मतलब किसी भी पुरुष द्वारा घरेलू स्तर पर की जा रही हिंसा के अगेंस्ट वो लॉ है। तो अगर विधवा स्त्री के साथ भी कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो इस अधिनियम के तहत भी कोर्ट में अपना संरक्षण प्राप्त कर सकती है। उसको वहां से उस घर में रहने का, जहां पर वो रह रही थी अभी तक, वहां पर रहने का अधिकार, या सास ससुर के साथ रहने का ही अधिकार, और मॉनेटरी भी उसको रिलीफ मिलती है, आर्थिक भी उसको वहां पर संरक्षण प्राप्त होता है। कोर्ट तुरंत आदेश करती है उस मामले में। उसको अपने, अगर सरकारी नौकरी में है तो वहां पर भी उसको डाइंग इन हार्नेस जो लॉ है कि पति की मृत्यु के बाद उसको, अगर वो थोड़ी सी भी शिक्षित है तो उस स्तर पर उसको नौकरी भी मिल जाती है,
1: यानी
0: पेंशन पर तो अधिकार है ही उसका।
1: पति अगर सर्विस में रहे हैं और उनकी जगह पे उनको संभावना रहती है कि उनको नौकरी मिल जाए, काफी हद तक मिल भी जाती है।
0: इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
1: सुनीति जी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बालिका हो या बालक हो, उनके लिए शिक्षा ऐसे समय पे खास तौर पे जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, अपने आत्मसम्मान के लिए, वो अपने अधिकार के लिए खड़ी हो सकती है। अभी आप बता रही थी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं कि नौकरी मिल सकती है, घर के जो अधिकार हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसी महिला कई बार अकेली होती है, उसे पता नहीं होता है कि किस तरह से हम इसके लिए अप्लाई करें या कैसे हम इसके लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो उसको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए?
0: देखिए, जब प्रताड़ना शुरू होती है
1: जी,
0: तो उसके स्वयं के साथ होती है, अगर उसके बच्चे हैं तो कई बार क्या करते हैं लोग की बहू को घर से निकाल देना, तो वो अपने लिए तो घरेलू हिंसा में चली ही जाती है, बच्चे उसके रख लेते हैं। रिसेंटली भी मेरे पास एक केस आया गोरखपुर का ही, सास ससुर ने उसके बच्चों को उससे छीन लिया है और उसको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, तो उसको ये संरक्षण प्राप्त है। सबसे पहले तो अगर उसको लगता है कि ये मेरा विधिक अधिकार है और उसका हनन हो रहा, तो वो थाने पर जाए
1: जी,
0: पुलिस संरक्षण प्राप्त करे और फिर किसी वकील से संपर्क स्थापित करके वो अपने बच्चों के लिए गार्जियनशिप एक्ट होता है, या अगर उन सास ससुर ने या किसी ने जबरदस्ती उसके बच्चे ले लिए हैं तो फिर वो हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका होती है, उसको भी डाल सकती है। उच्च न्यायालय में डायरेक्ट पड़ती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, वो वहां पर डायरेक्ट, और वो उसमें इमीडिएट रिलीफ मिलती है, तुरंत इसलिए मिल जाता है कि उसमें तुरंत नोटिस इशू होगा और उनको बुला लिया जाता है,
1: जो भी दूसरे पक्ष के लोग,
0: हाँ, यूजुअली न्यायालय दूसरे पक्ष को नोटिस इशू करके उनको तुरंत बुला लेता है। और चूंकि नैसर्गिक संरक्षक पहला, पिता के होते हुए भी पहली संरक्षक तो माँ ही है, तो उसमें भी माँ को वरीयता दी जाती है, पर यहाँ पर तो पिता चले गए तो फिर बच्चों को माँ के संरक्षण में ही रखा जाता है
1: जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हर महिला शिक्षित हो और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। लेकिन हम समाज में कई बार ऐसा भी देखते हैं कि हो सकता है कि उसके परिवार में लोग कुछ ऐसे अच्छे भी होते हैं जो सोचते हैं एक नया जीवन उसको दिया जाए, अगर वो बहुत यंग एज में विधवा हो गई है, उसके लिए प्रयासरत होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने लाइफ को या अपने जीवन को
0: बढ़ाना चाहते
1: जी। तो ऐसे माहौल के बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को, ताकि वो लोग भी प्रेरित हो सके और सोच सके कि हाँ, अच्छा एक माहौल भी हमें मिल सकता है।
0: हाँ, जीवन का अंत पति की मृत्यु के साथ जो पहले का होता था, सती प्रथा वगैरह भी थी, समाज मिलके उसको खत्म कर देता था, एक्सेप्ट ही नहीं करता था इनफैक्ट कि पति की मृत्यु हुई तो सब उसका जीवन खत्म। लेकिन अब समय बदल गया है और स्त्री स्वयं में भी बदल गई है और समाज भी बदल गया, तो अब प्रयास होता है कि उसका पुनर्विवाह कर दिया जाए। पर हाँ, कुछ उसमें बातें हैं जानने योग्य कि कुछ विधिक अधिकार, अगर उसको नौकरी नहीं तब तक मिली है, उसने अपना डाइंग इन हार्नेस में जो पति की मृत्यु के बाद सरकारी नौकरी में खास तौर से, अगर उसको तब तक नौकरी नहीं मिली है तो उसको

0: 15 में, तो ऐसे हैं, तो वो उसमें कुछ विधवा के लिए विशेष नहीं है
1: जी।
0: वहाँ पर तो फिर सिर्फ ये है कि स्त्री पुरुष कास्ट क्रीड पर विभेद नहीं होना चाहिए, वो तो संविधान ने हमें संरक्षण प्राप्त कराया ही है।
1: तो जैसा कि आपने कहा पारिवारिक अधिकार है, तो अगर ससुर जी हैं तो उनकी संपत्ति में तो उनका अधिकार उतना नहीं होगा, लेकिन
0: पैतृक संपत्ति में उसको क्योंकि पैतृक संपत्ति में उसके पति का अधिकार होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पति के न रहने पर उसको ही संपत्ति ट्रांसफर होगी, और अगर उसका बच्चा है तो उसके बच्चे के नाम पर भी होगी।
1: जैसे अगर बच्चा है और उसके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि वो अपने पैरों पे तुरंत कैसे खड़ी हो और कैसे अपने बच्चे को आगे पढ़ाए, अगर वो अलग भी होना चाहे जैसे, तो क्या उसको कोई ऐसा एकमुश्त राशि मिल सकती है अपने परिवार से जिसमें उनके पति रहे हैं?
0: देखिए ये तो फिर तभी संभव है, चूंकि उनको मेंटेन करने का उनके ससुर सास को दायित्व आ जाता है, स्वतः आ जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो न्यायालय की शरण में जा सकती है। भाई अगर पालन पोषण उसका नहीं कर रहे हैं तो प्रताड़ना ही है, तो उसके लिए वो जा सकती है कि ना संरक्षण प्राप्त हो यहाँ पर जिससे मैं अपना जीवन गुजर बसर कर सकूं, जब तक वो खुद के पैरों पे नहीं खड़ी जाती है।
1: और जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो उपहार या जो चीजें शादी के टाइम पे किसी महिला को मिलती हैं, तो वो दोनों पक्ष से मिलती हैं, लेकिन वो अधिकार फिर उस पर उसी महिला का ही होना चाहिए,
0: वो स्त्री धन हो जाता है
1: जी,
0: जो उसको अपने विवाह के समय में या आगे पीछे किसी समय पे दिया जाता है, जो उसके जेवर वगैरह हैं, ये सारी चीजें गृहस्थी का सामान है, उस पर तो अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री का ही होता है।
1: यानी कि अगर कोई महिला ऐसी विषम स्थिति में आती है तो ये जरूर है कि वो अपने आत्मबल को बनाए रखे, अपने को सबल बनाने की कोशिश करे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो आदमी टूट जाता है जब ऐसी स्थिति आती है। लेकिन अगर वो शिक्षित है, अगर उसके बच्चे हैं जिनकी उनको देखभाल करनी है, तो एक विवेकपूर्ण व्यवहार की बहुत आवश्यकता होती है। और जहां तक अब जो हम समाज की बात करते हैं, तो हम लोग चूंकि आसपास देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा परिवर्तन आ भी चुका है, लेकिन अगर नहीं भी आया है तो भी उसके लिए सजग रहना चाहिए हमें।
0: सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स अब आ रही हैं, जैसे कुछ स्कीम्स में आवास आवंटन में भी विधवा को वरीयता दिए जाने का है, और कुछ विधवा पेंशन वगैरह भी है मिलने का। और स्त्री धन की जहां तक बात आती है, अगर स्त्री धन कोई हड़प लेता है उसका, तो उसके लिए वो पारिवारिक न्यायालय में उसका वाद दायर कर सकती है
1: जी। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकार भी कुछ होते हैं विधवाओं के, उनके बारे में कुछ आप बताना चाहें?
0: प्रशासनिक अधिकार तो शायद आप उसके बारे में बात कर रही हैं कि उसके प्रमाण पत्र वगैरह प्राप्त करना और बैंक खाते वगैरह, तो उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका प्रथम अधिकार विधवा स्त्री का ही होता है पति की मृत्यु के बाद, वो अपने पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से बनवा करके, उसके बाद उसके ये न्यायालय की प्रक्रिया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तो उसमें वो जाकर के अप्लाई करती है और उसके बाद वो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनता है जिसकी वो प्रथम अधिकारी होती है। उसके आधार पर ही बैंक वाले भी आपको, जैसे बैंक का पैसा उसमें नॉमिनी अगर नहीं है या है भी तो भी उसको देना पड़ता है, और वो सारे सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह बनने के बाद ही उनको वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, और उससे वो उसका संचालन, उसके खातों का, संपत्ति में उसका सारा कर सकती है
1: जी। सुनीति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए सोचती है और कई योजनाएं भी लागू की हैं, उनको कई अधिकार प्राप्त हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको सजग होने की जरूरत है, और साथ ही साथ अगर वो अपने लिए एक अच्छा जीवन चाहती हैं तो उनको उसका पूरा अधिकार है, और वो उसके लिए चाहे न्यायालय जाना पड़े, हालांकि लोग कभी कभी कोशिश करते हैं कि नहीं आप वो सुलझ जाए, तो परिवार में बात हो जाती है, काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन अगर न्यायालय पर जाना ही पड़े तो उनको जाने की जरूरत पड़ती है और वो जाती भी हैं। उसके लिए उनको अपने पैरों पे खड़े होना, यानी कि शिक्षित होना और सजग होना बहुत जरूरी है। तो आप चलते चलते हमारी इस वर्ग की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, और सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें अब इस तरह की प्रशासनिक स्तर पे भी बहुत उनको सहायता प्रदान की जा रही है, और सामाजिक व्यवस्था में भी अब कतई शिक्षा, रोजगार और पुनर्विवाह के अवसरों में जो है उनको किसी प्रकार के भेदभाव नहीं रह गया है, अब हर जगह पार्टिसिपेट कर सकती हैं और वो अपने पुनर्विवाह के लिए भी सोच सकती हैं। इवन इस स्तर पर भी आने के बावजूद अगर मान लीजिए उनकी शिक्षा ब्रेक हो गई विवाह के कारण, तो वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं, उसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह जो हैं वो हैं, किसी वर्ग विशेष के हैं तो उसकी स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है।
1: तो हम श्रोताओं आज बात कर रहे थे विधवा महिलाओं की अधिकार के बारे में, संवैधानिक और प्रशासनिक और घरेलू अधिकार, जो भी अधिकार उनको प्राप्त हैं उनके बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी पूर्व अपर महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय की अधिवक्ता

0: श्रीमती सुनीति सचान जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। और सुनीति जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताया। और अब हमारी जितनी भी वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने आकर अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकती है।
1: सजग रहने की आवश्यकता है
0: जी।
1: किसी भी स्त्री को जब से वो समझदार होती है, शिक्षित तो हो ही, सजग भी बहुत रहने की जरूरत है और मुखर होने की आवश्यकता है
0: जी।
1: अपने अधिकारों के प्रति मुखर होंगी तभी वो अपना जीवन सुचारू रूप से और सामान्य रूप से जी सकेंगी।
0: बिल्कुल, अधिकारों के लिए बोलना पड़ता है। बिना बोले हमारी बात दूसरे तक कैसे पहुंचेगी? अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उसके लिए आपको सामने आना होगा। कई बार बातें घर में ही सुलझ जाती है, अगर आप बातें अच्छी तरह से पेश करें अपने परिवार के साथ, तो शायद न्यायालय तक जाने की
1: बातचीत से बहुत कुछ सुलझ जाता है
0: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीति जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। और श्रोताओं, अब मैं सुमना पांडे आपसे विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम कानून की बात से। नमस्कार।

0: कानून की बात कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे विधवा महिलाओं के अधिकार, इस विषय पर एडवोकेट सुनीति सचान से सुमोना एस पांडे की ये भेंटवार्ता।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम कानून की बात। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शब्द, कलाकार हैं युगराज सिंह।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शब्द, कलाकार हैं युगराज सिंह।

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुने शब्द, कलाकार थे युगराज सिंह। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म राजा से, जिसको आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

गीत संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में कृष्णा फिल्म का गीत। बोल हैं आनंद राज आनंद के और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

सौगंध फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कोली नंबर वन। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। बोल थे समीर के, संगीत था आनंद मिलिंद का। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम

लिया है। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म है प्यार झुकता नहीं। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की हमारी फिल्म है यादों के मौसम।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म यादों के मौसम के कुछ गीत। ये गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

भीगे बाल वो भीगा बदन वो भीगी भीगी हर धड़कन वो गाल हया में डूबे हुए वो होंठ वफा से लरसे हुए वो आंखें सोई सोई सी वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
2: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
3: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
4: We had 26 delegates from...
5: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
6: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों के इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
7: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नीज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तिताम इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खुसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबोहवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात की मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थी। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरल के विजिनजाम बैन अलाक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगीमेल बंदरगाह पर एमएससी लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिनजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज़ नाअहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेश हुई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकोवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रेयर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्योन के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुर्मुज के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
1: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
1: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
0: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
1: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
0: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
1: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
0: जी जी।
1: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। 5वीं जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशन आ रही हैं।
0: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
1: अवश्य, देखिए हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
0: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी,
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
0: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है, या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं। इसके अलावा रेलवे पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशन भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच जी।
0: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
0: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से मेरा हाथ नहीं है
0: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम को बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जैवलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देखते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जैवलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है, और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
0: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ, जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच्चा बहुत अच्छा लगा।
0: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, आयशी प्रिशा बोरा। इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया, साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही है। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
3: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
3: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। But right now, I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
3: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया, बताएं अपने बारे में कुछ।
4: तो ये मौका मिले बहुत ही कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल लाइफ में है ना, जब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। मम्मी से रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, एक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ कैन डू, सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सब की हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मैं सलाह देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने, हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
4: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
5: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
5: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम, तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल,
5: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ, तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से, तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
0: जी, और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
5: आज का जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
5: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
6: मेरा जो एक एआई सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है। जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉलिसी पेशेंट। ये जो एआई इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
6: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। एक ऐसा कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम, जिसका नाम सुनते ही वक्त की सुइयां जैसे पीछे घूम जाती हैं, धड़कनें धीमी हो जाती हैं और यादों का खूबसूरत कारवा हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। समय, वक्त की रफ्तार, ये तेजी, ये तब्दीली कितनी अजीब है ना। ये वक्त जब आगे बढ़ता है तो तरक्की के नाम पर हमसे हमारी ज़िंदगी के वो छोटे छोटे मगर सबसे खूबसूरत हिस्से चुपके से छीन लेता है। वो भी क्या दौर था जब हमारी सबसे बड़ी दौलत वो चवन्नी अठन्नी हुआ करती थी, जिन्हें जेब में रखकर हम खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझते थे। आज वो सिक्के न जाने कहाँ खो गए हैं। और आज तो ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, सिक्के या नोट जेब में रखने का दौर ही ख़त्म हो चला है। झट से फ़ोन निकालो और फट से पेमेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास भी है उन पुराने अठन्नी चवन्नी, एक आना दो आना चार आना, या फिर जो पुराने ज़माने में नोट चला करते थे, उनसे संबंधित कोई याद है आपके पास, तो हमारे साथ साझा करिए ना इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जी हाँ, आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज, हमें अपनी यादों को लिखकर भेज सकते हैं मैसेज में। हमारा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9457078288। आप करिए मैसेज, हम आते हैं इस गीत के बाद।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम याद करते हैं पुराने ज़माने की उन यादों को जो आज कहीं ना कहीं दौड़ती भागती इस जिंदगी में, बदलते इस दौर में कहीं खो गई हैं। करते हैं उनको याद आपके मैसेज के माध्यम से। एक मैसेज हमारे पास आया है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने ये लिखते हैं। बहुत पहले की बात है, जब हम 2 या 3 क्लास में पढ़ते थे तो हम स्कूल जाते समय मना करते थे तो फिर हमें हमारे पिताजी 50 पैसे या कभी 1 रुपया दे देते थे, तो बड़ी खुशी से हम स्कूल जाते थे। और आज 100 रुपये मिलने पर भी वो खुशी नहीं होती। हाँ, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के देखे हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी जो अपनी याद है इन्होंने हमसे साझा की है, मुकेश कश्यप जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। और देखिए, ये दौर तो शायद मुझे लगता है कि अभी भी जारी है कि अगर कोई बच्चा स्कूल ना जा रहा हो तो उसकी पॉकेट में कुछ पैसे डाल दीजिए, वो तुरंत चला जाएगा स्कूल। या उसे कुछ लालच दीजिए, लालच अगर हम दे देते हैं तो वो तुरंत स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ग्राम गधारोना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से मदन गिरी भेजते हैं ये मैसेज। लिखते हैं, आज का विषय सुनकर जीवन का वो दौर याद आ गया जब 58-54 और रुपये चलते थे, बैंक नहीं थे, सब घर में ही पैसे रखते थे और हम बड़े खुश होते थे जब हमारे पिताजी मेले में जाने के लिए 54 पहले दिया करते थे और फिर 58 देने लगे। अब तो सब कुछ बदल चुका है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, जगह जगह बैंक खुल गए हैं, चेकबुक से पेमेंट होता है, अब 54-58 का हमारा वो युग समाप्त हो चुका है, बस यादगारी बन के रह गई है, सब पेमेंट ऑनलाइन होते हैं। जी हाँ, पहले तो यही हमारे जो पेमेंट करने के माध्यम थे, यही देखिए समय के साथ साथ जो दौर है हमारा पेमेंट करने का या पैसे देने का या कोई चीज़ खरीदने का, वो बदलता ही रहता है। तो आपने बहुत अच्छी याद लिखकर हमें भेजी है और मैसेज हमारे पास आए हैं। इन्होंने लिखा है कि कोई भी अपनी पसंद का गीत सुनवा दीजिए। जी हाँ, गीत

उस चवन्नी से कितनी सारी खट्टी मीठी गोलियां और चूरन आ जाता था। आज जेब में 1000 रुपए के नोट या मोबाइल में डिजिटल वॉलेट होने पर भी वो अमीरी महसूस नहीं होती। आज तो बस फोन निकाला, स्कैन किया और पलक झपकते ही पैसे खत्म। वो सिक्कों की खनक और उससे मिलने वाली खुशी सच में डिजिटल युग में कहीं खो गई है। रीता सिंह लखनऊ से लिखती हैं, आज का टॉपिक सुनकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। हमें स्कूल जाते समय 1 या 2 रुपए का सिक्का मिलता था, उससे पूरे रास्ते भर हाथ में कसकर पकड़े रहते थे कि कहीं ये गिर ना जाए। और एक आज का दौर है, बच्चों को चिप्स दिलाना हो तो सीधे मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। उन्हें तो पता ही नहीं होता कि चिल्लर जोड़ने का असली मज़ा क्या होता है। मेरे पास आज भी कुछ पुरानी चवन्नियाँ अठन्नियाँ लिख रखी हैं जिन्हें देखकर बचपन मुस्कुरा उठता है। अगर आपके पास भी पुराने ज़माने के नोट रखे हुए हैं तो वो कौन कौन से सिक्के आपके पास रखे हुए हैं या पुराने नोट आपके पास रखे हुए हैं, हमसे ये भी आप साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288। कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

ये मैसेज हमारे पास आया है शाही मार्केट स्योहारा ज़िला बिजनौर से। भेजने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी। इन्होंने लिखा है सिक्कों की बात, इन्होंने साझा की हमसे अपनी याद।

लिखते हैं, मुझे याद है हमारे बचपन में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे और 5 पैसे भी चलते थे, जब 10 पैसे भी बहुत होते थे उस ज़माने में। 10 पैसे की मिठाई और 10 पैसे की गोली मिलती थी। जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो हम 5 आने की दो दो गोलियां खाते थे और मज़ा आ जाता था। आज इतनी महंगाई में 10 रुपये का भी कुछ नहीं मिलता, बस चाय भी क्या कहते हैं कि चाय भी 15 रुपये की आती है आज के दौर में, और आज के बच्चे कम से कम 50 या 100 खर्च कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। मिसबा जी ने लिखी है ये मैसेज हमारे पास है नगीना से। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है, कोई याद तो नहीं भेजी लेकिन बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सिक्का हमारी बचत और मेहनत की सबसे छोटी और अच्छी शुरुआत होता है। जैसे एक एक सिक्का जोड़कर बड़ा पैसा बनता है, वैसे ही छोटी बचत काम आती है। हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं जो हमें हर हालात में हौसला रखना सिखाते हैं। सिक्का चाहे छोटा हो या बड़ा, बाजार में उसकी अपनी एक पहचान और कीमत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने मिश्वा जी, हमें मैसेज किया है आपने नगीना से, और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है, कवई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से भेजने वाले हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक। लिखते हैं, बात 1980 की है। हमारी दुकान पर मैं अपने पिताजी से 10 पैसे मांगता था। वो कहते थे कि पेटी में से ले लो 10 पैसे। हम 25 पैसे पेटी में से चुपके से चोरी से मुंह में दबा लेते थे। वाकई में वो दिन कुछ और ही थे। ये लिखा है, यानी आप बचपन में चोरी करते थे? गंदी बात होती है चोरी करना, गलत बात, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने अपने बचपन की ये याद हमसे साझा की है। बहुत सारी बातें हमारे पास होती हैं साझा करने के लिए, जैसे कि हमारे पास ये सिक्के वाली बात थी। और देखिए, एक और याद होती थी, आज तो हर हाथ में रिमोट है, हजारों चैनल हैं, ओटीटी का ज़माना है। एक बटन दबाएं और हजारों चैनल हमारे सामने खुल के आ जाते हैं टीवी पे। लेकिन याद करिए वो ज़माना, इतवार का दिन और दूरदर्शन का चैनल जिस पर आती थी अपनी पसंदीदा फिल्म, या शक्तिमान, या रामायण और महाभारत जैसे सीरियल। लेकिन ये सीरियल आते तो थे, लेकिन इनको चलाने के लिए पहले एक सेटिंग करनी होती थी, वो थी एंटीने की सेटिंग। वो उसके लिए जाना पड़ता था हमें छत पे, और अपने एंटीने की सेटिंग करने के लिए हम लोग छत पर भागते थे और ऊपर से चिल्लाते थे, आया क्या आया, और नीचे से आवाज आती थी, थोड़ा और घुमाओ, अभी टीवी में मच्छर आ रहे हैं, टीवी का पर्दा झिलमिला रहा है। और छत पर खड़े खड़े एंटीने को ठीक करने की जद्दोजहद में जो मजा आता था, वो आज के इस डिजिटल दौर में कहाँ। अगर आपके पास भी है इस तरह की कुछ यादें, अपनी टीवी की यादें, एंटीने से जुड़ी यादें, तो हमारे साथ साझा कीजिए। कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया।

0: कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम याद कर रहे हैं पुरानी यादों को जो अब कहीं ना कहीं गुम हो चुकी हैं समय के बहाव के साथ साथ। नए जमाने के आते ही पुरानी चीज़ें पीछे छूट गई हैं और उनकी जगह ले ली है नई चीज़ों ने, लेकिन यादें तो हमेशा ताज़ा ही रहती हैं। ये मैसेज आया है हमारे पास ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से। राशिद जी का ये मैसेज है, लिखते हैं, जिस समय मोबाइल नहीं थे उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था, लेकिन जब प्रोग्राम टीवी पर आता था तो हवा या बंदर एंटीने को हिला देते थे और टीवी की छतरी को हिला देते थे और प्रोग्राम बंद हो जाता था। तिरमिरे आ जाते थे टीवी पर तो बहुत गुस्सा आता था। दूसरे छत पर लगा एंटीना हमारी शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। ये एंटीना समाज में प्रतिष्ठा का सिंबल माना जाता था उन दिनों। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर वो एंटीना हिल जाता था तो प्रोग्राम तो बंद हो जाता था और फिर उसकी सेटिंग करने फिर से छत पर जाना पड़ता था। फिर वही आया क्या नहीं आया, थोड़ा और हिलाइए, इस तरह की बातें फिर से शुरू हो जाती थी। और कभी कभी तो एंटीना जब टूट जाता था तो उसकी भी मरम्मत हम कर ही लेते थे कैसे ना कैसे, सिर्फ हमें टीवी में अपना प्रोग्राम दिखना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आज भी याद आती हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है नगीना से, अनिल विनोचा जी, ये लिखते हैं कि आपको सादर नमस्कार, हमारा भी आपको नमस्कार। ये लिखते हैं, सिक्कों का चलन सच में याद आ रहा है, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 1 रुपया, कुछ सिक्के लोहे के कुछ पीतल के होते थे। सच में उन सिक्कों में भी बहुत सारा सामान खाने को मिल जाता था। सच में पॉकेट में अगर 1 रुपया होता था तो अपने को हम राजा समझते थे, और गुल्लक में भी हम जमा करते थे। जब बाहर जाते थे तो गिनने में भी बहुत देर हो जाती थी। सच में मज़ा आ जाता था। उस दिन तो लॉटरी लग जाती थी। आज भी सिक्के चलन में हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 और 50, 75 रुपये का भी आया है। इन्होंने लिखा है कि 50 रुपये और 75 रुपये का भी सिक्का आया है, लेकिन बाजार में नज़र नहीं आता। वो दौर ख़त्म नहीं हुआ है आज भी, बस मुद्रा की कीमत बदल गई है, जिसे मुद्रा स्फीति कहा जाता है। मगर आज सिक्कों से कुछ नहीं हो रहा, वो दौर तो खैर भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि सिक्के किस धातु के बने होते थे। सिक्के लोहे के होते थे, सिक्के पीतल के होते थे और तांबे के भी सिक्के आते थे, और आज भी सिक्कों का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। कई सिक्कों के नाम इन्होंने लिखे हैं, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 और 1 रुपया। कुछ बड़े सिक्के होते थे, कुछ छोटे सिक्के भी, कई आकार में पहले भी सिक्के आते थे। लेकिन सही बात है, दौर तो खैर भुलाया नहीं जा सकता। और ये मैसेज हमारे पास आया है, ये लिखा है हमारे पास मैसेज, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। भेजने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। इन्होंने लिखा है कि आज कुछ टाइम ही ऐसा आ गया है क्योंकि इस टाइम को देखकर पैसे चलाना पड़ता है। लेकिन क्या है, पुराने ज़माने की बात ही कुछ और थी, अलग ही थी। जो 5 पैसे 2 पैसे में चीज़ मिलती थी उसी में पेट भर जाता था और बहुत अच्छा लगता था। कुछ समय 5 पैसे भी घर वाले बहुत मुश्किल से देते थे। 5 पैसे मिलते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी, रास्ते में कुछ चीज़ लेकर खाते हुए जाते थे। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि स्कूल जाते हैं तो मम्मी पापा कम से कम 100 रुपये देते हैं, वो भी ऐसा लगता है कि कुछ दिया ही नहीं। हम लोग तो आज का टाइम कुछ ऐसे ही हैं, इस तरह से ही चलना पड़ता है। पुरानी बातें तो पुरानी होती रहेंगी, आज वो दिन अगर दोबारा आ जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। देखिए, समय के साथ तो चीज़ें बदलती ही हैं और बदलती चीज़ों के साथ हमें भी बदलना होता है, यही समय की मांग भी है और इसी को बदलाव कहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे पुराने सिक्कों की अठन्नी चवन्नी एक आना दो आना, 4 पैसे अगर आपके पास भी रखे हों तो हमें बताइए ना, कौन कौन से सिक्के आपके पास रखे हैं और उस मुद्रा का आप क्या करते थे। इसके अलावा आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की यादें भी होंगी, एंटीना घुमाने का वो दौर याद होगा, तो आप भी वो भी हमसे साझा कर सकते हैं। उठाइए अपना फ़ोन, मिलाइए अपना व्हाट्सएप खोलिए, उस पर मैसेज लिखिए और अपनी यादों को हमारे साथ साझा करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें,
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: सुमन वर्मा जी लिखती हैं बनारस से, लिखती हैं एंटीना की याद दिलाकर आपने भावुक कर दिया। उस दौर में अगर रात को तेज आंधी या बारिश आ जाती थी तो सबसे पहले छत पर भागकर एंटीना बचाना पड़ता था, कहीं वो बारिश में आंधी में उड़ ना जाए और कहीं दूसरे की छत पर ना चला जाए। हम उसको इस तरह से बचा कर रखते थे जैसे कि वो बहुत ही कीमती चीज़ हो। और गर्मियों के दिनों में जब लाइट कट जाती थी तो पूरा परिवार छत पर चारपाई बिछा कर सोता था। बांस के डंडे पर लगा वो टीवी का एंटीना मानो हमारे बचपन का सबसे बड़ा टावर था। आज कई सारे चैनल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी वो सादगी और वो सुकून बहुत याद आता है।

सुना रहा है ये जहाँ सुनी सुनी सी दास्ता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात थी। इन गानों की जो पंक्तियाँ थी वो बिल्कुल हमारे कार्यक्रम के हिसाब से बिल्कुल सही बैठती हैं कि कुछ आप अपनी यादें सुना रहे हैं, कुछ हम भी आपको आपकी यादों के तार हम भी छेड़ रहे हैं, जिनसे वो यादें निकल कर आ रही हैं, झनकार निकल के आ रही हैं उन यादों की, जो आप हमें मैसेज के तौर पर भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, अपनी भेजना चाहते हैं कुछ याद उस दौर की, पुराने ज़माने की, ब्लैक एंड वाइट टीवी की, टीवी एंटीने की, या फिर पुराने सिक्कों की, एक आना, दो आना, तीन आना, 25 पैसे, 58, 56 जिनको हम बोलते थे, अगर आप भी साझा करना चाहते हैं तो लिख भेजिए व्हाट्सएप पर हमें मैसेज। हमारा नंबर है 9457078288 9457078288। और ये मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीम्बा की, कलीम्बा की, अलीम्बा की, अजीम्बा की, अदीम्बा की, अब्दुल गनी का। ये लिखते हैं कि सर जी, आपने ये प्रोग्राम पेश करके बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं। हमें संडे का दिन याद है। संडे में हमें बहुत खुशी होती थी, सुबह से ही टीवी प्रोग्राम देखने को मिलते थे, सुबह से ही टीवी में बिजी हो जाया करते थे। हमें टीपू सुल्तान सीरियल बहुत अच्छी तरह से याद है, दिल से देखते थे। शाम को फिल्म भी आती थी। संडे का दिन एक ईद की तरह हुआ करता था हमारे बचपन में, मगर आज मोबाइल का ज़माना है, सब लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। पहले का टाइम बहुत अच्छा था, अब का टाइम इतना अच्छा नहीं है, बिजी है हर कोई अपनी लाइफ में। देखिए, पहले का ज़माना भी बहुत अच्छा था, अब का ज़माना भी बहुत अच्छा है, वो बात अलग है कि लोगों ने ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को तरजीह देना कम कर दिया है, लेकिन ज़माना आज का भी अच्छा है, पहले का ज़माना भी बहुत अच्छा था। देखिए, हर ज़माने में की अपनी अलग खासियत होती है, हर एक दौर अलग होता है, और लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें हर दौर में मुस्कुराना आना चाहिए। और ये मैसेज हमारे पास आया है संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, भेजने वाले हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। ये लिखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का भी क्या ज़माना था, रामायण पूरे परिवार के साथ देखते थे और बिजली कट जाती थी तो बहुत दुख होता था। और ये मैसेज है हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी का, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां का, भेजते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। लिखते हैं, हमें आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा करते थे और ज़रा सा मच्छर दिखाई देने पर तुरंत छत पर जाकर एंटीना ठीक करने के लिए जाया करते थे। और ये बहुत सारी यादें लिखकर हमें भेज रहे हैं पंकज अग्रवाल जी कोटद्वार से। लिखते हैं कि आजकल स्कूल में बस और ऑटो चलती हैं, पहले हम 3 पहिया वाले रिक्शा से स्कूल जाया करते थे। इसके अलावा एक और याद अपनी इन्होंने लिखकर भेजी है कि उन दिनों लाइट भी कम आती थी तो हम लैंप और लालटेन में पढ़ाई किया करते थे। और एक और मैसेज इन्होंने भेजा है कोटद्वार से ही, लिखते हैं, पहले जब गांव में कार आती थी तो पूरा गांव कार के पीछे भागता था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि जैसे जब भी कोई नई चीज़ देखने को मिलती थी तो लोग उसके पीछे पीछे हो जाया करते थे, और वो दृश्य देखने में जो आनंद आता था उसका कहना ही क्या है। ये अगला मैसेज हमारे पास है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, भेजते हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय और रोशनी राय। ये लिखते हैं, पहले के ज़माने में सिक्के का बहुत महत्व था, उस समय पैसों की कमी थी, यहाँ तक कि स्कूल की फीस भी एक आना हुआ करती थी जो बड़ी मुश्किल से जुटाए जाते थे। लिखते हैं कि आपने हमारी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। देखिए, मैंने क्या ताज़ा किया है, ये कार्यक्रम ही हमारा ऐसा है कि हम दिलों के तार छेड़ते हैं और आप उन तारों से निकली झनकार से एक मैसेज हमें लिखते हैं बड़ा प्यारा सा, जिसको हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। यही है दिल ने फिर याद किया।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम करते हैं बात पुराने जमाने की और उन यादों की जो आपसे जुड़ी हैं, हमसे जुड़ी हैं और हमारे कुछ उन बड़ी ही पसंदीदा चीज़ों से जुड़ी हैं जो आज हमारे हाथों से छूट चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं या नए ज़माने के साथ वो चीज़ें चल नहीं पाईं और अपने पुराने वक्त में ही कहीं खो कर रह गई। ऐसा ही एक मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से, भेजने वाले हैं रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। ये लिखते हैं, वाकई में बचपन का भी वो दौर क्या दौर था जब हम अपने माता पिता भाई से 10 पैसे 20 पैसे लिया करते थे और दुकान पर जाकर चीज़ें खरीदा करते थे। यकीनन उस ज़माने में 10 पैसे 20 पैसे की बहुत सारी चीज़ें आती थी। आज के दौर में 10 या 20 रुपए की कोई भी अहमियत नहीं है। वाकई में बचपन के दौर में हर एक चीज़ का अपना अलग ही आनंद था और हम हर चीज़ का मज़ा लिया करते थे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर मेला घूमने की हों या फिर पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने की। ये लिखते हैं कि पिक्चर हॉल में काफ़ी लंबी कतार हुआ करती थी और बहुत आनंद होता था जब हम पिक्चर हॉल पर फिल्म देखने जाया करते थे। वाकई में वो यादें भी एक अनमोल यादें हैं। और इसके अलावा ये मैसेज हमारे पास आया है, करणवीर हाउस भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंपू, एकम दमन और अभिजोत। ये लिखते हैं, आज बदलते वक्त की बात चली तो मेरा ध्यान लिविंग रूम में लगे इस बड़े स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी पर गया। इसे देखकर मुझे हमारे बचपन का वो शटर वाला ब्लैक एंड वाइट टीवी याद आ गया। वो टीवी सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि पूरे मोहल्ले को जोड़ने वाला एक जरिया था। पूरे कॉलोनी में किसी एक घर में टीवी होता था और जब रविवार को चित्रहार या रामायण आती थी तो उस घर का दीवान खाना एक सिनेमा हॉल बन जाता था। कोई ज़मीन पर बैठा है, कोई दरवाजे से झांक रहा है तो कोई खिड़की पर लटका है। उस वक्त रंग भले ही काले और सफ़ेद थे लेकिन जिंदगी और रिश्तों में कितने चटक रंग थे। आज हर कमरे में अलग रंगीन टीवी है लेकिन फिर भी सब अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोए हुए हैं, लेकिन वो जो एक साथ बैठकर देखने का जो असली रंग आता था वो आज के इस डिजिटल दौर में कहीं फीका पड़ गया है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई ज़मीन पर बैठे हुए देखता था, कोई दरवाजे से झांक रहा था, कोई खिड़की पर लटका है और तो और पड़ोस के जो बच्चे थे वो नीचे बैठने के लिए अपने साथ कोई कपड़ा भी लेकर आते थे। ये बहुत ही प्यारी सी याद इन्होंने लिख कर भेजी है हमारे पास और ये मैसेज हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन से, दिखी नाजमा बेगम से, दिखी रियाज, रिफाकत मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। ये लिखते हैं, आज आपने पुराने सिक्कों का जिक्र करके सीधे बचपन की उस बेफिक्र गली में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे याद है जब पापा जी या दादाजी से कोई 54-58 या एल्युमिनियम का छेद वाला सिक्का मिल जाता तो उसे मुट्ठी में हम ऐसे भींजते थे जैसे दुनिया का बड़ा ही कीमती खजाना हमारे हाथ लग गया हो। उस 54 को लेकर जब हम पंसारी की दुकान पर जाते थे तो बदले में जो ढेर सारी खट्टी मीठी गोलियां और चूरन मिलता था उसकी खुशी आज के किसी महंगे मॉल की शॉपिंग से नहीं मिलती। आज हम बड़े हो गए हैं, मोबाइल में हजारों लाखों का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक क्लिक में हो जाता है, लेकिन वो सिक्कों की खनक थी और उससे मिलने वाला जो सुकून था वो इस डिजिटल पेमेंट के ज़माने ने हमसे चुपके से छीन लिया है। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने रियासत हुसैन जी, जसपुर से हमें इतना प्यारा सा मैसेज किया है। और इसी के साथ ये मैसेज था हमारे पास इस कार्यक्रम का अंतिम मैसेज। जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं कार्यक्रम में ये आखिरी गीत।

0: इसी के साथ कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: दिल ने फिर याद किया।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।